मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 8 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल और रिमझिम फुहारों की धुन प्रकृति में सुरम्य वातावरण का एहसास करा रही है और मौसम बारिश का है श्रोताओं। पंछियों की चहचहाहट, मिट्टी की सौंधी खुशबू, धुंध की चादर ओढ़े सुबह की खूबसूरत बेला, हर तरफ शांत सुंदर वातावरण नई ऊर्जा का संदेश दे रहा है। प्रकृति की सुंदर सुबह का आनंद लीजिए। नई ऊर्जा के साथ हम भी आ चुके हैं लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, गुड मॉर्निंग के साथ ही और नमस्कार के साथ ही आपने रेडियो सेट ऑन कर लिया है और सुबह की चाय के साथ आपको इंतजार है देश दुनिया के बारे में जानने का। तो प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

0: त्रिफला कहलाता है। ये आयुर्वेद में शरीर के लिए एक संजीवनी मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं त्रिफला के पाचन तंत्र पर असर की। आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थ पाचन तंत्र स्वस्थ शरीर की नींव है। त्रिफला के रेचक गुण आंतों को साफ करते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होते हैं। रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से सुबह पेट साफ रहता है और पेट हल्का महसूस होता है। इसके नियमित सेवन से गैस, अपच और सूजन जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। त्रिफला का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये आंतों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्या होती है उनके लिए भी त्रिफला बेहद लाभकारी है। त्रिफला शरीर को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स करता है। ये रक्त को शुद्ध करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। ये एक तरह से हमारे सिस्टम की सफाई करता है जिससे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आज के समय में जब हमारा खान पान और जीवन शैली विषाक्त पदार्थों को बढ़ावा देते हैं, त्रिफला शरीर को अंदर से साफ करके एक नई ताजगी प्रदान करता है। त्रिफला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद आंवला विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। ये सर्दी, जुकाम, गले की खराश और अन्य मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा त्रिफला का सेवन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाता है जो संक्रमण से लड़ने में सहायक है और कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। त्रिफला वजन घटाने में भी एक बेहतरीन उपाय है। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को धीरे धीरे कम करता है। ये शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर लिवर को स्वस्थ बनाए रखता है जिससे वजन घटाने की प्रक्रिया और भी आसान हो जाती है। अगर आप सुबह खाली पेट त्रिफला का पानी पीते हैं तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ वजन को नियंत्रित भी करता है। त्रिफला का एक और गुण ये है कि ये आंखों और त्वचा के लिए बेहद लाभकारी है। बहेड़ा आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है और आंखों की थकान को दूर करता है। आयुर्वेद में त्रिफला के पानी से आंख धोने का भी जिक्र किया गया है जो आंखों की सफाई करता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। वहीं त्वचा के लिए त्रिफला एक प्राकृतिक औषधि की तरह काम करता है। ये रक्त को शुद्ध करता है जिससे त्वचा पर मुहासे, दाग धब्बे और अन्य समस्याएं कम होती हैं। इसके अलावा त्रिफला का काढ़ा बनाकर भी सेवन किया जा सकता है जो शरीर को डिटॉक्स करने में बेहद प्रभावी है। हालांकि त्रिफला बेहद फायदेमंद है लेकिन इसका अत्यधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। ये शरीर की गर्मी को बढ़ा सकता है इसलिए संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसका उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: त्रिफला औषधियों का खजाना, इस विषय पर अभी आप सभी श्रोता जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज की स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। श्रोताओं, समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 10 बजे रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे विदुषी प्रतिमा तिलक का ख्याल गायन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में आज सुनिएगा एनेस्थीसिया को लेकर लोगों के भ्रम और इलाज में भूमिका विषय पर डॉक्टर तन्मय तिवारी से शैलेंद्र शर्मा की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत समात फरमाइएगा अहमद फराज पर खुसूसी प्रोग्राम जिसका उनवान है अहमद फराज की शायरी में मोहब्बत और इनकलाब। तहरीर है शमीमा उज्मा की जिसे आवाज दी है डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर ने। संस्कृत कार्यक्रम में दिन में 3:15 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर वंदना द्विवेदी की वार्ता विद्यादानम श्रेष्ठ परंपरा। प्रस्तुत करता होंगी डॉक्टर शिवा राकेश। आज रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम में आनंद उपाध्याय की वार्ता प्रसारित की जाएगी जिसका विषय है समय चक्र में दबती लोक विधाएं। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम

सुनेंगे शाम 7:31 पर प्रस्तुति सुमोना एस पांडेय और नीना सोनकर की होगी। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मयंक मोहन और विषय है बरसात के मौसम में होने वाले विभिन्न विकार और इनसे बचाव। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। दोपहर 12:00 बाल गोपाल कार्यक्रम में हमारे नन्हे साथी सुनेंगे चित्रलेखा वर्मा से दादी की जुबानी सुनो दादी की कहानी। इसके अलावा नन्हे साथी उर्जिता शुक्ला और अनन्या सक्सेना की बातचीत सुनवाई जाएगी। दिन में 1:15 पर आज इतवार है में सुनना ना भूलें संध्या रस्तोगी की लिखी झलकी। श्वेत केश रंगीन वेश, निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे अतीश कुमार श्रीवास्तव। अक्षयवट कार्यक्रम में दिन में 1:30 पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर डॉक्टर नीरज चौबे वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक से की गई भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी। सपने समर्पण एवं शून्य से अनंत की यात्रा, इस विषय पर बातचीत करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। सहजन उत्पादन की उन्नत तकनीक, सुनिए रविंद्र कुमार द्विवेदी से की गई भेंट वार्ता विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4:00 संकल्प कार्यक्रम में समाज सेवी स्वाति वर्मा से की गई भेंट वार्ता का विषय होगा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की पहचान एवं उनकी आत्मनिर्भरता। भेंट करता होंगे मनीष कुमार। शिक्षा और समानता का अधिकार, सुनिए हिमांशु वैश्य से की गई ये भेंटवार्ता युवा तरंग कार्यक्रम में आज शाम 5:10 पर। शाम 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में नई सुबह के लोक श्रृंखला में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा खेत बने ब्रांड, कृषि निर्यात एवं वैल्यू एडिशन। लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा अजय सिंह प्रधान से लोकभाषा अवधि में कहानी पाठ समझौता। 6:50 पर शाम खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम कुमार ठाकुर से की गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी खरीफ फसलों में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलोहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, वैशाली के साथ हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब दुनिया के बड़े बड़े देश भी चांद के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना कई देशों ने नहीं की थी। तो आज की विविधा में बात अंतरिक्ष की, भारत के सपनों, संघर्ष और जीत की, आसमान में तिरंगा फहराने की बात, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की। तेईस अगस्त 2023, शाम के ठीक 6:04, पूरे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थीं, दिल की धड़कनें तेज, आंखें नम, कोई प्रार्थना कर रहा था तो कोई सांसें रोक कर बैठा था, और फिर आया वो पल जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर उतर चुका है, बस इतना सुनते ही पूरा भारत खुशी से झूम उठा। वैज्ञानिक एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू थे, और दुनिया भारत की इस उपलब्धि पर शाबाशियां दे रही थी, तालियां बजा रही थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चंद्रयान 3 की जीत की नहीं है, ये कहानी शुरू होती है एक हार से। 2019 चंद्रयान 2, वही सपना, वही मंजिल, लैंडर विक्रम चांद की सतह के बेहद करीब था और फिर अचानक संपर्क टूट गया। पूरे देश की धड़कनें रुक गई थीं। इसरो के वैज्ञानिकों

की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके इरादों में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने हार को सबक बनाया, गलतियों को सुधारा और 4 साल तक दिन रात एक कर दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम एक बार फिर चांद की तरफ बढ़ रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी थी। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट का वो सफर जिसे वैज्ञानिक कहते हैं टेरर ऑफ 15 मिनट्स। हर सेकंड भारी था। और फिर लैंडिंग सफल हुई। उसी दिन भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की, वो जगह जहां आज तक कोई इंसानी मिशन नहीं पहुंचा था। और इस जगह को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, जो आज भी चांद पर मौजूद है, भारत के गौरव की निशानी बनकर। साथ ही भारत दुनिया का चौथा देश बना जो सफलतापूर्वक चांद पर उतरा। लेकिन ये जीत एक दिन में नहीं मिली दोस्तों, इसके पीछे छिपी है हजारों वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत और करोड़ों भारतीयों के सपने। इस दिन को मनाए जाने का मकसद है हर बच्चे के दिल में एक सपना जगाना, ताकि गांव का कोई भी बच्चा सोचे, मैं भी वैज्ञानिक बन सकता हूँ, मैं भी रॉकेट बना सकता हूँ। आप सोच रहे होंगे आखिर दक्षिणी ध्रुव इतना खास क्यों है? दरअसल चांद के इस हिस्से में ऐसे गहरे गड्ढे हैं जहां करोड़ों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। अगर भविष्य में इंसान चांद पर रहने जाएं, तो यही पानी पीने, ऑक्सीजन बनाने और रॉकेट के ईंधन तक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी चांद का दक्षिणी ध्रुव भविष्य का स्पेस स्टेशन बन सकता है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ चंद्रयान तक सीमित नहीं है। भारत ने दुनिया को सबसे सस्ते और भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत दिखाई है। एक ही रॉकेट से दर्जनों उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। मंगलयान मिशन ने तो दुनिया को और भी हैरान कर दिया। भारत पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया, और वो भी बेहद कम लागत में। इसी वजह से इसरो को दुनिया की सबसे कुशल अंतरिक्ष एजेंसियों में गिना जाता है। और आज दोस्तों, जहां भारत सिर्फ चांद तक ही नहीं बल्कि सूरज की ओर भी बढ़ चुका है, आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन कर रहा है, वहीं भारत का सपना है गगनयान मिशन, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री खुद अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमें याद दिलाता है, अगर सपना बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और इरादे मजबूत हों, तो आसमान भी हमारी मंजिल नहीं बल्कि नई उड़ान की शुरुआत बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात आसमान में चमकता हुआ चांद देखें, तो याद रखिए वहां भारत के कदमों की कहानी भी दर्ज है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि सपने देखने वाले ही इतिहास रचा करते हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का दिया निर्देश। परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ मानदेय भी बढ़ाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रसोइयों को वितरित करेंगे कैशलेस हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज। CCTV कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्रों पर होगी परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत वर्षों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कल देर शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को मिलकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

0: प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों का मानदेय 1,000 रूपये बढ़ा दिया है। अब उन्हें 2,000 रूपये की जगह 3,000 रूपये प्रतिमाह मानदेय प्राप्त होगा। साथ ही रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी दी जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के इस फैसले से करीब 3,54,000 रसोइयों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइयों के सम्मान समारोह में मानदेय बढ़ाने की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही वह रसोइयों को हेल्थ कार्ड वितरित कर कैशलेस इलाज की सुविधा का भी शुभारम्भ करेंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करने के साथ ही सभी जिलों और तहसील स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है, इसलिए आम नागरिक परेशान न हो। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि चीनी की कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। श्री योगी ने कल लखनऊ में प्रदेश में चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। एक रिपोर्ट।
2: समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में वर्तमान में 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। श्री योगी ने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चीनी मिलें 15 अक्टूबर से संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री ने आम जन से अपील की कि चीनी की कमी बताकर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। उन्होंने भारत सरकार के निर्देश के क्रम में कहा कि कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक चीनी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और वे एक समय में 400 टन से ज्यादा स्टॉक भी नहीं रख सकते। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद की समस्त पंजीकृत चीनी मिलों, थोक और फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए उपलब्ध स्टॉक की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करें। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक धारित करने अथवा जमाखोरी पर कठोर कार्रवाई की जाए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्र सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। कल नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए।
4: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क असेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और @AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी परीक्षा केंद्र सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम के जरिए AI युक्त CCTV कैमरे की निगरानी में होंगे। एक रिपोर्ट।
5: सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए सर्वाधिक 45 परीक्षा केंद्र लखनऊ जनपद में बनाए गए हैं, जहां पर 18,960 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं आगरा में 26 केंद्रों पर 11,904 जबकि कानपुर शहर के 24 केंद्रों पर 10,698 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आज परीक्षा को देखते हुए उत्तर रेलवे विशेष ट्रेनें संचालित कर रहा है।

0: जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में करीब 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचा। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। एक रिपोर्ट।
1: प्रतिनिधि मंडल के वाराणसी दौरे से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा मिलने के साथ ही पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को नई गति मिलने की उम्मीद है। जापानी दल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया और स्तूपों का अवलोकन किया। इसके बाद यह प्रतिनिधि मंडल काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुआ। सदस्यों ने यहाँ काशी की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परम्परा की झलक देखी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में कल ओडिशा परब कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। संस्कृति, कला और पर्यटन पर केंद्रित इस कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ये आयोजन उत्तर प्रदेश और ओडिशा के बीच सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को चौड़ा कराया जाएगा। इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 466 करोड़ 45 लाख रुपए की परियोजना को कल कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग 9 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन का बनाया जाएगा। प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर आज भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के साथ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों की 24 घंटे निगरानी करने और हर प्रभावित परिवार तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का दिया निर्देश। परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के रसोइयों को कैशलेस इलाज की सुविधा के साथ मानदेय भी बढ़ाया। आज लखनऊ में मुख्यमंत्री रसोइयों को वितरित करेंगे कैशलेस हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने चीनी की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा कालाबाजारी और भ्रम फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा आज, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में प्रदेश के 12 जनपदों में 229 केंद्रों पर होगी परीक्षा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 की।

हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे पंडित जितेंद्र अभिषेक का राग शिव मत उभैरव में गायन।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित जितेंद्र अभिषेक का राग शिव मत भैरव में गायन। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ, जिसे संपन्न करने का समय हो चला है, तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम से हमें नमस्कार। श्रोताओं बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ और सुनते रहिए हमारे केंद्र से प्रसारित अन्य कार्यक्रम। कुछ ही पलों में प्रातः के 8 बजने वाले हैं, हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और

0: महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में

0: ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HIST और IPTV सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
2: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि AI दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिक

0: नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय सेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में NC सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉट पुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादित

0: वाक्य में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है। बोले, चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमेरिका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोता स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम अंकुर।

0: पाल सखाया अडक्कुरे कार्यक्रमे भवंता सर्वेशा हार्दिक स्वागतम कुरुमः। अर्थात प्यारे बाल साथियों, अंकुर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमृता दीदी भवता अपि हार्दिक स्वागतम। और अमृता दीदी आपका भी स्वागत है।
1: नाजमा दीदी नमस्कार, और आपका संस्कृत में स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्यारे बाल साथियों आपको भी नमस्कार कहिए। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब अच्छे से होंगे। और आज आपका मनोरंजन करने के लिए और जानकारियां देने के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए स्टूडियो में आपकी दोनों दीदियां मौजूद हैं।
0: तो बच्चों जुड़े रहिए कार्यक्रम अंकुर से, और हमारी मेल पर कमेंट करते रहिए। हमारी मेल है ankur@gmail.com। कमेंट करने के लिए अपनी राय हमें जरूर दें। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रियाएं हम डिजिटल चिट्ठी में जरूर शामिल करेंगे, जो इसी माह के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाएगा, यानी 30 अगस्त को। और जो बाल दोस्त पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वे हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड 2430001। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए

0: शुक्र कार्यक्रम के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं खेल के मैदान में। जी हाँ, वही खेल जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए कहते हैं, स्वस्थ रहने और अपनी प्रतिभा को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। यही नहीं, खेल खेलना बच्चों की पहली पसंद है, खिलौने के साथ हो या फिर क्रिकेट, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, बैडमिंटन या फिर दौड़ना, खेल कोई भी हो बच्चों, खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम चाहते हैं बच्चों खेलों में आप आगे रहें, लेकिन ये भी याद रखिए पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। पढ़ाई के बिना हर काम हर खेल अधूरा है ना अमृता?
1: बिल्कुल सही कहा आपने नाज़मा दीदी। और खेलों की जब बात चली है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस की। और ये दिवस हमें याद दिलाता है हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की, क्योंकि 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी झांसी में हुई, क्योंकि इनके पिता सोमेश्वर दत्त का स्थानांतरण झांसी में हो गया था। इस समय इनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार के पद पर तैनात थे।
0: और बच्चों आगे बताएं कि इनके बचपन की बातों पे अगर हम ध्यान दें, तो ध्यानचंद जी अमृता क्या करते थे, पेड़ की एक डाली से स्टिक बना ली और खराब कपड़ों की एक गेंद बनाकर हॉकी खेल खेला करते थे।
1: क्या बात है।
0: और एक बार क्या हुआ बच्चों, ध्यानचंद जी अपने पिता के साथ हॉकी मैच देखने गए मैदान में। खेल चल रहा था
1: जी,
0: इसमें एक पक्ष के खिलाफ दूसरी टीम ने लगातार कई गोल किए और कमजोर टीम की स्थिति देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा, यदि वे कमजोर टीम की तरफ से खेलेंगे तो परिणाम कुछ और ही होगा पिताजी। वही पास में एक आर्मी का ऑफिसर भी खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसने ध्यानचंद को विरोधी टीम के खिलाफ यानी कमजोर टीम की तरफ से खेलने का मौका दिया। बस फिर क्या था बच्चों, ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए विरोधी टीम के खिलाफ लगातार एक नहीं दो नहीं बल्कि चार गोल किए। और पता है बच्चों, उस समय इनकी आयु 14 वर्ष की थी।
1: तो क्या बात है,
0: तो अमृता कुछ ज्यादा बड़े तो हुए नहीं है ना,
1: बच्चे ही थे एक तरह से देखा जाए तो।
0: बिल्कुल।
1: और लगातार खेलों में प्रदर्शन देखते हुए, इनका जो अच्छा प्रदर्शन था उसको देखते हुए 16 वर्ष की आयु में इन्हें आर्मी में भर्ती कर लिया गया। आर्मी की जिम्मेदारी उठाते हुए इन्हें दिन में खेलने का समय नहीं मिल पाता था। बैरक में उनके सभी साथी जब रात में सो जाते थे तो वो रात में चांद की रोशनी में मैदान में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे।
0: तो देखिए ये भी एक जुनून होता है ना, कि इंसान को जब आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो वो रात और दिन कुछ नहीं देखता है ना। और 21 वर्ष की आयु में भारतीय टीम ने उन्हें चुन लिया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुने गए। ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद स्वर्ण पदक जीता। यही नहीं, इंडिया के लिए खेलते हुए सबसे अधिक गोल स्वर्ण पदकों की एक झड़ी सी लग गई। मेजर ध्यानचंद जी के कारण पूरी दुनिया में हॉकी खेल जगत में भारत का नाम सबसे ऊंचा रहा और फिर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। यही कारण था बच्चों कि उनके जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त आने ही वाली है बच्चों, और हमारा प्रोग्राम 29 अगस्त से पहले आज ही पड़ गया है, तो सोचा हमने बाल सौतियों से हम आज ही बात करेंगे। बच्चों आज हमारे देश के बच्चे अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती, क्रिकेट, मुक्केबाजी और वॉलीबॉल और चेस में अपने भारत देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो बच्चों यही नहीं, अलग अलग खेलों के क्षेत्र में बरेली के भी बच्चे कुछ कम नहीं हैं। तो आइए इनसे भी रूबरू होते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो अंकुर में। तो चलिए बच्चों शुरू हो चुका है अंकुर कार्यक्रम में हेलो अंकुर यानी फोन इन कार्यक्रम, और इसमें हम देख रहे हैं लगातार कॉल आ रही हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कौन हमारे नन्हे मुन्ने बाल दोस्त 2517-200 नंबर डायल करके हमसे मुखातिब होने जा रहे हैं और अपने विचार साझा करने के लिए तैयार हैं। तो आइए चलते हैं उनसे करते हैं बातचीत। बातचीत करने के लिए हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसी कड़ी में बाल दोस्त हमसे मुखातिब हो रहे हैं। हेलो, क्या नाम है आपका?
2: हमारा नाम अदनान सेन है।
0: पापा का, मम्मी का नाम बताएं।
2: जी मेरे डैडी का नाम है सरफराज सेन और मेरी मम्मी का नाम है फरजाना हुसैन।
0: और ये बताइए आप कौन से क्लास में हैं?
2: 12th क्लास।
0: अच्छा 12th में है, तो पढ़ाई कैसी चल रही है अदनान आपकी?
2: बहुत अच्छी चल

0: फाइनली एग्जाम है, बहुत मेहनत करना है आपको, खूब मेहनत से पढ़िएगा। कौन कौन से विषय ले रखे हैं आपने?
1: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
0: अगर हम खेलों की बात करें तो खेल आपको कौन से पसंद है?
1: क्रिकेट।
0: ठीक है, अच्छा तो ये बताइए, इतने सारे गेम हैं, क्रिकेट का ही ख्याल क्यों आया आपके मन में कि क्रिकेट में आपको अपना करियर बनाना है?
1: जब मैं छोटा था तब मैं रोज क्रिकेट देखता था, इंडिया की टीम के MS धोनी और सचिन सबको, तो मेरा भी शौक हुआ कि मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए, काश मैं भी कभी टीवी पर आ जाऊं।
0: तो क्रिकेट में आपने कंपटीशन वगैरह पार्टिसिपेट किए हैं?
1: जी जी बिल्कुल कराए।
0: अच्छा, कहाँ पर गए हैं खेलने के लिए, कौन कौन सा खेला है आपने?
1: बास्केटबॉल और क्रिकेट, ये दोनों गेमों के स्टेट खेल रखे हैं, ओपन टूर्नामेंट भी खेले हैं।
0: अच्छा, ओपन टूर्नामेंट भी खेले हैं, भाई वाह, क्या कहने हैं, फिर तो आप वाकई में ही खिलाड़ी निकले। और ये बताइए, राष्ट्रीय खेल दिवस वैसे कब मनाया जाता है?
1: 29 अगस्त।
0: ये दिन क्यों मनाया जाता है?
1: मेजर ध्यानचंद जी का जन्म इसी दिन हुआ था, इसीलिए ये खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर थे, हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद जी।
0: हाँ भाई, क्या कहने हैं अदनान, आपको तो काफी सारी जानकारी है खेलों में, और आप बता रहे हैं टेनिस भी खेलते हैं, कई सारे टूर्नामेंट भी अटेंड किए हैं आपने, स्टेट लेवल का भी खेल चुके हैं, भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे खेलों से क्या फायदे हो जाते हैं?
1: खेलों से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, हम लोग एक्टिव रहते हैं, हमें कोई जल्दी बीमारी नहीं लगती है, और हम लोगों का स्टेमिना भी हाई रहता है।
0: वेरी गुड। और वैसे खेलने वाले बच्चों को, अगर हम उनके सेहत की बात करें, उनके हम खान पान की बात करें, या उनके डाइट की हम बात करें, तो क्या लेना चाहिए खेलने वाले बच्चों को?
1: सुबह नहार मुँह तो हमें चने जो होते हैं वो भिगो कर रात में रख देना चाहिए, वो सुबह को खाना चाहिए, और उसके साथ साथ बादाम दूध।
0: आहा, भाई क्या बात है, तो चलिए लीजिए, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे हमारे सारे खिलाड़ी इस खेल दिवस के मौके पर। अदनान ने भाई एक टिप्स भी दे दिया है, तो आकाशवाणी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे अदनान आप?
1: ट्यूबलाइट मूवी का नाच मेरी जान।
0: बहुत अच्छा गाना आपने सिलेक्ट किया है, ये आ रहा है आपके रेडियो सेट पर सॉन्ग। आकाशवाणी को फोन करने के लिए और अंकुर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अदनान आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और अब हम देख रहे हैं एक और नेपाल दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं, बात चल रही है खेल दिवस पर और इसी के साथ हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद
0: ताजी। कहाँ के रहने वाले हैं आप?
1: बरेली का रहने वाला हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए खेलों में कौन कौन से खेलों को पसंद करते हैं आप?
1: वैसे तो मुझे सारे ही खेल पसंद हैं, खेल, लेकिन मैं फिलहाल बॉक्सिंग करता हूँ।
0: अच्छा, बॉक्सिंग करते हैं, तो बॉक्सिंग कब से स्टार्ट की है आपने?
1: मुझे लगभग 3 से 4 साल हो गए।
0: अभी ये बताइए कौन कौन से लेवल के आप गेम खेल चुके हैं?
1: मैंने स्टेट खेला है, मेरे स्टेट में गोल्ड मेडल है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज भी।
0: अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये बताइए खेल खेलने से क्या फायदे हो जाते हैं?
1: खेल से हमें वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, पर दो जो सबसे बड़ी चीज है, एक गेम हमें अनुशासन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है, और भी बहुत सारी चीजें।
0: अच्छा, ये बताइए कितने साल में होते हैं ओलंपिक गेम?
1: ये लगभग 4 साल में होते हैं।
0: तो अंकुर कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
2: दीदी हमें चांदनी चौक टू चाइना मूवी का सॉन्ग आज फट्टे चकले आने थे सुनना है।
0: भाई वाह, क्या कहने हैं, तो लीजिए आ रहा है आपके रेडियो सेट पर ये सॉन्ग।

0: बाल दोस्तों, हम आपको बता दें एक और खिलाड़ी हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए जानते हैं उनके खेल के बारे में। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम पारस मिश्रा है।
0: पारस, आप कौन से क्लास में हैं?
1: मैं अभी अभी इसी साल 12th पास आउट हुआ हूँ।
0: वेरी गुड। तो ये बताइए, वैसे कौन से खेल के खिलाड़ी हैं आप?
1: मैं कॉर्फ बॉल का खिलाड़ी हूँ।
0: कॉर्फ बॉल माने तो जैसे कि बास्केटबॉल भी होता है, इससे मिलता जुलता ही गेम माना जाता है ना?
1: जी जी।
0: पारस के क्या मीनिंग है, इतना प्यारा नाम है आपका।
1: ये मतलब एक तरह का स्टोन पत्थर होता है।
0: हाँ।
1: जो कि किसी चीज को भी सोना बना देता है।
0: ये आपके गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं?
1: हमारे गेम में प्ले में तो 8 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 4 लड़के 4 लड़कियां साथ में खेलते हैं।
0: अरे वाह। तो ये बताइए कि आप कौन से बोर्ड से हैं?
1: मैंने 10th क्लास तक CBSE बोर्ड से पढ़ाई करी और 11th 12th मेरा UP बोर्ड से।
0: अच्छा।

0: अंकुर कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी बिल्कुल,
0: किस दिन आता है बताएंगे? नन्हे मुन्ने बाल दोस्त सुन रहे हैं आपको।
1: ये रविवार को आता है और इसकी टाइमिंग 8:15 रहती है।
0: अब तक आपको कौन से रविवार का सबसे अच्छा लगा प्रोग्राम?
1: अगस्त का पहला रविवार बाल मन जो आया था वो मेरा पसंदीदा है।
0: अरे वाह, क्या बात है। और पॉइंट किस तरह मिलते हैं आप गेम में?
1: इसमें ये पासिंग का गेम है और बास्केट करनी होती है इसमें,
0: अच्छा
1: उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलता है।
0: अच्छा कितने गोल पर खेलने पर जीत दर्ज होती है?
1: ऐसा नहीं है कि कितने भी गोल कर सकते हो, इसमें टाइमिंग होती है, टाइमिंग में जितने ज्यादा गोल कर दिया उतना अच्छा है।
0: के लिए तो फिर बहुत स्पीड चाहिए होगी और बहुत स्पीड होगी आपकी, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस गेम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है स्पीड। तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं और अपना फ्यूचर भी ब्राइट करना चाहते हैं, बताइए इस बारे में। और कौन कौन से लेवल के आप गेम खेल चुके हैं पारस?
1: मैं इसमें नेशनल खेल चुका हूँ 2 बार और इंडिया इंटरनेशनल खेल चुका हूँ 1 बार, जो कि इसी साल बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था।
0: अरे वाह,
1: और मेरा फ्यूचर का प्लान यही है कि मैं अच्छी प्रैक्टिस करूँ, अच्छी जगह प्रैक्टिस करूँ और मैं आगे भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ हर साल।
0: भाई वाह वाह, क्या बात है भाई, हो जाए पारस के लिए तालियां, बहुत खुशी हुई। इतने ऊंचे हाई लेवल पर खेल रहे हैं और इंडिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड, और आपको बहुत बहुत बधाई पारस। अब ये बताइए, चलते चलते नन्हे मुन्ने बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं, उनसे उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
1: मैं यही कहना चाहता हूँ बस कि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन खेल कभी मत छोड़ो, खेलते रहो, क्या पता मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपको ऊपर लेवल तक खेलने का मौका मिल जाए।
0: बहुत अच्छे, तो इसी के साथ ही आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे पारा साहब?
1: चक दे इंडिया सुनना पसंद करूंगा मैं।

0: और इंडिया के लिए खेल रहे हैं। वाकई में ये एक फक्र की बात है हम लोगों के लिए भी।
1: बिल्कुल नाजमा दीदी, आपने सही कहा, और वो भी जब बात अपने शहर के बरेली के बच्चों की हो।
0: हाँ जी,
1: देखिए बरेली जैसे शहर में रह के कहाँ कहाँ तक नेशनल लेवल तक खेलने के लिए बच्चे हमारे जा रहे हैं, तो हमारे शहर के भी लिए बहुत गर्व की बात है ये।
0: और बरेली की बात चली है तो बरेली के हम भी हैं और आप भी हैं, तो आप कितना शौक रखती थी अलग अलग खेलों के बारे में बताइए कुछ।
1: नाजमा दीदी, मैं तो अभी भी बहुत शैतान हूँ, चुलबुली हूँ, मुझे गेम्स बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: और स्कूल टाइम की तो बात ही अलग थी।
0: हाँ।
1: मुझे सबसे ज्यादा बैडमिंटन और फुटबॉल पसंद था।
0: अरे वाह।
1: और साथ ही साथ मैं अपने क्लास के लड़कों के साथ में बैड ये कहते हैं ना क्रिकेट, वो भी खेलती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है। और हम भी आपको बता दें अमृता दीदी कि हमने भी जो है वॉलीबॉल बहुत खेला है। और पढ़ाई जब जैसे ही क्लास शुरू होती थी और उसी टाइम हमारी प्रैक्टिस भी शुरू
1: होती थी। लेकिन
0: नाजमा
1: दीदी, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि आप गेम तो खेलती थी, लेकिन यहाँ पे तो आप इतनी शांत स्वभाव की शांति से बैठती हैं, आप कैसे गेम खेलती थी और वो भी आप वॉलीबॉल खेलती थी?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक दौर होता है, एक जो होता है वक्त होता है, उस टाइम पर बात ही कुछ और थी, स्कूल की लाइफ ही अलग होती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: और एक हम जो अपने एक जो ये वाला ऑफिस वाला हमारा सिस्टम है या जो भी है, तो उस हिसाब से रहा जाता है
1: बिल्कुल,
0: जैसे जिसका माहौल होता है। लेकिन अगर काम की बात आ जाए तो हम आज भी पीछे नहीं है हम लोग।
1: बिल्कुल। और ऑफिस की हम बात कर रहे थे, आपने बोला,
0: जी
1: तो हम ऑफिस में भी एक तरह से गेम ही खेलते हैं, और वो गेम होता है दौड़ने का, रनिंग का। अभी थोड़ी देर पहले आप भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जिस तरह से दौड़ रही थी, प्रोग्राम सही से जाए, भाई ये फाइल मैनेज करनी है, सारी चीजें एक साथ रखनी है, तो एक तरह से आप और हम भी दौड़ लगाई देते हैं आज भी।
0: बिल्कुल, तो देखिए खेलों के तो फायदे हैं, हम लोग खेले हुए आज भी खेलते हैं, बच्चे अगर हमारे साथ खेले तो उसमें भी हम पीछे नहीं रहते हैं, बच्चों को हरा देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना।
1: तो चलिए बाल दोस्तों, अब देर ना करते हुए हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। जी हाँ बाल साथियों, अगर हम अब हम बात करेंगे हिंदी विषय की।
0: अरे वाह,
1: हिंदी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं नाजमा दीदी?
0: बिल्कुल सही कहा। और इस विषय में अगर हम बात करें हमारे जो है आज के कवि जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं,
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: उनके बारे में बात करें अमृता तो कैसा रहेगा?
1: बहुत अच्छा रहेगा दीदी।
0: बच्चों आपने इस कविता की लाइनें अपनी किताबों में जरूर पढ़ी होंगी जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं, जैसे नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। कवि मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, कवि जी कहते हैं कि बच्चों मनुष्य के जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए या असफलता आए तो हमें निराश कभी नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा हिम्मत आत्मविश्वास और आशा बनाए रखनी चाहिए और अपने मन को कभी भी निराश नहीं होने देना चाहिए। हिंदी साहित्य के महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हम आपको बता दें बच्चों 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था।
1: आपकी जानकारी के लिए बता दें बच्चों, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कविताओं में देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, नारी सम्मान और सामाजिक चेतना की झलक मिलती है। मैथिली जी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य की एक प्रभावशाली भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
0: वाह क्या बात है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अमृता भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी उनकी रचना है। और जब ये रचनाओं की लाइनें जब एग्जाम में आती थी ना, तो हम सोचते रहते थे कि भाई ये भारत भारती से है या यशोधरा से है, तो हमने एक निशान बना लिया था, मतलब उनके जो शब्द होते थे उनके हमने माइंड में बसा लिए थे, अगर ये शब्द है तो ये यहाँ से होगा,
1: चुनिंदा शब्द आपने चुन लिए थे कि ये शब्द है तो इनका ही होगा।
0: बस जैसे ही आई कृतियां बस धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया। तो बच्चे हम आपको बताएं भारत भारती में भारत के गौरवशाली अतीत, वर्तमान और भविष्य की कल्पना दिखाई देती है। गुप्त जी के बच्चों के मतलब हम बता दें खासियत ये थी कि केवल एक विषय को लेकर ही बात नहीं करते थे अमृता, बल्कि वो सभी वर्ग सभी विषयों की अपनी कृतियों में बात करते थे। मैथिली शरण गुप्त का साहित्य जो है हमें अपने देश अपनी संस्कृति और निजी जिम्मेदारियों से जुड़ने की प्रेरणा देता है। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो बताइए अमृता दीदी, और हिंदी में आपका कैसा रहता था?
1: भाई हिंदी तो हमारी भाषा है जिसको हम जब बोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम हिंदी में ही बोलते हैं, भले ही आजकल कितना भी अंग्रेजी का चलन है, ट्रेंड है, लेकिन जो हिंदी है उसकी जो मिठास है और जो अपनापन होता है ना, वो अलग ही है। और

0: मुझे तो हिंदी में बात करना भी पसंद है, और जैसे कि अभी
1: बिल्कुल
0: आपसे देखिए हमारे जो बाल दोस्त हैं वो भी कितने अच्छे से उन्होंने हिंदी में अपनी बात को एक्सप्लेन किया।
1: सही कहा। देखिए, और जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं ना, या फोन के माध्यम से जुड़े, या हम फील्ड में जाकर बात करें, अमृता दीदी, तो बच्चे हिंदी में ही बात करना ज्यादा पसंद
0: बिल्कुल
1: करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
0: करना भी चाहिए नाज़मा दीदी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हमारे लिए फक्र की बात है, हमारी मातृभाषा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और अमृता दीदी, हम बता दें कि अपना भारत देश भी कितना रंग बिरंगा है ना।
0: बिल्कुल।
1: वर्ष भर यहाँ पर त्योहारों की जो है एक झड़ी सी लगी रहती है।
0: जी हाँ नाजमा दीदी, आपने एकदम सही कहा। और अगर हम इस समय की बात करें तो त्योहारों की जैसे झड़ी लगी हुई है, आपने कहा
1: जी
0: बैक टू बैक एक के बाद एक त्योहार है अपना सुंदर देश, एक के बाद एक त्योहारों की छटा देखने को जो है वो मिल रही है। श्रावण मास भी चल रहे हैं और पूरा माहौल मानो भक्तिमय हो गया है।
1: आह, क्या बात है। और उसके बाद देखिए, आने वाला है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है, यानी कि मिलाद उन्नबी, जिसे 12 रबीउल अव्वल भी कहा जाता है, और यौमे पैदाइश भी। बीबी आमना की आंखों का नूर, दिल की ठंडक और दुनिया पे जहूर इसी दिन हुआ। और फिर रक्षाबंधन, और उसके बाद देवकी नंदन कृष्ण जी का जन्म हुआ,
0: बिल्कुल
1: यानी कि जन्माष्टमी।
0: जी,
1: तो बच्चों, आने वाले इन सभी पर्वों की
0: आपको ढेर सारी
1: ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: शुभकामनाएं।
1: तो बच्चों, हो जाइए तैयार, होने वाली है खुशियों की बौछार। रंग बिरंगी रोशनी से सजेंगे घर द्वार, प्यार मोहब्बत और अच्छे अखलाक से मनाइए सब मिलकर त्योहार। बच्चों, ये त्योहार हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं। और बच्चों, हम आपको बता दें कि रक्षाबंधन आते ही हमारे मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है, जरा बताइए अमृता दीदी।
0: भाई नाजमा दीदी, मेरे मन में तो सबसे पहले जो ख्याल आता है वो आता है कि सुंदर सुंदर सी राखियां, भाई
1: आहा
0: बहन का प्यार और एक दूसरे को दिए जाने वाले ढेर सारे सुंदर सुंदर उपहार।
1: आहा, भाई क्या बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राखी सिर्फ भाई की कलाई पर बांधने के लिए होती है? नहीं, बल्कि राखी हमें ऐसा रिश्ता निभाने की याद दिलाती है जिसमें प्यार के साथ सम्मान हो, विश्वास हो, सहयोग हो और जिम्मेदारी भी हो।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। दीदी, अगर बात की जाए राखी की, तो कलाई पर बंधी राखी कुछ दिनों बाद पुरानी हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने व्यवहार में प्यार और सम्मान बांध लें तो ये रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है।
1: जी हाँ, ऐसा ही है अमृता दीदी। यदि भाई बहन एक दूसरे के लिए अच्छी सोच बना लें और किसी दूसरे के कहने में ना आकर अपना रिश्ता बहन से ना बिगाड़ें, क्योंकि बहनें भाई और उसके परिवार का कभी भी बुरा नहीं चाहती हैं, है
0: बिल्कुल
1: ना। इसीलिए भाइयों को चाहिए कि वे अपनी बहन की मदद करें, उसकी बात ध्यान से सुने और उसके सपनों को जो है पूरा करने की कोशिश करें। बहनों को भी चाहिए कि वो अपने भाइयों को हर कठिन परिस्थितियों में साथ दें, उसे समझें और उसका हौसला बढ़ाएं। याद रखिए, बहनें और भाई, जो इनकी रिश्तों की खूबसूरती होती है ना, वो उपहारों से नहीं बल्कि हमारे अच्छे व्यवहार से बढ़ती है ना।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा ही है। तो बताइए राखी की आपने क्या तैयारी कर रखी है?
0: भाई नाजमा दीदी, राखी मेरा हमेशा से बड़ा फेवरेट त्योहार रहा है।
1: जी
0: एक ही छोटा भाई है मेरा, उसके लिए मैं 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरुआत कर देती हूँ। सबसे सुंदर राखी बाजार में से चुन के ढूंढ के लेके आती हूँ
1: क्या
0: उसके
1: बात
0: लिए,
1: है।
0: और जो भी गिफ्ट उसको पसंद है, जो भी
1: हाँ,
0: चीज है वो पसंद करता है, उसको जरूर उसके लिए उपहार स्वरूप मैं इकट्ठा करती हूँ।
1: वाह वाह, क्या बात है। और रक्षाबंधन अमृता दीदी मुझे भी बहुत पसंद है। और ऐसा होता है कि जब रक्षाबंधन आता है ना, तो मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधती हूँ, क्योंकि
0: जी
1: मुझे बड़ा पसंद है ये।
0: जी
1: और मेरे एक नहीं, 4 भाई हैं,
0: क्या बात है।
1: तो सबको राखी बांधती हूँ, सब बड़ा खुश होते हैं। और एक बात ये देखने को मिली है, हमारे आसपास भी जो हमारे बहन भाई हैं, हिंदू बहन भाई हैं,
0: जी
1: वो भी जो है इंतज़ार करते हैं। मेरे भाई बनाए हुए हैं काफ़ी
0: जी
1: सारे, तो वो भी इंतज़ार करते हैं और पहले से कहने शुरू कर देते हैं कि नाजमा दीदी, राखी आ रही है, राखी आ रही है। अच्छा भैया, ठीक है, हम भी तैयारी से हैं। और एक बात बच्चों ये भी बता दें कि रक्षा का मतलब सिर्फ भाई बहन द्वारा बहन की रक्षा करना ही नहीं है। रक्षा का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना, विश्वास की रक्षा करना।
0: जी
1: इस बार जब बहन भाई राखी बांध रहे हो ना, या बंधवा रहे हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम अपने व्यवहार में भी राखी बंधवा रहे हैं? क्योंकि असली राखी धागे से नहीं, प्यार और अच्छे व्यवहार से मजबूत होती
0: क्या
1: है
0: बात है
1: ना।
0: नाजमा दीदी, आपने कितनी सुंदर बात कही। भाई बहन के बीच में राखी का त्योहार तो होता ही है, लेकिन प्यार और विश्वास भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो इसी मौके पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: भाई नाजमा दीदी,
1: जी
0: इस गाने को सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही हम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं।
1: लेकिन एक माहौल भी तो बनाना जरूरी है, पता चलना चाहिए कि भाई हमारे त्योहार लगातार आने वाले हैं, तो फिर शुरुआत हम अंकुर से ही कर देते हैं,
0: क्यों नहीं। और बच्चों का जो है कार्यक्रम है अंकुर, और बच्चे ही सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं सारे फेस्टिवल को।
1: सही,
0: आप हम तो काम में लग जाते हैं
1: और पूरा दिन किधर चला जाता है काम में, पता नहीं। पकवान

0: बनाने में इधर उधर, लेकिन बच्चे वाकई में इधर उधर धूम मचा रहे हैं, इधर भागा दौड़ी कर रहे हैं और
1: बेफिक्र
0: मेले जा रहे
1: होकर खुशी के
0: हैं।
1: साथ त्योहार मना रहे
0: वाकई
1: हैं।
0: में बचपन भी क्या है ना
1: बिल्कुल
0: अमृता दीदी, बिल्कुल सब भूल जाते हैं कि क्या है, कुछ नहीं मालूम। वो जब ही तो कहा गया है कि बचपन हर गम से बेगाना होता
1: बिल्कुल
0: है,
1: सही कहा आपने,
0: और त्योहार चल रहे हैं, ऐसे में बच्चे अपना बहुत बहुत ख्याल रखे, है ना।
1: ये बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार एक के बाद एक त्योहार है, और देखा जाता है कि त्योहारों पर भाई अलग अलग पकवान बन रहे हैं और
0: हाँ।
1: इतना स्वादिष्ट तला भुना खाना बनता है, लेकिन हम रोक नहीं सकते उसको खाने से। पर
0: जी
1: मौसम भी बदल रहा है, ऐसे में जरूरी है कि स्वाद के साथ साथ हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।
0: बिल्कुल, और लिमिट में ही खाएं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये चीज बहुत अच्छी बनी, ये बहुत अच्छी, तो खा लो खूब
1: ओवर ईटिंग हो जाती है जी।
0: गल्ला। तो ऐसे में तबीयत खराब भी हो सकती है, तो अपना ध्यान रखें बच्चों, और क्योंकि बारिश का भी मौसम है, तो ऐसे
1: जी
0: में साफ सफाई रखें और जो खाने पीने की चीजें उसे ढक कर रखें, है ना, खुले में
1: बिल्कुल
0: ना रखें बिल्कुल भी। और क्योंकि अगर हम खुले में रखेंगे तो फिर तो हम बताते ही रहते हैं अंकुर कार्यक्रम में कितना नुकसान हो सकता
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल। और
0: ना।
1: फ्लू का टाइम चल रहा है, ऐसे
0: जी,
1: में त्योहारों कहते नहीं रंग में भंग पड़ जाएगी अगर आपकी सेहत खराब हो गई या आप बीमार हो गए
0: और
1: तो।
0: फिर त्योहारों का मजा तो बच्चों से ही है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: रौनक है उनसे।
0: बिल्कुल सही कहा। और अमृता, आज है 23 अगस्त, और पता है आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और हम बता दें ये दिन जो है 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की याद में मनाया जाता है।
1: जी, और इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है।
0: वही वाह, क्या मैंने बात है। और बाल दोस्तों, अब आप बारी आ गई है आज के 5 सवालों की।
1: तो तैयार हो जाइए बाल दोस्तों अपने सवालों को सुनने के लिए, और जल्दी से जल्दी उनके जवाब भी लिख के भेजिएगा।
0: जी,
1: तो कार्यक्रम का जो पहला सवाल है वो है, ओजोन परत किस मंडल में है? सवाल एक बार फिर से सुन ले, ओजोन परत किस मंडल में है? दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तीसरा सवाल है, ईमेल का क्या अर्थ है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए बाल दोस्तों, ईमेल का क्या अर्थ है? और चौथा सवाल है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? और पांचवा और आखिरी सवाल है, शेक्सपियर किस देश के लेखक थे? तो हम आशा करते हैं कि हमारे बाल तो जरूर हमें जल्दी से अपने आंसर लिख के भेजेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। और अब हम बता देते हैं, पिछले संडे को हमने जो 5 सवाल पूछे थे उनके जवाब भी हम बता देते हैं। पहला सवाल हमने पूछा था, दुनिया में सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो बच्चों, ये स्थित है दक्षिण पूर्व एशिया में। और दूसरा प्रश्न हमने पूछा था, वाईफाई का उपयोग किस लिए होता है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए होता है। तीसरा प्रश्न पूछा था कि हमने नदी के कोई दो पर्यायवाची शब्द बताइए, तो बच्चों इसका उत्तर है सरिता, तटिनी और तरंगिणी। और चौथा प्रश्न हमने पूछा था, क्रिकेट खेल में बल्लेबाज के बिना रन बनाए आउट होने को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसको कहते हैं डक। पांचवा और आखिरी प्रश्न हमने पूछा था, तारे जमी पर मूवी में मुख्य बाल कलाकार ईशान को किस चीज का शौक था? तो बच्चों उसे शौक था चित्रकारी का, यानी पेंटिंग का। तो अमृता, आपने ये मूवी देखी है?
1: बिल्कुल, वो बहुत ही सुंदर मूवी है। देखा जाए तो हमारे बच्चों के लिए ही बनी हुई है। कैसे बाल मन जो होता है कितना सॉफ्ट होता है, कितना कोमल होता है, और
0: हाँ
1: उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है नाज़मा दीदी।
0: बिल्कुल। अरे एक बात इसके अंदर, इस फिल्म में ये थी कि अमृता, कि एक बच्चा मानसिक रोगी होता है, तो उसको डांटा जाता है, मारा जाता है, तो ऐसे बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चा ठीक हो गया था हमारे प्यार और मोहब्बत से। अगर हम बच्चों को, मान लीजिए हमारे जिद्दी भी बच्चे हैं हमारे बीच, हमारे परिवार में, तो माता पिता क्या करते हैं कि बच्चे ने जिद की, आए इधर से एक थप्पड़ लगा दिया, उधर से मार दिया, तो ये सब नहीं करना चाहिए।
1: इससे नाजमा दीदी बच्चों के मन को बहुत गहरा आघात पहुंचता है, और जो पेरेंट्स पे या अपनों पे विश्वास का एक जो भावना होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, अगर हम प्यार करेंगे तो बच्चे एकदम फ्रेंडली, अगर हम
1: बिल्कुल
0: बिहेवियर बच्चों से रखेंगे तो वो अपने दिल की बात हमें बताएगा,
1: और वो बहुत
0: शेयर
1: जरूरी
0: करेगा,
1: है।
0: तो एक ये दोस्ताना जो व्यवहार है ये होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ऐसा नहीं होगा तो बच्चे क्या होता है कि माता पिता से दूरी पकड़ लेते हैं,
1: बातें छुपाने लगते हैं।
0: छुपाने
1: कई
0: लगते
1: बातें
0: हैं।
1: ऐसी होती हैं, बच्चे ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जो उन्हें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए लेकिन वो नहीं बता पाते हैं,
0: नहीं बता
1: क्योंकि वो
0: पाते
1: उतना
0: हैं।
1: भरोसा ही नहीं नहीं कर पाते।

0: इसीलिए अपने बच्चों को प्रेम से रखिए, तो इस मूवी की ये खास बात थी।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए अब कहाँ कहाँ से पत्र हम तक आ पहुंचे हैं, बताइए जरा।
1: ये जो पत्र है ये है कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से। लिखने वाले हैं अनोखे लाल मौर्य। और नाजमा दीदी, इनके पांच में से पांचों सवालों के जो उत्तर थे वो बिल्कुल सही हैं।
0: अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अगला पत्र हमारे हाथ में ये आया है, नीम की चढ़ाई ज़क़ाती मोहल्ला बरेली से। लिखने वाले हैं मोहम्मद अखलाक, रज़ियावी, मोहम्मद अली और कुलसुम फातिमा। इनके भी पांच में से पांच सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं, इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अगला पत्र आया है ये रामपुर से, फ्रंगन वाली गली से। लिखने वाली हैं सीमा, सिदरा, नौशीन। और इनके भी पांच में से पांच सवालों के जवाब बिल्कुल सही हैं। और अगला पत्र हमारे पास आया है ये शहमतगंज, पुराना शहर बरेली से। लिखने वाले हैं शकील खान और हुमा खान। इन्होंने लिखा है इन्हें अंकुर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और हेलो अंकुर इन्हें बहुत पसंद आता है। जो फोन पर बातचीत सुनवाई जाती है इन्हें बहुत पसंद आती है। साथ ही जसोली बरेली से नंद किशोर, अंकित और केशव का है, तो उन्होंने भी लिखा है कि जो बच्चों के बीच बातचीत होती है, फील्ड में जाकर आप बातचीत करती हैं, वो इन्हें बहुत पसंद आती है। तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमृता दीदी देखिए हमारा अंकुर कार्यक्रम का जो ये सफर है अब बिल्कुल एंडिंग पर है और
1: बिल्कुल
0: समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, बाय बाय कहने का सम वक्त आ गया है।
1: जी।
0: तो बच्चों चलते चलते हम कार्यक्रम का पता बताए देते हैं। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 2430001। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
2: नमस्कार। प्यार से बोलो।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का प्रिय कार्यक्रम अंकुर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: कार्यक्रम है स्वस्थ बचपन। मैं हूँ मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ मौजूद है बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: सभी श्रोताओं को पांडे जी आपको मेरा नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है बच्चे का जन्म हुआ और जन्म सामान्य हो गया लेकिन बच्चा रोता नहीं है। माता पिता सोचते हैं थोड़ी देर में रोएगा। ये वाकई में है क्या? क्या कोई बीमारी का संकेत है या बच्चे के साथ कुछ असाधारण बातें हो रही हैं उस बात की ओर संकेत करता है?
6: देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है पैदा होने के तुरंत बाद बच्चा रोता है
5: जी,
6: ये एक नॉर्मल चीज। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा माँ के पेट में है गर्भ में है
5: जी,
6: तो वहाँ पर उसको जो ऑक्सीजन मिल रही है
5: जी
6: और जो उसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते वो ऑक्सीजन उसको माँ के ब्लड के जरिए मिलती है।
5: अच्छा।
6: लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके लंग्स ओपन होते, रोता है बच्चे और उसके अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस चलना शुरू होती है।
5: अच्छा।
6: माँ के पेट में बच्चे को दिल की धड़कन होती है लेकिन

0: सांस अपनी नहीं चल रही होती।
1: अच्छा अच्छा, उस समय डॉक्टर साहब वो सांस कहाँ से आती है?
0: सांस का जो हमारा मकसद है वो ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ऑक्सीजन को लेना
1: जी।
0: तो वो दोनों काम माँ के ब्लड के थ्री प्लेसेंटा के थ्रू होता है।
1: अच्छा, है ना, यानी जो गर्भनाल होती है उसके माध्यम से ऑक्सीजन मिलती
0: है, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा रोता है तो उसके फेफड़े खुलते हैं, और फेफड़े खुलने के साथ वो सांस लेना शुरू करता है, और जब सांस लेना शुरू करता है तो वो जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पे आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है वैसे तो अपने आप में, लेकिन कुदरत ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसको बना रखा है कि प्रत्येक बच्चा पैदा होने के बाद होता है।
1: अच्छा,
0: बच्चा पैदा होने के बाद कम नहीं होता है, अगर बच्चा पैदा होते समय फंसा रह जाए,
1: अच्छा,
0: पैदा होने में टाइम ज्यादा लग जाए
1: जी,
0: या माँ का

0: भाषा रह जाए।
1: अच्छा।
0: पैदा होने में टाइम ज्यादा लग जाए
1: जी,
0: या माँ का लाइकर है लिकर है तो वो जो फ्लूड जिसमें बच्चा होता है
1: जी, जी।
0: वो निकल जाए और बच्चे की पैदाइश ना हो पाए।
1: अच्छा।
0: या बच्चे कई बार माँ के गर्भ में ही है ना अपना मल विसर्जन कर दे।
1: अच्छा।
0: है पॉटी कर दे
1: जी।
0: तो वो पानी जिस पानी में बच्चा है वो पानी गंदा हो गया, फिर वो गंदा पानी कई बार सांस में ले लेता है जिसको हम लोग मिकोनियम एस्पिरेशन बोलते हैं
1: जी।
0: तो ये बच्चे भी कई बार पैदा होने के बाद ठीक से नहीं रोते या बिल्कुल नहीं रोते
1: जी।
0: तो इस कंडीशन को कहते हैं वर्थ एनोक्सिया या वर्थ एस्पेक्सिया। और जब ये तकलीफ बच्चों में होती है तो उसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी हाइपोक्सिक इश्चेमिक एनसेफलोपैथी।
1: अच्छा।
0: इसमें जैसे बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया, फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चा नीले पड़ने लगता है, फिर उस बच्चे को किन्हाना शुरू कर देता है अगर थोड़ा बहुत उसमें हो, या फिर बच्चा बिल्कुल लिंप होता है कोई सांस वांस होती नहीं तो बच्चे को तुरंत आपको इलाज शुरू करना होता है
1: जी,
0: है ना, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देना होता है, या आपके पास उस समय कृत्रिम सांस देने का कोई तरीका तो उससे सांस दी जाती है, और फिर बाद में उस बच्चे का जो सबसे आधुनिक इलाज है
1: जी जी
0: आज की तारीख में जो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोता है, जिसको दौरे पड़ने लगते हैं और जिसको ये लगता है कि बच्चे को हाइपोक्सिक इश्चेमिक एनसेफलोपैथी में बच्चा जा रहा है।
1: अच्छा,
0: है ना
1: जी।
0: तो उस बच्चे के लिए 6 घंटे के अंदर एक अच्छे नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच जाना चाहिए
1: जी।
0: और उसका जो इलाज है वह होल बॉडी हाइपोथर्मिया, बच्चे के शरीर को पूरे शरीर को 72 घंटे के लिए ठंडा करते हैं। ठंडा करने से क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेन डैमेज है वो कम हो जाता है, बच्चे की जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है जिससे बच्चे को नुकसान कम होता है। अगर ये ना करें तो ये बच्चे अक्सर चल के बाद में सेरिब्रल पैल्सी होने का डर रहता है, जिसको स्टैटिक एनसेफलोपैथी भी बोलते हैं। उसमें बाद में बच्चे का जो दिमाग का ग्रोथ है डेवलपमेंट है वो स्लो हो सकता है, बच्चा देर से बैठना, देर से चलना, देर से बोलना, कई बार बच्चे को दौरे पड़ना
1: जी,
0: या बच्चे को सुनाई नहीं पड़ना, या बच्चे के देखने में दिक्कत आना, ये सब तरह की परेशानी होती है, बच्चे को बाद में और मानसिक विकलांगता हो सकती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़ी गंभीर बात है, इस बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत।
0: जब दीप जले, यशोदास की आवाज़ में।
1: चित चोर फिल्म का गीत है, सुधाओ डॉक्टर कुलदीप गंगवार की पसंद पर हम आपको

0: अब ये बताइए गणेश साहब, एक तो परिस्थिति वो होती है जबकि बच्चा बिल्कुल नहीं रोता ये पैदा होने के तुरंत बाद, एक परिस्थिति ये भी आती है कई बार कि थोड़ा समय के बाद बच्चा रोया, रोया तो लेकिन थोड़ा समय लेने के बाद रोया, तो क्या ये भी,
1: हाँ ये भी अपने आप में गंभीर स्थिति हो सकती है आगे चल के
0: जी।
1: इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक तो बच्चा बिल्कुल नहीं रोया
0: जी,
1: उसको तो तुरंत इलाज मिलना जरूरी है, एक बच्चा शुरू में रोया फिर बच्चा शांत हो गया,
0: अच्छा
1: बच्चा नीले पड़ना लगा, बच्चा किनाना शुरू कर दिया, किनाना में ग्रंटिंग शुरू हो गई
0: जी, जी
1: तो इस बच्चे को भी तुरंत इलाज की जरूरत है।
0: अच्छा,
1: और अगर बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ी देर बाद रो गया है और बाद में फिर बहुत ज्यादा रोया
0: जी जी,
1: तो वो भी अपने आप में एक गंभीर बात है, क्योंकि एक्सेसिव क्राई इज इक्वलेंट टू सीजर्स, मतलब अगर कोई नवजात शिशु पैदा होने के बाद बहुत अधिक रोता है तो इसको मतलब एक तरह का वो हो सकता है उसको ब्रेन इरिटेबिलिटी हो रही हो, वो एक दौरे जैसी स्थिति होती है,
0: यानी दौरे पड़ जाते हैं,
1: दौरे पड़ जाते हैं, कुछ बच्चों को दौरे नहीं पड़ते सिर्फ वो रोते ही रोते हैं,
0: जी,
1: तो उसको ब्रेन इरिटेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चा दूध नहीं पीता या दूध बहुत कम पीता है, या बच्चा खिनाना शुरू कर देता है, बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये सब इस तरह की परेशानियाँ होती हैं।
0: इलाज के बारे में डॉक्टर साहब आपने कहा कि हाइपोथर्मिया एक इलाज की तकनीक है जिसके माध्यम से ऐसे बच्चों का आप लोग इलाज करते हैं
1: जी,
0: तो ये किस तरह की तकनीक है और क्या इलाज के बाद की परिस्थिति क्या होती है, बच्चे की स्थिति क्या होती है?
1: देखिए जो बच्चे पैदा होने के बाद नहीं रोते हैं उनके लिए जो आज की तारीख में सबसे उत्तम इलाज है वो थेरेपेटिक होल बॉडी हाइपोथर्मिया।
0: अच्छा।
1: वो एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें बच्चे का टेम्परेचर हम लोग 34 डिग्री या 34.5 डिग्री जो नॉर्मल तापमान से 2.5 से 3 डिग्री कम रखते हैं।
0: अच्छा।
1: ये 72 घंटे के लिए करते हैं, इसमें ये जरूरी होता है कि बच्चे का वजन 2 किलो से ऊपर हो।
0: अच्छा।
1: और ये जरूरी है कि बच्चा 6 घंटे के अंदर आपके पास पहुंच जाए
0: जी,
1: तो इसको शुरू करते हैं और 72 घंटे तक इसको चलाते हैं और उस टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर रखते हैं, तो उसके लिए ये भी जरूरी है कि आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम हो।
0: बिल्कुल।
1: तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉनिटर है वो है सेरेब्रल फंक्शन मॉनिटर।
0: अच्छा।
1: जिसको हम लोग CFM बोलते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो उससे आपको ब्रेन की स्थिति क्या है, बच्चे को दौरे पड़ने हैं नहीं पड़ने, ब्रेन कितना एक्टिव है, आपको वो आइडिया लग जाते हैं, और साथ में आपको और कॉम्प्लिकेशन देखने पड़ते हैं, कई बार इन बच्चों को आपको वेंटिलेटर्स भी लगाना पड़ता है जो कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब होती है
0: जी,
1: और बाकी हार्ट रेट है, SpO2 है, टेम्परेचर है, ये सब चीज़ तो ज़रूरत है ही है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ये जो इलाज आप बता रहे हैं बच्चे को मिल जाता है, ऐसे बच्चे को जो जन्म के बाद तुरंत बाद नहीं रोया है, तो कौन सी जो मुसीबत आने वाली थी उससे हम बचा लेते हैं बच्चे को?
1: देखिए वैसे हो सकता है वो बच्चे को आगे चल के कुछ मेंटल डिसेबिलिटी हो जाए, बच्चे को दौरे पड़े, बच्चा सेरेब्रल पैलसी डेवलप हो जाए, उसे बाद में बच्चा देर से चले, देर से बोले, देर से रोए, और कई बार बच्चे कई कई साल तक चल नहीं पाते हैं, दौरे पड़ते रहते हैं,
0: ब्रेन की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है,
1: ब्रेन ग्रोथ।
0: अच्छा, ब्रेन ग्रोथ स्लो,
1: ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों, विकास भी और उसकी ग्रोथ भी।
0: अच्छा,
1: है ना, तो उस चीज की होने की संभावना अगर हम होल बॉडी हाइपोथर्मिया देते हैं तो कम
0: हो जाती है। बिल्कुल, और इस समस्या से बचाना प्रत्येक गार्जियंस की, हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है, साथ ही एक डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है, बच्चा अगर सामान्य नहीं है तो इसकी जानकारी तुरंत बच्चे के गार्जियंस को, माता पिता को या जो भी अभिभावक हैं उन्हें दी जाए
1: जी।
0: अब एक और गीत का समय है डॉक्टर साहब, तो क्या सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं को आप?
1: एक गाना है, अकेले बैठकर चाय का मजा लीजिए, सूफी कव्वाली है।
0: सूफी कव्वाली सुनते हैं, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, अकेले बैठकर चाय का मजा लीजिए। बिल्कुल मजा लीजिए श्रोताओं, और अगले प्रोग्राम में दोबारा हम फिर आएंगे आपके पास डॉक्टर कुलदीप गंगवार को साथ लेकर के।

0: चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:15 हो चुके हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं वार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं। कुमार ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तनिष्क बागची आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और वीजू शाह का संगीत।

नेहा कक्कर और मीका सिंह और कुमार सानू की आवाजों में सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गीत। शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची का संगीत।

0: come on.
1: Tushar Kapoor ki awaaz mein. तो ये था हमारा आज का खास संगीत सफर, जहां अलग अलग धुनों या फिर एक ही धुनों वाले गीत आपको सुनवाए गए, और कभी धुनें अलग थीं, कभी शब्द अलग थे। इस तरह के गीतों का ये सफर था। फिर होगी मुलाकात फिर किसी कार्यक्रम में। फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सारा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी, नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी, छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

0: मेरी जान।
1: दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

1966 में ही आई थी ये जिंदगी कितनी हसीन है।

0: दोस्तों, सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नहीं नहीं के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेगी।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैतारी और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार कयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं। इसी के साथ समय होता है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं अमृता, और आइए एक बार फिर से ये खूबसूरत सा सफर की शुरुआत करते हैं आप और मैं, यानी आपके भेजे हुए ढेर सारे कमेंट्स और मैं। शुरुआत करते हैं पहले गीत की। कार्यक्रम का पहला गीत जिसको आप सभी ने पसंद किया है, फिल्म का नाम है काइट्स, आवाज है केके की, और बोल है नसीर फराज के, संगीत है राजेश रोशन का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। वारसी क्लब कस्बा सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयुब खान, हीरम गुड़िया, शुएब खान, इसी गीत को सुनना चाहा है। मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने, पता है इंदिरा कॉटेज तलीताल नैनीताल से। अगला कमेंट हमें भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय। अगला कमेंट है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे, साथ में है बेबी किट्टू ने। अगला जो कमेंट है वो है शाजी नगर बेंगलुरु जिला नादेड़ महाराष्ट्र से, ये कमेंट हमें भेजा है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने। ग्राम गदगांव तहसील बिसौली जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से ये कमेंट है राजकुमार प्रजापति, राजपाल प्रजापति, दुर्गेश कुमार शाक्य, कृष्णपाल शाक्य, वीरेश पाल का। फिल्म काइट्स के इसी गीत को सुना चाहा है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू, ज्योति और परिवार के सभी सदस्यों ने। ग्राम चौरादा पार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, नहांडी नातूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, गांव बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से ये कमेंट है नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम का, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया और साथ में है रजत और मयंक भाटिया, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाक्तारिया धाकड़, भोला वाक्तारिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाक्तारिया, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से ये कमेंट है रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भूपेश कुमार कंबोज का।

मन की लोर में छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे और इनके साथ में है रजनी खांडे, तुषार और समीर, जो कि हाट दर्शना बाजार अरदिया बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम जी, कवि प्रेमचंद प्रेमी जी, प्रकाश गोगिया जी, मनोहर लाल गांधी जी, साथ में है फारूक अली खान जी। पद्मा टॉकी नेपानगर मध्य प्रदेश से ये कमेंट है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि।

पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, आश्विन और मंगलाबेन शाह, साथ में है राजेंद्र जी शाह भी। राज कमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालाना मराठा वाड़ा से ये कमेंट हमें भेजा है। सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले और धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सूरजश्री और सुनीता यादव। गांव हांडी खेला खेड़ा जिला सिरसा से ये कमेंट हमें भेजा है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने। जिला मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला हलवाइयों शेरकोट बिजनौर से ये कमेंट है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। अगला कमेंट हमें भेजा है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और साथ में है नियति कुमारी, इनका पता है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोद जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से मुकेश गौतम, सुनील अमन गौतम, बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई बहजोई से राजू जी और परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू व परिवार के सभी सदस्य। जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से ये कमेंट है शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप का। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर और विविधा बंडलकर। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत।

0: Hey girls!
1: Hi, congratulations!
0: आज तो पार्टी चाहिए.
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी.
0: पिज्जा पार्टी. ये चल अपना कार्ड और पिन दे.
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
6: आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद. कार्यक्रम का अगला गीत जिसको आप सभी ने पसंद किया है, फिल्म का नाम है शागिर्द. आवाज है लता मंगेशकर की, बोल है मजरूह के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का. सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने. जिला नांदेड़ यताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी तृप्ति जायसवाल. इसी गीत को सुनना चाहे गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह डूडी. कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल और परिवार के सभी सदस्य. जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा. महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर. अगला कमेंट है गांव लहोड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, रामानंद कश्यप. करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी. गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमशुल कमर राही. राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और अहले खाना. कार्यक्रम का अगला कमेंट हमें भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से, लिखने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू. कासगंज यूपी से पवन गौर, सुयश गौर, आशीष और साथ में है तन्मय, अपूर्वा और परिवार के सभी सदस्य. शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, साथ में है अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कन्नौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और इनके मम्मी पापा. नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहाने, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप और रामगढ़ कैंट झारखंड से डिप्पी सहानी व परिवार के सभी सदस्य. गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी. जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और साथ में है मनु, रौनक रजक, सार्थक रजक, सीमा रजक और संतोष कुमार रजक. पता है बर्डी डैम कॉलोनी जबलपुर, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से ये कमेंट है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरहीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार. लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी, दीपाली और युवान, साथ में है आर के राजा. आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए, के संजीव डाबेराम और परिवार के सभी सदस्य. अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, काट रोड लदावली से. इसी गीत को सुना चाहे पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने. खोजा रोड उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा. होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराज खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु, रिमझिम और इनके परिवार के सभी सदस्य.

शेरवानी स्कूल गंजी डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है संगीता हर्षदी, बाबू हर्षदी, लक्ष्मी, जयश्री, हबीब, शंकर, मंजू, काशीनाथ और इनका पता है कृष्णा कॉलोनी गदन कर्नाटक से। विकास श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव, चंद्रपाल कश्यप, ग्राम है एचौरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से। गांधीनगर महेश्वर से श्याम यादव और सोना यादव। ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से ये कमेंट हमें भेजा है उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य, दिनेश को और परिवार के सभी सदस्य भी हैं। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानव मौर्य। रावर करनाल से विनोद लखनपाल और परिवार के सभी सदस्य। कोल सिटी बरकाखाना से अफजलताज, सचिन, शाहिन सुल्तान, सोनू, तस्नीम और साथ में है कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक। एटा रोड गंज डुंडारा उत्तर प्रदेश से वीपी गौतम, सरिता गौतम, मोहम्मद और साथ में है शेख मोहम्मद कलीम, डॉक्टर दबीरुल हसन। इसी गीत को सुनना चाहा है गंज डुंडारा उत्तर प्रदेश से ही मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव व परिवार के सभी सदस्य। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन। इसी गीत को सुनना चाहा है लगान पडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल बघेल और साथ में भारती बघेल भी। कवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना उत्तर प्रदेश बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, रियांश, शिवांश और पृथक सिंह। बटेंडा रोड मंडी डाबवली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग। मामूल बाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, मोहन करांगले। जीगांव विदर्भ से ये कमेंट हमें भेजा है बसंत राव भोजने और पीएस नागवट ने। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें भेजा है दीपक जादव ने बुलदाना महाराष्ट्र से, साथ में है इनके परिवार के सभी सदस्य भी। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहाड़कर और साथ में है निर्मला, विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहिरकर। मसूरी क्लब ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन अंसारी, तालिब हुसैन अंसारी, सलीम मसूरी, तौफीक मोहम्मद नवी मसूरी, सुनील रस्तोगी, राहुल रस्तोगी और इनके सभी दोस्त। स्मिता रेडियो फेसबुक लाइट फेसबुक ग्रुप भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये कमेंट है सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, वानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदही एवं साथ में है बेबी हर्षिका जोशी, अंशिका जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, जबलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर फिल्म शागिर्द का ये गीत।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद, आपके अपने रेडियो चैनल 100.4 FM पर। अगला गीत जिसको सुनना चाहे आप सभी ने, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनपढ़ का गीत है, संगीत है मदन मोहन का। सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय खेमकरन, लक्ष्मी देवी, इसी गीत को सुनना चाहा है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, राही सरिता, प्रणीता, सिद्धांत गुहाड़कर, अर्जुन और इनका निक नेम है टुक टुक।

आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश और साथ में है प्रिंस एकांश सुमित कुमारी ध्वनि गुहाड़कर उर्फ परी ग्रामा पोस्ट गोंडा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा कृष्णा देवी दिलीप मिश्रा माधुरी प्रदीप सविता सत्यम शीतल राधा सलोनी मिश्रा शिवम और शास्त्री जी निर्दोष शर्मा ग्राम करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी शमीम अंसारी माहे नूर अंसारी नसरीन अंसारी और समा अंसारी गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत व परिवार के सभी सदस्य गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण और इनके साथ में सुरेंद्र भ्याण शमशेर और मनोज सोंगा धमधरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन मोहित कुमार देविका रानी गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार मोहम्मद फैज मोहम्मद अर्श अन और साथ में है अलशबाबी शुएब और अमीर इनका पता है एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू और इनके साथ में है इनके परिवार के सभी सदस्य गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश राजवर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल पटेल नगर मलो से रमेश कुमार जाजूरिया गीता रानी जाजूरिया गगनदीप आरजू और गुड्डू ऊंचपट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये कमेंट है मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी शिवन्या और अन्नू का उदयपुर राजस्थान से बाबू भाई भारती देवी रमेश नचानी विनीता नचानी मिथिला गोपाल तंबोली और तिलक तंबोली शुगर फैक्ट्री गेवराई महाराष्ट्र से दिनकर सालवे रणजीत थोरात और नारायण चिरके अंबुबाकी की डारी से इन्होंने गाना लिखा हुआ है ये और साथ में इनके परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखे हुए थे चलते हैं अगले कमेंट की ओर महाराष्ट्र से रूपेश संघई महेश प्रज्ञेश प्रीतेश और पूरा संघई परिवार इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम गोपी खिरिया तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से राहुल पाल श्रीमती ज्योति अंजना पाल हरिमोहन और बेबी लक्ष्य अशोक ग्रोवर परवीन ग्रोवर नीति पवनीत और विक्रमजीत ग्रोवर आदर्श नगर बरिंडा से बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेश नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा और आकाश कुमार सोनू रविराज गुलशन लक्की जालंधर सिटी पंजाब से साथ में है परिवार के सभी सदस्य चतुपुर कुंदरकी से एम मुनाजिर खान फिराज फारूकी मुअज्जम और मुस्तफा साथ में है गौसिया बी सेवड़ी जिला छतरपुर से बारेलाल प्रजापति धनीराम नरेश कल्लू रविंद्र एवं वृंदावन प्रजापति फिल्म अनपढ़ के इसी गीत को सुनना चाहे जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना वर्मा अनुज आयुषी रमेशन वर्मा शेख मूसा भाईजान भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु और मुकेश जगताप ने आदर्श नगर मलोद पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा निवान मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा और शायना शर्मा ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से मास्टर सुनील बाबू शिवम सिंह अभय मीत सर्वेश कश्यप भगवान देई स्वाति सिंह तान्या गौतम और सभी मित्रगण गांव अरायन जिला श्री गंगानगर राजस्थान से डॉक्टर बनवारी लाल जायसवाल विमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल पूनम चालिया और परिवार के सभी सदस्य अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैग लाइन बरेली से बेचेलाल गंगवार गुड्डी देवी और साथ में है प्रशांत देव ज्ञानेंद्र देव इला देवी गंगवार महावीर कश्यप सुनील यादव बर्फा देवी संजय अग्रवाल अश्विनी कुमार मौर्य बाबू भाई रमेश चंद्र सैनी श्री राम राठौर गौतम राम और राज कश्यप चलते हैं अगले कमेंट की ओर अड़ारनाद घाट छत्तीसगढ़ से ये कमेंट हमें भेजा है माखन वर्मा चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा ने खरसावा झारखंड से सुकरा नायक मंजू नायक जलेश्वर नायक और गौरव नायक इसी गीत को सुना चाहे मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने साथ में है परिवार के सभी सदस्य गांव खोखर वाली श्रीगंगानगर से विनोद वरासा विशाल विकास रोशनी और शगुन वरासा धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह सुनीता सिंह अंकिता और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह सदर बाजार

अरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ अब्बासी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान। शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और परिवार के सभी सदस्य। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे और मरोतराव पांचाल। मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक, लुबना और यश मसूरी। इसी गीत को सुना चाहे नई बस्ती करेली से इंतजार भाई अंसारी, बेटी हिब्जा नूरी, प्यार हेना और नत्थू चाचा और इनके साथ में सूरज मौर्य, नन्हे जाबेद मुरगलिया मुर्गिया और परिवार के सभी सदस्य। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक व परिवार के सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराई, मेहराजा, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, गांव नगला खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, राहुल और मनीष शर्मा, ग्राम धोर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। गांधीबाग अकोला से ये कमेंट है रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनजय कटनकर का। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला और ठेकेदार और इनके साथ में है नसीम बेगम। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका और साथ में है पूजा, लीलू, रितु। शनि बाजार उस कस्बा उगहती बदायूं से ये कमेंट है प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता, कायरव गुप्ता और गौरी गुप्ता का। गांव भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से ये कमेंट है मोहम्मद जबेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जाबेद और साथ में है नाहिदरानी आयत, सिकंदर अली, मोहम्मद इंतजार। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता। मौर्य इलेक्ट्रॉनिक कर्मचारी नगर रोड बरेली से गौतम ऋषि मौर्य, मनोहर लाल, मिही लाल मौर्य, प्रीति, रीना और सुनीता मौर्य। गणेशवाड़ी कोलापुर से ये कमेंट है संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार का। शाहून नगर परिते से बाजीराव ढेरे और संगीता। इसी गीत को सुना चाहे चमनपुरा उदयपुर से नजीब खान, सबीहा खानम, फरीदा बानो, जब्बार मोहम्मद और अशरफ खान। राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, चांदनी और नंदनी कुमार, इनका पता है मुजफ्फरपुर बिहार से। संबलपुर कांकेर से ये कमेंट हमें भेजा है फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा और परिवार के सभी सदस्य। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक व परिवार के सभी सदस्य। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी खड़से, गणेश कार्तिक, कुमारी लड्डू चौधरी, देविका चौधरी, स्वाति प्रयागराज और चौधरी उनके परिवार के सभी सदस्य। चलते हैं अगली कमेंट की ओर। ये कमेंट है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का रघुबीर नगर से। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं फिल्म अनपढ़ का ये गीत।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद 100.4 FM पर। और आइए अब चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी, आवाज है लता मंगेशकर की, बोल हैं अख्तर रुमानी के, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ग्राम पंचायत बटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहे गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शहीन फातिमा और अनु खान ने। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय सिंह पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और पूरा परिवार। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर और जियाउल हक डाबर। इसी गीत को सुनना चाहा गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अवंतिका येले ने, सिद्धार्थ नगर दरियापुल बावली से। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और साथ में है ज्योति और शिवांश वर्मा। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद याशीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद और अजरा तवस्सुम। राय

पुर अनई जिला बनारस से ये कमेंट है मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन का। गांव भटुनी जिला मदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रेहांश, सृष्टि मेहर और पूरा परिवार। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से आसिफ अली खान और मुस्कान आसिफ। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मशहूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया और साथ में है इब्राहिम और सद्दाम। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर जिला बरेली से सर्वेश कश्यप, राज कश्यप, अमित, सुमित, सत्यदेव, शिवम और रचित गौतम। गांव बड़वाला हनवंता फाजिल का पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, याशिफा और याशिका और इनके साथ में हैं माँ विदा देवी और सारा मायल व परिवार के सभी सदस्य। न्यू दिल्ली से कमलेश मुकुल और सचिन दीपांशु साथ में परिवार के सभी सदस्य। फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और पूरे परिवार के सदस्य। सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉ ईशानी। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से ये कमेंट है रतन माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश मौर्य और मन्नू भाई। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा। नानाजी लाम से, मीना लाम से, तेजस लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से। बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़, प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन, करीना कुमारी, पूजा, आरती कुमारी और सुनीता देवी गडिया मौजे उस्तु भागलपुर से। ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू पोटिया कला दुर्ग से। फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा। डायमंड रेडियो श्रोता संघ महबूबपुरा सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद जावेद खत्री, मोहम्मद इकबाल खत्री, जैद मुनीरा और बाबू भाई खत्री। तंगौरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत तंगौरी और इनके साथ में हैं जसबीर कौर, महिकप्रीत कौर, सहेजप्रीत सिंह। हितेंद्र दास असम से, सल्लार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजामुद्दीन, कैसरुद्दीन और परिवार के सभी सदस्य। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और इनके साथ में है हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और परिवार के सभी सदस्य। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावली महाराष्ट्र से ये कमेंट है सिद्धार्थ गोड़ाने, अर्चनाताई गोड़ाने, हीरामर शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोड़ाने। इसी गीत को सुनने के लिए अगला कमेंट हमें भेजा है प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, जनकपुरी न्यू दिल्ली से। चलते हैं अगले कमेंट की ओर। कमेंट हमें भेजा है रणवीर गुप्ता, साथ में है बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, ओखला संगम बिहार दिल्ली से, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम गुप्ता। बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से आपका रेडियो दोस्त अरुण कुमार मालवीय दर्द, सरिता मालवीय। शाही मार्केट सिहरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफत चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी। गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा व परिवार के सभी सदस्य। राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम गंगवार, अंकुश, राजू, चंद्रपाल कारीगर और साथ में है उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार, संजीव गंगवार। पता है कस्बा केवलड़िया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से। इसी गीत को सुनना चाहा है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा, अलका मिठा ने। पंचकुला सेक्टर 9 चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन। बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर और तनु करमरकर। परीमहल कासगंज से अबाद खान, नबील खान, अरफा, इल्मा खान, मोहम्मद असलम सैफी और साथ में है शमशुल कमर राही।
मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बास।

निवासी शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, उत्तम जमदाड़े, जिला हिंगोली महाराष्ट्र से, कस्बा उगहती बदायूं उत्तर प्रदेश से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज प्रिंस, प्रशांत कार्तिक और निर्भय गुप्ता, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुग्गू भाविक सिक्का, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी, बेबी अरिबा हबीब, पटियाली रोड गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से, ग्राम करेली बिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, असार अहमद अंसारी, दिलदार अहमद अंसारी, मोहम्मद अर्श और मोहम्मद आरिश, श्याम किटे, वंदना किटे, अमरावती महाराष्ट्र से, अजय पाल सिंह यादव, पवन कुमार, मयंक, प्रभात कुमार, मुनि देवी यादव, नीतू सिंह, प्रतिभा, प्रतिज्ञा और नेमपाल सिंह यादव का पता है, पीएएस यादव अनजानी, इन्होंने अपना पता नहीं लिखा हुआ है फिलहाल। चलते हैं अगले गीत की ओर, क्षमा कीजिएगा, अगले कमेंट की ओर जो इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, मोइन छोटू, शंकर लाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन पवार। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आपकी पसंद 100.4 FM पर। कार्यक्रम में अब आपकी जो पसंद है वो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दो रास्ते का गीत। बोल है आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबालोद तहसील अलोद जिला रतलाम मध्य प्रदेश से विक्रम मालवीय, रचना मालवीय, कमलाबाई बंदेवी, आकाश महेश्वरी, विनायक समस्त मालवीय परिवार इसी गीत को सुनना चाहा है। गांव पंडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री बुरांडे ने, उदयभान पाल, जय सिंह पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और पूरा परिवार ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा, पूजा रघुवंशी, बबीता नंदिनी रघुवंशी, शोभा आराध्या, खुशी भूमिका रघुवंशी और इनके साथ में ललिता, जगदीश चौहान, चंदा युवराज, बानखेड़े, कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांश, आराधिका, रोनिका और साथ में है चंद्रेश गौहर और सुनील पाठक। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फोजिया, रोशनी, शायना, काजल और भाई शहजाद अली मसूरी। चलते हैं आपके भेजे हुए अगले कमेंट की ओर। ये कमेंट हमें भेजा है दीपक जाधव ने बुलडाडा महाराष्ट्र से, साथ में है इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव सिंधुवाला सूरतपुर राजस्थान से इंदिरा ज्ञानी, अंकुश ज्ञानी और परिवार के सभी सदस्य। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और परिवार के सभी सदस्य। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, खुशदिल फिल्म अनामिका का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। फिलहाल चलते हैं अगले कमेंट की ओर। समशुल कमर राही, शाहिना फातिमा और अनु खान, इनका पता है राही नगर गंज डंडवारा से। पीतमपुरा दिल्ली से विवेक कुमार गौड़, रानी और उमेश कुमार व पूरा गौड़ परिवार। बटिंडा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी चनौरा जिला फिरोजाबाद।

उत्तर प्रदेश से। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील मौर्य, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य। सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से रामराव नितोने और इनके साथ में शारदा, सानिका और रिया। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार और नसीमन बेगन। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुबिहा नेबादा। जिला गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा और गीतांजलि करवा। ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंह, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिक रमेश चंद्र डांगी। फाजिल का पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, पिशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन व परिवार के सभी सदस्य। छत्तीसगढ़ से जिला अंबागढ़ चौकी से ये कमेंट भेजा है रिजवान खान, आयशा नब सबीहा, अनस और रेहान ने। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई, सूफिया, अनस, आयशा। सरोज चौक से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीमन, आयशा खान और हदिया खान। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर फिल्म दो रास्ते का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की, सहयोग है गजेंद्र सिंह का।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, और स्टूडियो में स्वागत है आपका मिथिलेश श्रीवास्तव जी, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार गजेंद्र जी, और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और इस बार थोड़े बहुत आपकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है।
1: बिल्कुल, मौसम का जादू है। और एक गाना है, ये मौसम का जादू है मितवा,
2: तो वही जादू चल गया है।
1: जी बिल्कुल,
2: सर चढ़कर बोल रहा है,
1: सर चढ़कर बोलेगा,
2: सर ही नहीं, सर से पांव तक नहीं,
1: पांव तक और एड़ी चोटी तक,
2: एड़ी चोटी तक। जी हाँ बिल्कुल, पिछली बार भी गजेंद्र जी को थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम था, या कहें वायरल था।
1: जी बिल्कुल,
2: मैं पूरी तरह स्वस्थ था
1: जी,
2: और मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे भी ना हो जाए।
1: ये सब आपके साथ उस समय की बरसात में भीगने का फल है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर, और फिर मुझे भी हो गया
1: जी,
2: और हो गया, फिर 3 दिन में ठीक हो गया। लेकिन अब आप भी बता रहे हैं कि अभी भी वीकनेस है,
1: शरीर
2: तो मतलब अब कुछ दिन में मुझे वीकनेस होगा।
1: नहीं, हम तो ये दुआ करते हैं कि आपको वीकनेस महसूस ना हो,
2: ना हो। हाँ ये बात,
1: क्योंकि हमने कर ली।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोग भी जो है बिल्कुल सतर्क रहें।
1: हाँ।
2: और अगर हो जाता है तो उसमें भी ध्यान रखें। वायरल फीवर जो है आजकल पूरे शहर में, क्या कहे, पूरे उत्तर भारत में, क्योंकि मौसम है
1: जी,
2: फैला हुआ है, और इसमें अगर किसी को होता है तो उससे दूर, हालांकि बचने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि मुझे हुआ, फैमिली में और जितने लोग हैं उनको भी थोड़ा बहुत हो गया। तो उसमें क्या है कि जो एक डॉक्टर साहब एक आए थे, उनसे मैंने बातचीत भी की थी रेडियो हेल्पलाइन में, तो उसमें उन्होंने यही कहा, भाई इसकी कोई दवा नहीं है, कोई दवा करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ इतना जरूर है, इसमें बुखार होता है, बुखार एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है हमारे इम्यून सिस्टम का,
1: लड़ने दीजिए शरीर को।
2: हाँ, लेकिन अब ये है कि बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है तो आदमी परेशान हो जाता है, बकबकाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में दवा खा लेनी चाहिए, मतलब 100 से ज्यादा है, चलिए 101 से ज्यादा है
1: जी,
2: तब तो बुखार की दवा खा लेनी चाहिए,
1: लेकिन वो भी डॉक्टर से पूछ के। हाँ, डॉक्टर को दिखा,
2: डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो उसमें क्या है, और इस वायरल फीवर में यही हो रहा है, खाली बुखार की दवा खाइए, बुखार नियंत्रण में रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप सही हो जाएंगे अपने आप। हाँ, लेकिन लिक्विड बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, लिक्विड ना लिया इसीलिए तो वीकनेस है।
2: हाँ,
1: क्योंकि भूख प्यास बिल्कुल खत्म,
2: वो भी वो नींबू चीनी पानी।
1: हाँ, हाँ।
2: मिला के, नमक मिला के, और नहीं तो इलेक्ट्रोल पीजिए।
1: बिल्कुल,
2: तो बहुत सही रहेंगे। अपना ख्याल रखिए आप सभी लोग।
1: तो ये थी मौसम के साथ आप सबके लिए हेल्थ टिप्स, क्योंकि हमें दो चार होना पड़ा है, आप दो चार न हो, ये हमारी कोशिश है। तो लेकिन हमारे श्रोताओं का तो ढेर सारा, आज हम डिजिटल से एनालॉग पे आ गए।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
1: है ना।
2: हाँ, नहीं नहीं, हमने कोशिश की है कि पुरानी यादों को ताजा किया जाए
1: जी,
2: मेल को ही
1: हाँ,
2: पत्रों के रूप में पढ़ा जाए,
1: कागज पे वो घेरा जाए,
2: कागज पे।
1: तो श्रोताओं आपको बता दें,
2: पहले हम मोबाइल पे पढ़ते थे
1: जी जी, स्क्रीन से हटे हैं हम, क्योंकि आंखों को ब्रेक देना चाहिए। इस हफ्ते हमने आंखों को ब्रेक दिया है स्क्रीन से
2: जी,
1: लेकिन

0: आपके वही सुगंध को महसूस करना चाहते हैं, तो चूंकि टाइपिंग है, उंगलियां तो लगी हैं इसमें भी, वो अलग बात है कि स्याही नहीं है उनकी,
1: बिल्कुल,
0: तो पढ़ना शुरू करें आज का।
1: स्याही हमारी है, हमारे प्रिंटर
0: जी
1: की
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल, कागज
1: कागज
0: भी है आज का,
1: भी
0: ऑफिस का ही है,
1: हाँ
0: तो शुरू करते हैं
1: बिल्कुल,
0: आज का जो पहला ईमेल है ये पढ़ते हैं हम।
1: हाँ
0: हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल मौर्य जी।
1: अच्छा बिल्कुल, क्या लिखते हैं?
0: तो अनोखे लाल मौर्य जी ढेर सारे बातें लिखते हैं और कई बार नाराज भी हो जाते हैं।
1: अच्छा, ये तो मिठास बांटते हैं, फिर नाराजगी कैसे हो गई उनकी?
0: हाँ, उनकी नाराजगी हो जाती है कई बार, कहते हैं कि हमारा ईमेल आपने नहीं पढ़ा,
1: अच्छा,
0: और जब ये कहते हैं तो हमें उनसे कहना पड़ता
1: तो
0: है।
1: लिखते क्या हैं? कुछ
0: लिखते
1: अनोखे
0: हैं कि
1: अंदाज में लिखे होंगे कुछ?
0: हाँ बिल्कुल लिखे हैं। नमस्कार, मैं अनोखे लाल मौर्य कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से, मैं आपको ईमेल नहीं कर पाऊंगा।

0: मैं अनोखलाल मौर्य कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से, मैं आपको ईमेल नहीं कर पाऊंगा।
1: ईमेल नहीं कर पाऊंगा?
0: आप मेरे ईमेल का जवाब नहीं देते हो।
1: अच्छा,
0: मेरे ईमेल को 2 रविवार हो गए, आपने स्थान नहीं दिया।
1: अच्छा।
0: मैं आपसे नाराज हूँ और आपको कुछ भी ईमेल नहीं करूंगा। वैसे सभी कार्यक्रम सुनता रहूंगा और कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। मैं आपसे बहुत बहुत बहुत बहुत नाराज हूँ।
1: अरे तो चलिए, अब तो नाराजगी दूर हो गई। और जहां तक बात है कि 2 रविवार शामिल नहीं किया गया, तो देखिए आप सभी बहुत पुराने श्रोता हैं और हमारे साथ नए नए भी श्रोता जुड़ते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारी कोशिश होती है कि कम समय है तो नए श्रोताओं को भी मौका दिया जाए। जो लोग नहीं शामिल हो, कई बार ऐसा भी होता है पुराने श्रोताओं में से ही कई सारे पत्र हो जाते हैं तो कुछ लोग छूट जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो मान लीजिए 2 बार आपका नंबर नहीं लगा तो तीसरी बार देखिए लग गया।
0: बिल्कुल।
1: हो सकता है इस बार कोई छूट जाए,
0: ये
1: भी हो सकता है।
0: जी।
1: तो लेकिन आप तो लिखते रहिए, ऐसा मत करिए कि, और मुझे लगता है नाराजगी दूर हो जाएगी क्योंकि मेल तो शामिल कर
0: वैसे मिथिलेश
1: जी,
0: हमें अपने इन श्रोताओं से इस चीज की उम्मीद नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल, बिल्कुल
0: है ना,
1: ये तो हमारे दिल के बहुत करीब
0: है। करीब है,
1: हाँ, परिवार का हिस्सा है।
0: जब जब जिम्मेदारी होती है आपको कार्यक्रम को अच्छा बनाने में, अपना सहयोग करने में, फिर आप शिकायत करें तो फिर ठीक नहीं लगता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, न केवल ये रेडियो वाले कार्यक्रम जो हमारे फिजिकली प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे योग दिवस पे हमने किया था।
0: जी जी।
1: स्थापना दिवस मनाते हैं, हर कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो अनोखे लाल जी, आपको नाराज होने का हक नहीं है।
0: जी बिल्कुल नहीं है। हम तो कहेंगे कि कतई आप सपने में भी मत सोचिएगा हमसे नाराज होने।
1: हाँ हाँ,
0: है ना,
1: ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि जानबूझ के। हाँ, हालांकि जानबूझ के ही मेल नहीं शामिल किया गया।
0: बिल्कुल
1: है। क्योंकि भाई ज्यादा थे तो उनमें सोचा गया आप तो अपने ही हैं, चलो आप थोड़ी नाराज होंगे।
0: अच्छा, एक चीज है मित्रेश जी, कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में ऐसा होता है कि अगर कोई प्रसाद वगैरह का वितरण हो रहा है तो ऐसे में जो प्रसाद बांटता है ना, उनको प्रसाद
1: नहीं मिल पाता,
0: या फिर वो अपनों को नहीं देते इसलिए कि सबके लिए
1: सबका हो जाए फिर हम लेंगे।
0: तो आप तो
1: वही बात है, वही बात है,
0: अपने हैं।
1: जी जी।
0: मुझे लगता है कि अब नाराजगी दूर हो गई तो अगली बार दिल खोल के लिख डालिए, पढ़ेंगे जरूर।
1: जरूर जरूर,
0: आगे बढ़े।
1: बिल्कुल जरूर।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी हैं, बड़े खूबसूरत ढंग से लिखते हैं।
1: क्या लिखते हैं?
0: सप्रेम नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: 14 अगस्त का कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे उन्होंने सुना, अच्छा लगा। कार्यक्रम में हमें सुपरस्टार बनाया गया, इसके लिए शुक्रिया।
1: क्या बात है।
0: वैसे हमारे लिए फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम ही सुपरस्टार है। 14 अगस्त का इन्होंने लकी 3 मुनव्वर जहां जी के साथ सुना, बेहतरीन अंदाज था। कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। 16 अगस्त को कहते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, बड़े प्यार से पत्रों को पढ़ा गया और सम्मान सहित उत्तर दिए मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने। 17 अगस्त को इन्होंने नमस्ते बरेली में देवेंद्र रावत जी की शानदार प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम सुना, दिल्ली इनका गार्डन हुआ। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर जो पंडित जी हरि प्रसाद जी शास्त्री थे, उसे जो कथा सुनवाई गई वो बेहद पसंद आई। भोले बाबा का गाना भी, गीत भी इन्होंने सुना, उसने कार्यक्रम को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मोहम्मद परवेज, अमृता सिंह, शीश पाल, ब्रजेश तिवारी, हरीश मौर्य, नीतू त्रिपाठी, रोशना मिश्रा, शिप्रा मिश्रा जी की शानदार प्रस्तुतियों के साथ सभी कार्यक्रम सुने, पसंद आए। आप सभी का दिल से आभार प्रकट करते हैं।
1: आपका भी दिल से आभार हम प्रकट करते हैं। ऐसे ही लिखते रहिए और हमारी कोशिश होती है कि तमाम जो त्योहार हैं, क्योंकि त्योहार हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, उससे हमारे जीवन में रोचकता आती है, कुछ नयापन आता है, तो उस नयापन को हम भी अपने श्रोताओं को महसूस कराएं, यही कोशिश होती है। उसे और उसे कैसे अच्छे से मना सकते हैं ये भी बताने की कोशिश होती है। तो आप लोगों को अच्छा लगा है तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे।
0: बिल्कुल मिथिलेश जी, अभी आपने हमारे त्योहारों के बारे में जिक्र किया। आमतौर पर बदलते वक्त के साथ त्योहारों में जो हमारी परंपराएं हैं वो बिल्कुल खो सी गई हैं।
1: बिल्कुल, रौनक कम,
0: रौनक वो नहीं है आजकल। कोई भी त्योहार देख लीजिए आप, किसी भी धर्म का क्यों ना, मोस्टली ज्यादातर यही होता है कि बस घंटे दो घंटे की उमंग जागी और उसके बाद फिर उसका वो कशिश नहीं रहती,
1: उसका बल्कि मार्केटाइजेशन ज्यादा हो गया,
0: ज्यादा हो गया है। अच्छा, दिल से एक दूसरे के साथ बहुत कम मिल पाते हैं लोग, है ना। और बच्चों में तो मुझे लगता है कि इस मोबाइल ने, इस मुहे ने ऐसी आदत डाल दी है कि उन्हें वक्त ही ना मिलता इसकी स्क्रीन से।
1: बड़ों को भी, बच्चों
0: ही
1: नहीं, हम बड़े बूढ़ों को भी देख रहे हैं, एकदम बुजुर्गों तो नहीं, लेकिन जो अधेड़ उम्र 60 के आसपास के जो लोग हैं वो भी बस वो एक पोस्टर बना लेते हैं डिजिटल कि हाँ भाई इस पर्व की शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, अपना फोटो लगा लिए साइड में
0: जी,
1: और नीचे नाम और अपना डेजिग्नेशन वगैरह जो कुछ भी के संयोजक इत्यादि हूँ
0: जी जी,
1: वो लिख लेते हैं, उसको बस फॉरवर्ड कर दिया।
0: सही है। इससे पहले कि हमारे और श्रोता इस इंतजार में हो कि अगला ईमेल कौन से साथी का आने वाला है, तो ये राज खोल देते हैं।

0: हम मालगोदाम रोड जंक्शन बरेली चलते हैं, जहां पर
1: बिल्कुल
0: गरीब भाई इंतजार में हैं। वैसे तो इनको इंतजार रहता है ढेर सारी छुक छुक रेलगाड़ियों का, हो सकता है क्योंकि जंक्शन के पास रहते हैं, भीड़
1: बिल्कुल
0: आएगी तो इनका व्यवसाय भी चलेगा।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हमें इंतजार रहता है ईमेल्स का,
1: ईमेल का।
0: लिखते हैं, मोबाइल छोड़िए, सड़क पर ध्यान दीजिए
1: हाँ।
0: ताकि आप सुरक्षित घर लौट सकें।
1: क्या बात है, बहुत
0: बड़ी
1: बात
0: यही जिक्र
1: कही
0: तो
1: आपने।
0: कर रहे थे हम।
1: बिल्कुल नहीं तो इन्होंने मोबाइल छोड़िए सड़क पर ध्यान दीजिए
0: हाँ।
1: ये कहा है
0: ये उनके लिए
1: तो, हाँ वो सड़क वाली बात
0: हाँ।
1: ये अक्सर कहते हैं, हेलमेट की बात कहते हैं
0: जी।
1: और जाहिर सी बात है, हम एक बार और बात पहले कर चुके हैं कि अक्सर हम देखते हैं बाइक चला रहे हैं, हेलमेट लगा हुआ है, उसी में से मोबाइल घुसा हुआ है, चल रहा हो, सामने से कोई आया धक।
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद आरोप लगाएंगे कि देख के नहीं चलता है वो,
0: कार चला रहे हैं, सामने स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ है मोबाइल, उसमें रील्स चल रही है और ड्राइव कर रहे हैं, देख
1: रील्स चल रहे हैं। नहीं, वो सामने तो कभी कभार ही आप देखेंगे
0: जी।
1: ऐसे कान पे लगा के
0: जी,
1: अरे
0: जी।
1: भाई आपके, खैर चलिए पूरा नई वाली कारों में ही है सुविधा, पुरानी कारों में नहीं थी। पुरानी कार है तो चलिए उसको स्पीकर पे कर लीजिए मोबाइल को, बात करनी बहुत जरूरी है तो नहीं, ऐसे कान में से रख के ड्राइव करेंगे और सामने जो आएगा ठोंक देंगे
0: जी।
1: और सुरक्षित घर लौट सके इन्होंने कहा है, बहुत जरूरी है मोबाइल में, क्या क्या जरूरत है, आप आराम से बाद में बात कर लीजिए।
0: बिल्कुल श्रोताओ, इस समय आपका पत्र मिला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में बीच बीच में ऐसी बातें जो जन जागरूकता के लिए होती हैं वो आपके साथ साझा की जाती हैं
1: हाँ।
0: ये ना समझिएगा कि आपका ईमेल ना पढ़ा जाएगा, बिल्कुल
1: तो ईमेल में तो लिखा है
0: हाँ। तो लिखते हैं, इस सप्ताह के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे से प्रस्तुत किए गए, 14 अगस्त को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, अच्छा लगा आपकी बात आकाशवाणी के साथ में मुनव्वर जी की प्रस्तुति अच्छी थी, स्वतंत्रता दिवस आप कैसे मना रहे हैं ये विषय था, लोगों के विचार भी बड़े अच्छे थे, 15 अगस्त को हेलो बरेली में अमृता जी की प्रस्तुति अच्छी लगी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में शीशपाल जी ने विषय, अगर आप आजादी से पहले के समय के होते तो देश की आजादी के लिए क्या करते, इस पर लोगों के विचार बहुत अच्छे थे।
1: क्या बात,
0: 16 अगस्त को इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना जिसमें मित्रता पर बातचीत की गई, अच्छी लगी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में हरीश जी का जो प्रस्तुतिकरण था वो अच्छा लगा, विषय था आप अपनी देशभक्ति कैसे क्या करके जाहिर करते हैं, मनभावन की प्रस्तुति भी इनको पसंद आई, एक मुलाकात में मिथिलेश जी के साथ प्रमोद कुमार जी की बातचीत अच्छी थी, 17 अगस्त को नमस्ते बरेली में रावत जी की प्रस्तुति अच्छी लगी, शिव भजन सुनवाकर प्रोग्राम को भक्ति में बना दिया गया, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में प्रोग्राम में नागों के बारे में कितने जागरूक हैं आप, इस विषय पर जो बातचीत थी मुनव्वर जी द्वारा वो इनको बहुत अच्छी लगी, गाने भी अच्छे थे, 18 अगस्त को इन्होंने झुमका गिरारे प्रोग्राम में अलकनाथ मंदिर से नीतू जी की पेशकश सुनी, अच्छी लगी, चल रहे कांवरिया भजन सुनवा के कांवरियों का मन मोह लिया, आपकी बात आकाशवाणी के साथ में ब्रजेश तिवारी जी द्वारा क्या आप कभी अचानक दुर्घटना का शिकार हुए, इस विषय को लेकर लोगों से की गई बातचीत अच्छी थी, 19 अगस्त को इन्होंने यंग बरेली सुना रोचना जी के साथ, और आपकी बात आकाशवाणी के साथ शीशपाल जी के साथ सुना जिसमें सौर ऊर्जा विषय पर जानकारी थी, ये कार्यक्रम में उनको बहुत पसंद आया, 20 अगस्त को इन्होंने झुमका गिरारे में नीतू जी द्वारा सौर ऊर्जा को लेकर लोगों से बड़ी अच्छी बातचीत की गई, आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में ब्रजेश तिवारी द्वारा एक विषय था, मच्छर एक इंसान को क्या क्या बना देता है, अब हालांकि चलिए इस पर बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले, सभी को बहुत धन्यवाद। अब चूंकि मिथिलेश जी हंसने का भी कारण है, चूंकि फिल्मी फ्राइडे करते हैं और फिल्मों से वास्ता है, तो नाना पाटेकर जी याद आ गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी नाना पाटेकर जी याद आए, तभी मैंने भी विषय रखा, क्योंकि वो पूरा नहीं लिख सकते इसलिए मैंने केवल उतना ही रखा
0: जी
1: कि क्या क्या बना था
0: जी।
1: तो जाहिर सी बात है, हम इंफोटेनमेंट करने के लिए हैं, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी हो वो भी जरूरी है, एकदम सीरियस टॉपिक हो जाए, पता चला कि अब उस पर सीरियस बातें हो रही हैं, लोग गूगल से कॉपी पेस्ट मार दे रहे हैं, क्या फायदा।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा हाँ एक चीज और है जिसे इनके पत्र से लग रहा है, और भी श्रोता आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, ज्यादातर इस कार्यक्रम में जो लेटर्स आते हैं उसमें उसकी तारीफ होती है, विषयों की तारीफ होती है, तो दो बातें हैं उससे संबंधित, एक तो ये कि आप लोग भी कुछ विषय सुझाइए, जैसे गरीब भाई पिछली बार एक बार उन्होंने विषय बताया था, आप बाकी लोग भी कुछ विषय सुझाइए, और दूसरी बात ये ज्यादातर विषय ऐसे होते हैं कि आपको कनेक्ट करने के लिए
0: जी
1: वो विषय रखे जाते हैं, पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं,
0: बिल्कुल
1: जैसे क्या कभी अचानक दुर्घटना का शिकार हुए हैं, या फिर जैसे मच्छर वाली बात थी,
0: बिल्कुल
1: या सौर ऊर्जा का प्रयोग वाली, क्या आप सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों, ये सवाल था। तो उसमें आपको

0: बताना था,
1: बिल्कुल
0: आपका अपना पर्सनल अनुभव बताना था कि आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर पैनल आपने लगाया है नहीं लगवाया है, और नहीं लगवाया तो क्यों नहीं लगवाया है, और लेकिन उसमें कमेंट्स जो थे सोशल मीडिया पे वो जनरलाइज थे,
1: बिल्कुल
0: कि हाँ सोलर एनर्जी अच्छी है, करना चाहिए। अरे भाई करना चाहिए तो पता है आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो उससे दूसरे प्रेरित होंगे।
1: बिल्कुल,
0: वो गूगल से पेस्ट कर दिया, चाहे एआई से कहा कि हाँ जरा सा लिख दो, उसको पेस्ट कर दिया, क्या फायदा उसका।
1: बिल्कुल, अब सोलर की जहां बात आती है तो आमतौर पर देखिए अभी तो हमें ऐसा इतना महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब बिजली के दाम बढ़ेंगे, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे में याद आएंगे हमें प्राकृतिक संसाधन जिनसे हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।
0: नहीं, अभी ही याद आ रही है, बहुत सारी ऐसी जगह है
1: जी
0: जहाँ बिजली की कटौती बहुत ज्यादा थी, और लेकिन सोलर पैनल लगने की वजह से उन इलाकों में बहुत सारे लोगों ने लगवाया,
1: बिल्कुल,
0: और बिजली का उत्पादन हुआ, बढ़ गया, तो कटौती कम हो गई।
1: बहुत सारी तरकीबें हैं मित्रेश जी, आमतौर पर हमारा घरेलू कनेक्शन है, हम अगर सब्सिडाइज नहीं लेना चाहते तो व्यक्तिगत रूप से हम 500-500 या 600-600 वाट के पैनल खरीद लें, 2-3 इन्वर्टर के साथ एक कन्वर्टर आता है उसे लगा के कनेक्ट कर दें, तो इससे
0: बैकअप भी रखे,
1: बैकअप भी बना रहेगा, और बिजली नहीं आएगी तो भी हमारा इन्वर्टर चलता रहेगा
0: अगर आपको सब्सिडी नहीं लेनी।
1: हाँ तो अच्छा, बड़ी अच्छी चीज है ये तो, और मुझे लगता है जहाँ आपका इन्वर्टर बिजली ना आने पे 2 या 3 घंटे चलता है, वहाँ सोलर पैनल अगर आप अटैच कर देंगे तो वो कम से कम चलेगा 7-8 घंटे।
0: और खासतौर पे अगर आप देखें, हम उत्तर भारत में हैं या फिर रुहेलखंड क्षेत्र में हैं, आप चले यहाँ पहाड़ों पे या फिर साउथ में
1: जी,
0: उधर उडुपी कर्नाटक वगैरह में गया था, या फिर महाराष्ट्र के जो पठारी इलाका है उधर पहाड़ों पे मैक्सिमम जगह सोलर पैनल यूज किए जाते हैं। और भी चीजें हैं, अक्षय ऊर्जा की जहां तक बात है, हवा है और पानी है,
1: बिल्कुल
0: इनका भी जिस तरह इस्तेमाल हो वो करना चाहिए हमें।
1: विंड मिल करके जो विंड मिल आ रही है आजकल, लेकिन अभी विंड मिल की जो
0: वो इधर उतना सक्सेस नहीं है, गुजरात राजस्थान वगैरह में,
1: जहाँ पर हवा की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की रहती है, वो ज्यादा बेस्ट रहती है। लेकिन
0: यार अपने एरिया में जो हम लोग कर सकते हैं वो है सोलर,
1: सबसे बेस्ट है,
0: सबसे बेस्ट है, और सरकार तो सब्सिडी भी दे रही है,
1: बिल्कुल
0: 3 किलोवाट पे सेंट्रल की है 78,000 और स्टेट की है 30,000।
1: बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में ये जरूरत है हम सबकी, और इसे अभी से अपनाना शुरू करना चाहिए हम सभी को। आगे बढ़े
0: जी, जरूर
1: चलते हैं नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी और इनके क्लब के सभी सदस्य कहते हैं कि वक्त के साथ मेरी जान भुला देते हैं, लोग बरसों की भी पहचान भुला देते हैं, अरे उसने तो मोहब्बत ही भुलाई मेरी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एहसान भुला देते हैं।
0: किन लोगों की तरफ इशारा है आपका?
1: पता नहीं ऐसा।
0: खैर पंक्तियां अच्छी हैं, बहुत बहुत बढ़िया है,
1: कोई किसी को भुला दे मगर आप हमें मत भुलाइयो।
0: अच्छा,
1: हम कह रहे हैं ये इनसे ना।
0: सही बात है।
1: तो 14 अगस्त का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो आपकी बात आकाशवाणी के साथ में विषय था, स्वतंत्रता दिवस आप कैसे मना रहे हैं, ये अच्छा विषय था। हमने 15 अगस्त को हेलो बरेली में बताया अमृता जी को कि हमने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया, श्रोताओं से अच्छी बात की इस विषय पर, अमृता जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बात की। 16 का अंकुर कार्यक्रम इनको अच्छा लगा, जीवन में मित्रता का महत्व इस विषय पर चर्चा की गई थी, और नाजमा दीदी ने कार्यक्रम पेश किया, इस दिन का मन भावन भी इनको अच्छा लगा, और आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना इन्होंने, ये भी इनको बहुत अच्छा लगा। 16 का ग्राम जगत इन्होंने सुना, धारा भैया के साथ चर्चा थी ग्राम स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये वार्ता पसंद आई। 17 को नमस्ते बरेली में पंडित हरिपाल शास्त्री जी से नाग पंचमी पर्व पर विशेष जानकारी मिली। 17 को ही आपकी बात आकाशवाणी के साथ में विषय था, नागों के बारे में कितने जागरूक हैं आप। 18 को हेलो किसान भी सुना, और आज की बात प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानकारी दी गई किसान वाणी कार्यक्रम में। 18 को नमस्ते बरेली झुमका गिरारे नीतू जी के साथ सुना, बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का नारी संसार नूर फातिमा जी के साथ सुना, काजल खान जी ने प्लास्टिक से थोड़ा परहेज अच्छा इस विषय पर जागरूक किया कार्यक्रम। यंग बरेली भी इन्होंने सुना, सभी उद्घोषकों की प्रस्तुति काबिले तारीफ रही। इन दिनों काफी अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिल रहे हैं, मिथिलेश सर और सभी उद्घोषक बंधुओं का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। और मिथिलेश सर जी, 25 अगस्त को ईद उल मिलादुल नबी है, उससे पहले जो झुमका गिरारे कार्यक्रम हो तो उसी पर हो, क्योंकि हमारे शहर बरेली को बहुत ही सुंदर सजाया जाता है कुछ खास जगह पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा शेड्यूल रहता भी है, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी त्योहार हैं, सभी संप्रदायों के जो त्योहार हैं उस पे कुछ विशेष किया जाए, बहुत ज्यादा ना कर पाए तो कुछ तो हो पाए।
1: बिल्कुल,
0: और बाकी आप जो कह रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया, हमारी पूरी

0: कोशिश होती है कि ये सारे कार्यक्रम अच्छे करें
1: जी, बिल्कुल
0: ऐसे ही साथ बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर चलते हैं। पुरुषोत्तम कुमार जी कुछ कह रहे हैं।
0: क्या कह रहे हैं?
1: कह रहे हैं कि आपके केंद्र से बहुत मनोरंजन और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। आपके कार्यक्रम हमारे यहाँ जबरदस्त चल रहे हैं। मिथिलेश श्रीवास्तव जी और साथी, आपका पत्र मिला कार्यक्रम जब प्रस्तुत करते हैं तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं।
0: क्या बात है।
1: आप सभी श्रोताओं के लिए बड़ी मेहनत और लगन से कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। झुमका घेरारे में लोगों से की गई बातचीत भी जबरदस्त लगती है। 24 तारीख को युवाणी में इन्होंने पत्रकारिता पर बातचीत सुनी, पसंद आई। हमारे भद्रवाह में आपके सभी कार्यक्रम जबरदस्त चलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी अगले हफ्ते कहेंगे कुछ।
0: क्या बात है, ये बड़ी खुशी मिलती है कि बरेली जो ये स्टेशन खोला गया, केवल ये LRS है, लोकल रेडियो स्टेशन है,
1: बिल्कुल
0: केवल बरेली के श्रोताओं के लिए था कि यहाँ के लिए कुछ अलग, यहाँ का लोकल कुछ पेश किया जाएगा
1: जी।
0: लेकिन आज की स्थिति ये है कि दूर दराज, यहाँ से बहुत दूर, जैसे देखिए भंडरवा में, जम्मू कश्मीर में ये श्रोता हैं और मेल करते हैं, सुनते हैं, हमें हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं
1: जी।
0: तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और हम भी कोशिश करेंगे कि इनकी जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उस पर हम खरे उतर सकें। बाकी अगर कुछ आप सुझाव भी देना चाहें अगले पत्र में वो भी दीजिएगा, कि कुछ और हम टॉपिक्स शामिल करें या कुछ और कर सकते हैं तो वो भी बताइएगा। और दूसरा ये कि आप सभी श्रोताओं को खास तौर पे, मैं देख रहा हूँ कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ और झुमका गिरा रहे ये ज्यादा पसंद आ रहा
1: है। बिल्कुल,
0: तो बहुत ही अच्छा है। बाकी कार्यक्रम भी सुनिए
1: जी
0: और बताइए कि उनमें क्या बदलाव किया है, कि वो भी पसंद आए आपको। और दूसरा, जैसे कि अब यूट्यूब पे एक पोस्ट पड़ी है, आपके वोट चाहिए,
1: पोल
0: है, पोल पे आप वोट करिए।
1: ये हम पूछने वाले थे आपसे कि उस पोल का क्या हुआ, कितने श्रोताओं ने कौन कौन से कार्यक्रमों को अपनी जो वो दिए हैं।
0: उसपे भी वही है, आपकी बात आकाशवाणी के साथ सबसे नंबर 1 चल रहा
1: है। पे है।
0: हाँ, हालांकि पोस्ट कई सारी है
1: जी जी,
0: तो चार ऑप्शन होता है
1: जी,
0: तो उसमें आपकी बात आकाशवाणी के साथ है, अच्छा झुमका गिरारे को भी अच्छा मिल रहा है। और एक पोस्ट है जिसमें किसान वाणी, ग्राम जगत, नारी संसार और एक और किसी कार्यक्रम को,
1: मतलब एक वर्ग के कार्यक्रम जो है,
0: नारी संसार का परसेंटेज सबसे ज्यादा है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: ये भी अच्छी बात है।
0: हाँ हाँ, तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे हम और बदलाव करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: लेकिन अब हम बदलाव करते हैं अपनी बातों से उधर, जहाँ अगला ईमेल कर रहा है इंतजार। तो आप हैं मौला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर।
0: क्या लिखते
1: आपको हैं? हमारा प्यार भरा सलाम।
0: सलाम आपको।
1: कैसे हैं आप मित्रेश जी?
0: अरे फर्स्ट क्लास हैं।
1: हम सब आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद भी आ रहे हैं। नमस्ते बरेली, फिल्मी फ्राइडे, आपकी पसंद, अनुरोध गीत, हेलो बरेली, मन भावन, लकी थ्री, युववाणी, आपका पत्र मिला वगैरह वगैरह। हमें 20 अगस्त का आपकी पसंद और अनुरोध गीत जो नीतू जी ने पेश किया था बहुत अच्छा लगा। बहुत कम पर खत बहुत कम शामिल किए।
0: अच्छा, अच्छा,
1: अनुरोध गीत में।
0: और
1: 19
0: अनुरोध गीत में कम था।
1: हाँ हाँ,
0: अच्छा अच्छा।
1: और 19 तारीख का इनको आपकी पसंद अनुरोध गीत जो रोचना जी ने पेश किए थे बेहद अच्छा लगा। 18 अगस्त का आपकी पसंद जो रोचना जी ने, नीतू त्रिपाठी जी ने पेश किया था, अच्छा था। इसके अलावा 17 अगस्त को अनुरोध गीत इन्होंने सुना मुनव्वर जहां के साथ, ये भी इनको पसंद आया। 15 अगस्त का अनुरोध गीत अमृता जी ने पेश किया था, अच्छा लगा। 13 अगस्त का अनुरोध गीत जो परवेज जी ने पेश किया वो भी इनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक शिकायत है आपसे, आपका पत्र मिला में 2 हफ्ते से हमारा मेल शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों, जबकि हम बराबर मेल कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: क्या हम ईमेल करना बंद कर दें? क्या आप यही चाहते हैं कि इस बार शामिल नहीं किया तो अगली बार से मेल और प्रोग्राम सुनना, मतलब मेल करना, प्रोग्राम सुनना,
0: दोनों
1: बंद कर देंगे?
0: तो चलिए इस बार तो शामिल हो गया, बंद मत करिएगा प्लीज।
1: करने ही ना देंगे हम बंद। है ना, जैसे ही ऐसा लगेगा कि ये बंद करेंगे हम पढ़ देंगे। तो
0: कोई नहीं। और आपने लिखा है कि खत कम शामिल किए गए, तो देखिए आपकी पसंद हो या फिर अनुरोध गीत हो या फिर कोई और प्रोग्राम हो
1: जी,
0: मुझे लगता है अगर चुनिंदा श्रोताओं के ही नाम और फरमाइशें शामिल की जाएंगी
1: जी,
0: तो आप सभी श्रोताओं में एक उत्सुकता बनी रहेगी,
1: बिल्कुल
0: रोचकता बनी रहेगी, अरे मेरा शामिल हो गया आज, वाह
1: बिल्कुल,
0: और किसी दिन होगा अरे यार आज शामिल नहीं हुआ, है ना।

0: कार्यक्रम
1: कल हाँ फिर भेजेंगे, क्या पता कल शामिल हो जाए
0: जी।
1: नहीं अगर आपका रोज ही शामिल होता रहेगा ये तो हो ही जाता है,
0: हो जाएगा। या किसी और से फोन करके पूछ ले, अरे मेरा नाम आया क्या?
1: हाँ।
0: उन्होंने कहा आज हाँ आया, अच्छा ठीक है कोई बात। और अगर उन्होंने कहा नहीं आया तो फिर अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे
1: तो ये उत्सुकता बनी रहेगी। दूसरी दो रीजन है, पहला तो रीजन ये है मैंने बताया, मान लीजिए कहीं आप कंपटीशन भी दे रहे हैं, पता चला कि 4-5 लोग हैं वो भी कमजोर हैं, तो आपको पता है हाँ फर्स्ट मैं ही आऊंगा, छोड़ो
0: जी जी,
1: है ना
0: जी।
1: लेकिन पता चला कि एकदम कंपटीशन है, सब तगड़े प्रतिद्वंद्वी हैं आपके, तो आप मजा आएगा फिर, हाँ इनको पटक देनी है
0: जी।
1: मुझे जीतना है ना
0: जी।
1: तो ये चीज होगी। दूसरा ये कि अगर पूरे प्रोग्राम में नाम ही नाम जाएंगे तो गाने कब जाएंगे?
0: बिल्कुल,
1: ये भी तो होना चाहिए, कुछ गाने भी प्रसारित हो।
0: बिल्कुल,
1: गानों की संख्या बढ़ सके। कुछ होता ये भी चाहते हैं कि आप खाली नाम ही पढ़ देते हैं
0: जी,
1: गाने भी तो चलाइए, इसलिए आप सभी का ख्याल रखना पड़ता है, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेल तो लिखते रहिएगा, मेल शामिल होंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि कभी आपके शामिल होंगे, कभी किसी और के शामिल होंगे, कभी कोई रह जाएगा, कभी आप रह जाएंगे, समय है। और क्योंकि हाँ मेल कई सारे आ रहे हैं और समय कम होता है
0: मिथिलेश जी, जीवन में अगर बैलेंस बन जाए तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या बात है, लेकिन बैलेंस किसी का नहीं बनता,
1: किसी का नहीं बनता, कोई ना कोई तो नाराज होता है।
0: बड़े आगे
1: जी जरूर,
0: दोपहिया वाहन से चाहे दूर जाए या पास, पर हेलमेट जरूर लगाएं।
1: बहुत बढ़िया ख्याल, ये उन्हीं का होगा, विनेश जी का होगा
0: जी। आप सभी को सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कभी कभी लोग अपने वाहन से पास ही में जाते हैं और ये सोचकर हेलमेट नहीं लगाते कि पास ही में तो जाना है थोड़ी दूर, पर समय का कोई पता नहीं, थोड़ी दूर में भी वो आपका इंतजार कर रहा हो, है ना। इसलिए हेलमेट हमेशा लगाइएगा। 14 अगस्त को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, इनको अच्छा लगा, आपकी पसंद भी सुना इस दिन का, इनको ढेर सारे कमेंट के साथ, प्रस्तुति अच्छी थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में स्वतंत्रता दिवस पर बहुत अच्छे विचार सुनने को मिले। 15 अगस्त को आपकी पसंद में शानदार गाने सुनवाए गए। युववाणी में वैभव जी ने प्रस्तुति अच्छी दी। 16 अगस्त को अंकुर में पुस्तकों पर जानकारी अच्छी थी। ग्राम जगत में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर चर्चा ज्ञानवर्धक थी। आपका पत्र मिला की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी रही। 17 अगस्त को आपकी पसंद में गीतों का चयन अच्छा था। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में नागों के बारे में कितने जागरूक हैं, ये कई बार हमारे श्रोताओं ने बताया है आज। नागपंचमी पर यह विषय अच्छा था। युववाणी में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभावों के बारे में चर्चा अच्छी थी। 18 अगस्त को इन्होंने नीतू जी द्वारा आपकी पसंद की प्रस्तुति का जो अंदाज था वो इनको बहुत अच्छा लगा। झुमका गरारी प्रोग्राम में आपने अलकनाथ मंदिर से कांवरियों से बात करके प्रोग्राम को भक्ति में बना दिया। 19 अगस्त को ही यंग बरेली में आर्चर अर्जुन कुमार से बातचीत ज्ञानवर्धक थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में शीशपाल जी द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में श्रोताओं से बातचीत अच्छी लगी। ग्राम जगत में पोस्ट ऑफिस से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई अच्छी थी। 20 अगस्त को नमस्ते बरेली में इन्होंने नीतू जी की प्रस्तुति सुनी, बहुत अच्छी लगी। झुमका गरारी प्रोग्राम भी इनको अच्छा लगा। अक्षय दिवस पर जो लोगों से बातचीत की जानकारी दी। और आप सभी को अपनी शानदार प्रस्तुति देने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये जो प्रस्तुति है इसको ऐसे ही बनाए रखिएगा।
1: बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही नहीं बल्कि इससे भी और बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
0: बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से विनेश कुमार जी का ये ईमेल है, आपने नाम पहले ही बता दिया
1: जी। जी जी, हेलमेट की बात की उन्होंने, नाम पहले ही पता लग गया
0: जी। जी,
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह आप जुड़े रहिए और हम उम्मीद करेंगे कि आगे और भी अच्छी प्रस्तुतियां दें, और आप लोग भी कुछ विषय बताइए ताकि और कुछ हम लोग अच्छा और कर सकें
0: जी।
1: तो मुझे लगता है कि अब कई सारे मेल हमने ले लिए और समय भी अब हमें इशारा,
0: हाँ,
1: सामने बैठे जो है ब्रजेश हमें इशारा कर रहे हैं
0: जी
1: कि अब बस करो, बहुत हुआ।
0: अगर हम बोलते भी रहेंगे तो वो निकाल देंगे। हाँ। इससे बढ़िया है कि हम ही वाइंड अप कर लें।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो श्रोताओं, हमें आपकी ढेर सारी प्रतिक्रियाओं, सुझावों और शिकायतों और तारीफों का भी इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आप बेबाक ईमेल हमें भेजिएगा, पूरे हफ्ते के कार्यक्रम सुनिएगा और हमें ईमेल कर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है aapkapatrmila.bareli@gmail.com। अगर आप हमारे परंपरागत तरीके से अपनी बात कहना चाहें तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं, और उसके लिए पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिनकोड 243001। इसके अलावा हमारे श्रोता हमसे एक और माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका पत्र मिला के लिए हमारे श्रोता हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप वाला नंबर हम आपको बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए 9457395859। मिथिलेश जी, ये सही नंबर है
1: जी? बिल्कुल सही है।
0: हाँ
1: इस पे

0: अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं लकी थ्री और मन भावन के लिए भी अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं, लिख सकते हैं।
1: तो अब हमें चलना पड़ेगा, हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब इस मौसम में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: जी,
1: आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र
0: और मिथिलेश को दीजिए अनुमति,
1: कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम,
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला, यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:30 होने वाले हैं। आइए अब आपको जोड़ते हैं FM रेनबो के कार्यक्रमों से।
3: नाम आने से तो हम अब एक नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जितना अभी हमने काम किया उससे और अधिक प्रगति लाएं और जिले में निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है जो अभी फील नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जल संरचनाएं या नदियां जैसा साहब ने बताया वो है, तो अभी हमारी वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद 10 वर्षों बाद तो चिंता का विषय बनेगा,
4: बन सकता है।
3: तो हमारी योजना ये है कि जब वो विषय बने उसके पहले ही हम इतना कुछ काम कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को समस्या का सामना न करना पड़े, उनके पास एक बेहतर जल की व्यवस्थाएं हो। और इसके लिए लगातार हम लोग जन समुदाय को भी हमें प्रशासनिक भी बहुत सहयोग मिल रहा है, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं उनका लगातार मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि आरडी की मैक्सिमम स्कीम आरडी की होती है, तो स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत हमको सहयोग मिल रहा है सभी, मैं कहूँ इस तरह समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें एक उपलब्धि मिली है हमारा नाम जिले का लेके उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही हम प्रयास कर रहे हैं।
5: निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आना आपके साथ साथ पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए, सरोवरों के संवर्धन के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कैसे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं?
3: देखिए, अगर हम अपने मतलब देश की बात करें या प्रदेश की बात करें तो आज की स्थिति में हम सब लगातार देख रहे हैं कि जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है, और जितना हम उपयोग कर रहे हैं, जितना पर कैपिटा आवश्यकता है और कितना हम उपयोग कर रहे हैं, एक तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा पर व्यक्ति उपयोग किया जा रहा है जल, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है इसलिए। और दूसरा, जो आज से हम कहें 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जो स्थिति थी आपके वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल की, वो बहुत डिप्लीट हो गई, हर जगह डिप्लीट हुई है। तो इवन जो आपके बहुत नदियों के कछार वाले क्षेत्र हैं जो बहुत अच्छी जल उपलब्ध है, वहां पे भी जल के संकट के स्थितियां आ गई हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जल संरक्षण में सरकार जरूर एक, क्योंकि प्रशासन का ये, सरकार का ये काम होता है कि जो चीजें वो प्लानिंग करे और उनको एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो समस्याएं जनता को झेलनी है उसमें उसकी जिम्मेदारी सरकार पे होती है। लेकिन जल संरक्षण ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज की स्थिति में पानी नहीं है और पानी को लेके कितने सारे विषय हो रहे हैं। तो एज अ पर्सन हमें अपने व्यक्तिगत, घर की बात करें, अपने ऑफिस की बात करें, या हमारे खेत हैं, किसान हैं, हमको अपना प्रयास करना चाहिए कि हम जो एक इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उस भावना से काम करें। और अपना जो भी परिसर, जितना बड़ा भी घर है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, उसमें अगर हमने जल संरक्षण का प्रयास कर लिया तो एटलीस्ट हम एक एक छोटे छोटे प्रयास से, हम जानते हैं मून मून सागर भरता है, बड़ी अच्छी कहावत है, तो हम सबको अपना व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। और जो बड़े लेवल के प्रयास है वो तो शासन के माध्यम से हो ही रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा। और हमने भी यही प्रयास किया है, जो हम लोगों ने अभियान चलाया है उसमें हमने यही प्रयास किया है कि जैसे हमने लगभग 4000 SHG की महिलाओं के माध्यम से सोकपिट और बोरी बंधान के काम कराए, जिसमें कोई राशि खर्च नहीं हुई। तो बेसिकली इस पूरे अभियान का, या तो पंचायतों के माध्यम से, या तो इसमें और समुदाय के माध्यम से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग इस अभियान से जुड़े, लोगों को व्यक्तिगत रूप से महसूस हो कि ये हमारा काम है, ये किसी सरकार का या किसी का काम नहीं है, ये हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो प्रयास ये है कि हर एक ऐसा रूफ जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो उसका पानी जमीन में जाए, हर एक खेत जिसमें पानी भरता है, हमने किसानों से चर्चा की है कि अपने खेत में छोटी जगह जहां भरता हो वहां वो ऐसा कुछ सोकपिट जैसा बनाए जिससे पानी कम से कम भरे नहीं और उनके लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए बड़ा एक, हम कहें जन आंदोलन जैसा विषय है जो सबको इसकी माता समझनी पड़ेगी, लेकिन प्रयास ऐसे धीरे धीरे शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हुए हैं जो आगे जाके बहुत उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारा बस यही जिले में प्रयास है कि हम ऐसे ही, मतलब लोगों को जब भी हम किसी जगह, जहां भी लोग होते हैं, जहां जन समुदाय होता है, चौपाल में चर्चा करते हैं कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो लोगों के दिमाग में इस बिंदु को लाना कि ये एक एसेंशियल आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समुदाय, व्यक्ति, सरकार सब मिलके जब काम करेंगे तब हम, मैं चाहे जिले की बात करूं, प्रदेश की या देश की, तब हम जो ये जल की आवश्यकता है, जल की जो

0: कैपेसिटी है उससे लड़ पाएंगे और उसको अपने भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित कर पाएंगे उपलब्धता, यही हमारा लगातार प्रयास है और उसी भावना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
1: गजेंद्र सर, आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके बाद जल संरक्षण हो, अमृत सरोवर हो, कैच द रेन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, आपने इस क्षेत्र में लगातार मैदानी स्तर पर परिणामदायी कार्य किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के? कौन से ऐसे व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं? और जैसा कि आप जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे सामूहिक रूप से किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है या जो उनकी अपेक्षा है हम सभी लोगों से, वो अगर जल संरक्षण के लिए है तो वो वास्तव में आवश्यक है। और आप देखें तो वर्ल्ड वाइड वाटर स्कैर्सिटी की स्थिति है और क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय है, खासकर स्वच्छ जल और आपके निस्तारी प्रयोजन के लिए होने वाले जल की उपलब्धता बहुत कम है। भारत यूनिसेफ के एक रैंकिंग में भारत में उपलब्ध जल का केवल 18% वाटर जो है वो उपयोगी है आपके लिए, जो कि अदरवाइज वो पॉल्यूटेड है या कुछ अलग तरीके के कारण से है। तो ये विषय ऐसा है जो हर तरीके से लोगों के प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और अगर मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो हमारे पास 3 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमियाँ हैं, 2,40,000 परिवार हैं। तो जो मैडम के भी हमारे कॉल हैं, वो हम अपेक्षा ये करेंगे कि प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो और अपने खेत में वो लो रिच जहाँ है हम वहाँ पर रिचार्ज पिट बनाएं, असफल बोरों को फिर से जीवंत करें, क्योंकि एक धारणा है जल के लिए कि स्रोतों से पानी लो और स्रोतों को पानी दो
3: जी,
2: तो जो
3: जी।
2: स्रोत हमें देते देते सूख गए हैं उनको अगर हम वापस भर सकें तो हम नहीं तो अगली पीढ़ी उसको उपयोग कर पाएगी। तो आज की जो एक चुनौती है, मैं मानता हूँ कि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक घटक है, तो हम उस पे जाके काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर स्थिति में जो जहाँ जैसा हो वो रियल टाइम आज उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो एक ये धारणा के साथ नरसिंहपुर आगे बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल। श्रोताओं, अमृत सरोवर, जल संरक्षण, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन विषयों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले का जिक्र किया था। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था हमारे अतिथि विशेषज्ञों को, श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और श्री गजेंद्र सिंह नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हमें बता दें कि नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्य आप दोनों के ही नेतृत्व में, आप दोनों के ही मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के समन्वित प्रयास से अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हुआ है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन को भी नई दिशा मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय देकर हमसे विस्तार में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार।
4: नरसिंहपुर के अमृत सरोवर, ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। अब पोस्टबॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता, कैच द रेन। अतिथि हैं श्री भरत भाई तिलवा, ट्रस्टी गिर गंगा परिवार ट्रस्ट, श्री दिलीप भाई सेकिया, संस्थापक ट्रस्टी और अध्यक्ष गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। भेंट करता है हितेश कुमार मावाणी, कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी अहमदाबाद।
5: दिलीप भाई और भरत भाई, आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है।
6: नमस्कार।
5: सबसे प्रथम हम दिलीप भाई से जानेंगे कि आपको ये जल संचय कामगिरी है उसकी प्रेरणा कब मिली और इसके लिए किन परिस्थितियां जवाबदार हैं?
6: बेसिकली मैं किसान का बंदा हूँ, अभी भी मैं और मेरे फादर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मेरे पास भी पशुपालन का काम है, 200 गिर की गायों है। तो मैंने चीज देखा कि जिस साल बारिश होती है ना, इस साल मेरे को गाय को चारा मुफ्त मिलता था, जिस साल बारिश नहीं होती है इस साल मेरे को वो परचेस करना महंगा पड़ता था। किसान के साथ साथ मैं वहां के भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना, तो इस समय में मैंने बहुत गांव का प्रवास किया, किसानों को मिले। उस समय मेरे को सबसे बड़ी अगर किसान की ओर विस्तार की समस्या अगर कोई दिखाई देने, वो दिखाई दी पानी। मैंने नजदीक से जुआ कि मेरी सौराष्ट्र की धरती के किसानों को अगर पूरा पानी मिल जाए ना, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने जैसा अनाज पैदा करने की ताकत वहाँ की जमीनों में भी है और वहाँ के किसानों में भी है।

0: सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पानी। इस जगह पे एक समय 20-30-40 फीट पे पानी था। वो पानी धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बहुत गहराई पे 100-200-500 हजार, कहीं कहीं जगह पे तो 2-2 हजार फीट पे गहराई पे चला गया। वहां की किसानों की जो भी आमदनी होती है ना, वो आमदनी का 25% पानी ढूंढने में जा रही है। तो इस विषय की एक प्रेरणा मिली कि समस्या का रोल बहुत समझा। तुमने देखा तो बारिश तो हो ही रही है, फिर भी पानी नहीं है। तो हमने थोड़ी भौगोलिक रचना का अभ्यास किया, क्योंकि वो सौराष्ट्र की धरती है। यहाँ पे 1200 किलोमीटर का दरिया किनारा है, वहां की धरती पथराड़ और डोंगरा है, बारिश गिरती है, लेकिन वहां जरूरत है इतना रोकने का, छोटे मोटे चेक डैम और तालाब न होना हिसाबे 80-90% पानी समुद्र में चला जाए। तो इस विषय की गंभीरता हमको समझ में आई और उसके बाद हमने इस विषय पे काम शुरू किया, लोगों को जोड़कर ये पानी हम कैसे बचा पाए।
1: दिलीप भाई, आप ये भी बात कीजिए कि सौराष्ट्र रीजन में जो 1984-85-86 में जब 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी, तो उस दौरान कैसी परिस्थिति थी?
0: एक समय था, वो हम बात किया जाए कि यहाँ से 40-50 साल के पुराने की बात है। इस समय में क्या हालत थी कि वैसे कोई साधन भी नहीं थे, तो जमीन में से पानी भी निकाल नहीं रहे थे हम लोग। और इस समय गुजरात के अंदर 3 साल का 85, 86 और 87, इन 3 साल में ऊपर से बारिश नहीं गिरी। फिर भी एक बात तो सही है कि वहां पे लोग सहन कर गए। उसका एक विजन था कि ऊपर से बारिश नहीं गिरी थी, जमीन के अंदर पानी कहीं ना कहीं पड़ा था। लेकिन उस समय में राजकोट को इतने दुष्काल के समय में देखो कि वहां पे उस समय में बस्ती भी कम थी, फिर भी ट्रेन से पानी वहां पे आया था। और इसके बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और यहाँ के सीएम ने भी वहां पे मेहनत की। और वो समय था कि बहुत सारे छोटे मोटे चेक डैम बने थे, और वो चेक डैम बनने के बाद वो वहां के विस्तार में, किसानों में और विस्तारों में थोड़ी सी मजबूती हुई, लोगों दो पैसा कामने लगे, थोड़ा सा विकास हुआ और राष्ट्र को वहां पे फायदा भी हुआ। मैंने जब देखा कि सबसे बड़ी समस्या पानी है, तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने 3 साल तो मेहनत की गवर्नमेंट में रजूआत करने के लिए। तो काम इतना बड़ा था, ये प्रोसेस गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी बड़ी थी। तो मैंने बोला कि अगर कोई भी कामयाबी चाहे ना, तो इसमें लोक आंदोलन होना चाहिए, लोक जागृति होनी चाहिए। तो हमारा एक एनजीओ था गीर गंगा परिवार, जो हमने गायों के लिए तैयार किया था, और ये हमने पानी के विषय में काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे लोगों को जोड़ जोड़ के हमने काम शुरू किया। पहली शुरुआत हमने की थी कि एक चेक डैम को रिपेयर किया, 2022 में हमने काम की शुरुआत की थी।
1: तो भरत भाई, आपको ये जल संचय कामगिरी में कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई?
2: पहली बार गिरगंगा परिवार का मेरे को आमंत्रण दिया गया, प्रेसिडेंट हिसाब से मैंने पहली बार दिलीप भाई को सुना, उसकी जो बात में जो लगाव और प्रेम था पानी बचाने का, उसी संदेश से मेरे को प्रेरणा मिली कि गिरगंगा परिवार जो काम कर रहा है, इसमें उसका पर्सनल ज्ञातिवाद वगैरह कोई स्वर जन समुदाय का सबका भाग वाला इससे काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा हो गई। तब से मैं गिरगंगा परिवार के साथ में उसका सारथी तरीके से जुड़ा रहता हूँ।
1: भरत भाई, आप स्वयं अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी आप ये हर महीने आपका ये प्रैक्टिस रहता है, और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्रीज है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी आपने प्रेरित किया है। तो इसी तरह से हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और जो गीर गंगा परिवार ट्रस्ट के आप डोनेशन करते हो?
2: अभी ये 2 महीने पहले की प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई उसकी। कभी कभी जब भूख लगते तो खाने के कोई ना कोई संशोधन कर ली, इसी भी इनमें से एक शोध बनाई, इनमें से ये प्रेरणा का पेड़ फर्स्ट सब्जेक्ट है। अभी मेरी कंपनी में इसकी कॉलेज की तरफ बहुत स्टूडेंट लोग आए थे, कंपनी के हर जगह पर एक एक बॉक्स रखा है, आगे का रिजल्ट के बाद आएगा, मालूम नहीं रिजल्ट सही आएगा ऐसा पक्की बात है, लेकिन कितना आएगा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आएगा पक्का।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई। आइए हम फिर से दिलीप भाई से प्रश्न करते हैं कि कैच द रेन जल संचय कामगिरी के अंतर्गत आप कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं?
0: हमारे देश भारत की सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो किसानों का काम है। अभी तक हमारा देश की पहचान भी विश्व के अंदर खेती प्रधान देश से हो रही है, और सबसे बड़ा पानी का यूज होता है वो तो किसान एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, तो इस देश का जब बड़ा प्रधान कोई सूत्र देता है जल संचय जन भागीदारी, इस सूत्र को सार्थक करना है। तो इसके हिसाब से हमारी संस्था ने तय कर दिया कि पानी की एक भी बूंद हमको समुद्र में नहीं जानी है। तो इसको किस तरीके से किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए, हमारा जो भी अभ्यास है वो अभ्यास से हमको जो सीखना मिला तो इसमें

0: दो तीन चीज हमको जाना। पहली चीज होती है कि वहां की भौगोलिक रचना को देखना पड़ता है। हमारी गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में दो चीज है। हमारे अहमदाबाद के ऊपर मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में हम जब जाए ना तो वहां पे माटी और रेताड़ का प्रदेश है, वो जमीन ऐसी है। लेकिन हम सौराष्ट्र की अगर चला जाए तो वहां पे पथराड़ और डूंगरा है। तो पानी स्टोरेज की बात है तो सौराष्ट्र की धरती में सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज का कोई उपाय है तो छोटे मोटे चेकडैम और तालाब, इस विषय में अगर भार दिया जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये रूरल की बात हुई क्योंकि मैंने बोला ना कि 80% पानी तो एग्रीकल्चर में जा रहा है। लेकिन अभी सिटी भी बड़े हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसका भी अगर विजन दिखा जाए तो वो पानी आएगा। तो हमने लोगों को बचाया कि सिटी के अंदर पानी कैसे रोका जाए, तो दरेक लोगों की एक जिम्मेदारी होती है उसका साल का जो भी पीने का पानी है ना वो स्टोरेज का, बारिश का पानी का टंकी हर घर पे होना चाहिए, जमीन के अंदर बारिश का पानी स्टोरेज किया जाए, पहला तरीका। दूसरी बात, अभी तक हमको जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो अब हम ऐसा बोर करें कि हम बोर करके जमीन को पानी रिचार्ज किया जाए, उसके बाद अगर बोर नहीं ले रही है पानी तो ही हम बाहर पानी निकालने देंगे। लेकिन गांव के लिए सबसे अगर बड़ी चीज है तो कुआं रिचार्ज, हम कुआं रिचार्ज करवा रहे हैं। जितने भी बोर है किसानों ने किया जो फेल हो गए हैं, जिसमें पानी नहीं है वो बोर रिचार्ज करना है। सभी किसान के खेत में छोटी मोटी खेत तलावड़ी बनाना है। मैं बोलता हूँ गांव के आगेवानों को, 25 इंच बारिश, 25 इंच बारिश अगर गिरती है और इस बारिश गिरने के बाद हमारे गांव की बॉर्डर के बाहर अगर बारिश का पानी निकला तो वहां के गांव के आगेवानों की दीर्घ दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी है, उसको सुधारनी चाहिए। इस विषय में लोगों को समझाकर बस एक ही काम है, डैम बनाना, चेम ऊंडा करना, गहराई करना और खेत तलावड़ी बनानी, कुआं रिचार्ज करना और बोर रिचार्ज करके हम ये संस्था काम कर रही है। हम जब गांव में विलेज में मीटिंग करते हैं ना, लोगों को जुड़ते हैं, तो उस समय एक प्रसंग मेरे को याद, मैं सबको बताता हूँ, अगर हमने एक डंपर माटी अगर तालाब से निकाल कर अगर हमने बाहर डाल दी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए 10,000 लीटर पानी की जगह होगी। एक बार खर्चा करना है, मैं बोलता हूं अगर पानी में कोई 1,00,000 रुपया लगाता है ना तो राष्ट्र को 1 करोड़ का फायदा होता है।
1: कैसे?
0: क्योंकि एक बार डैम खोदने का खर्चा होता है, बाद में 100 साल चलेगा, तो क्या होगा, बार बार एक बार पानी आया तो पानी की कीमत अमूल्य है। पानी की कोई कीमत, अगर पानी की कीमत समझना है ना तो हम रण में जाए देखते हैं, तरस बताते हैं पानी की क्या कीमत होती है। किसान बताता है कि जब उसका पाक सूखता है पानी की क्या कीमत होती है। अगर पानी की कीमत हमको समझनी है ना तो हमको ये विस्तार से हम समझाएगा तो क्या होता है कि एक बार खर्चा करने से बार बार लाभ मिलता है, वो पानी और चेक डैम का तरीका होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि एक बार पानी में रुपया लगाने से क्या हुआ, जिस गांव में हमने काम किया ने उस गांव में खुशहाली आने देख, मैंने देखा। हमारे यहाँ के 2-3 गांव का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कालावड़ तहसील के पास एक वरणा गांव है, इस गांव के पानी 700-800 फीट की गहराई पे पानी था। वहां पे लोगों ने हमने जोड़ा, 2-3 मीटिंग की उसका, थोड़े लोग जामनगर रहते हैं, थोड़े राजकोट गांव में, सभी जगह पे मीटिंग की और गांव लोगों ने चेरी की एकता करके वहां डैम करना शुरू किया। इस गांव में गर्मी के दिन में तो गांव को बोर करने का मशीन आता है हर साल और किसानों का 1 करोड़ रुपया लेके जाती थी। और वहां पे अगर बोर को शुरू करने के 1-2 किसानों के बोर में अगर पानी ज्यादा हो गया तो उस साल 2-3 करोड़ लेके जा रही थी। लेकिन जब किसानों के एकटा करके वो चेक डैम तालाब बनाने का शुरू किया, लास्ट 3 साल में उस गांव में बोरवेल आनी बंद हो गए तो वो किसानों का रुपया बढ़ा बचा। बाद में जो पानी 800 फीट पे था वो पानी 30-40-50 फीट पे आ गया और पूरे अगले गर्मी में वो गांव में ज्यादा से ज्यादा गर्मी के दिन में भी कोप लगा, तो वो सबसे बड़ा फायदा होता।
1: दिलीप भाई, आपने उस गांव में कैसे काम किया जल संचय के कामगिरी के, जो जहाँ पर बोरवेल के मशीन ही आनी बंद हो गई?
0: बहुत सारे ऐसे गांव की उदाहरण है, लेकिन एक बात मैं अगर बताऊं, हमारा गिर गंगा का तरीका होता है। मैं मानना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक, जैसे जन आंदोलन के बिना कामयाबी नहीं होगी, वो मेरा सूत्र है, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। हम जब गांव में जाते हैं ना तो गांव को पहले देखने के बाद वहां पे एक मीटिंग करते हैं, लोगों को एक छोटी सी गांव सभा बोला जाता है, वहां पे हम समझाते हैं लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं और वहां पे ही गांव की एक 10-11 लोगों की कमिटी बनाते हैं, वहां भी चैरिटी करते हैं और वो चैरिटी गांव में ही रखते हैं। वो चैरिटी का वही टीम के सदुपयोग करके हमने काम शुरू करते हैं। जिस गांव की बात की मैंने, एक वरणा की बात की, ऐसा एक टोडी गांव है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तालुका का टोडी गांव है। वहाँ पे एक विपस्याना केंद्र के जैन समाज के ग्रुप के आर्थिक सहयोग से

0: वहां काम शुरू किया, जो जो समझना की बात है। उस गांव में भी पानी की यही हालत थी, क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी, और वो डूंगराल प्रदेश का गांव। अगर बारिश चौमासे के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासू पाक भी फेल हो जाता था। उस गांव में हमने एक सीरीज ऑफ डैम बनाना शुरू किया, एक ही गांव में 15-17 डैम बना पाए। इस साल हम गर्मी में गया था ना, तो वो पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले डैम से नदी बह रही थी गर्मी के दिन में। वो किसान की अगर वो प्रसंग हमको महसूस करना है ना, तो वहां को किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए ना, तो उसकी 90% खुशियां मिल जाती है। तो वो हमने देखी, तो वो वहां की गांव की खुशियां अगर देखा जाए, क्योंकि पानी है सबको, 90 समस्या के एकमात्र विकल्प है तो पानी है। किसान क्या बोलते हैं ना कि पशु को खुराक मिलता है, पंखियों को चण मिलता है, लोगों को रोजगारी मिलती है, अच्छा अनाज पैदा होता है। हम क्या है ना, क्या हरियाली और खुशहाली गांव में अगर देखना है ना, तो पानी बचाना है। वो हमने नजदीक से देखा है।
1: बहुत ही उम्दा तरीके से बताया जल संचय की कामगिरी। भरत भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों को आप कैसे जल संचय की कामगिरी में आप लोगों को प्रेरित करते हैं।
2: जो भी पानी साहब ने जो बताया पहले, हर आदमी पानी बचाए और कम बिगाड़े, तो इस सूत्र है कि पानी जितना बिगाड़े इतना कम बिगड़े, ऐसी जो समझदारी की बात है। हम तो बिजनेसमैन है, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन उतना समय पानी बना भी नहीं सकते, बचाने की कोशिश करने की समझदारी सबको देते हैं।
1: हम जो सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पर शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार दोनों विस्तार है। तो आप जब भी सेमिनार का आयोजन करते हैं जल संचय के बारे में, तो शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार, उसमें से आपको कैसा प्रतिभाव मिलता है?
2: ज्योत से ज्योत जलाने का मैं पहला काम करता हूँ, हर जगह मैं एक ही काम करता हूँ। दिलीप भाई को सुने और पानी बचाने का क्या फायदा गैर फायदा होता है, उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मालूम नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया। तो मैंने हमारी सोचा, जब भी बात हुई मैं दिलीप भाई को बार बार बुलाता हूँ, और जो सुनता है, सुनने जो भी प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से आगे आगे बात काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम जारी रखते हुए दिलीप भाई से पूछेंगे कि आपकी जल संचय की कामगिरी में आपको सरकार की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है?
0: हमारी गिर गंगा की जो पानी का काम में गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए, तो वो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब हम गांव में काम करने जाते हैं, तो गांव में क्या होता है, लोक भागीदारी से सब प्रकार का काम होता है। गांव में गेट भी बनता है, गांव में समाज भी की बाड़ी भी बनती है, गांव में बेंच भी लगाया जाता है, गांव में स्मशान भी अच्छी बनती है, गांव में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जब पानी की बात होती है, तो लोगों में साइकोलॉजी होती है कि क्या काम गवर्नमेंट करेंगे। तो इस विषय के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गवर्नमेंट करेगी ऐसा दिमाग में क्यों है। तो ये बात भी सही है कि जिस समय जिस काम किया था सब गवर्नमेंट में किया था, तो लोगों की मानसिकता में आया था कि पानी का काम गवर्नमेंट में। तो इस विषय में लोगों को भी भावना है कि गवर्नमेंट में इसमें जुड़े। तो जब हमारी संस्था का काम करना के शुरुआत की, तो हम तो लोग भागीदारी से लोगों को जोड़ना करते थे। लेकिन इस देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जब सूत्र दिया, इस सूत्र को बार पहली बार हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय तैयार की, और ये मंत्रालय का काम कर रहे सीआर पाटिल साहब। सीआर पाटिल जी ने गिर गंगा परिवार को खूब प्रोत्साहित किया है, और कभी भी छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम गिर गंगा का होता है तो सर का आशीर्वाद रहता है। मेरे को मालूम है कि लोकसभा के अंदर भी सर ने गिर गंगा एनजीओ का नाम लिया कि वहां पे एनजीओ अच्छा काम कर रहे। राज्यसभा ने अंदर भी यहाँ के एमपीओ ने काम किया कि गिर गंगा अच्छा काम कर रहे। तो ये गवर्नमेंट के जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी सराहना कर रहे थे। दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले साल बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी हमको गिर गंगा को दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रेरणा बढ़ी, हमको हिम्मत मिली। हम कहीं भी काम करते तो लोकल वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर होते हैं, वो भी अधिकारियों को सूचना देते हैं कि गिर गंगा जब काम कर रही है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितनी भी मदद करेंगे लेकिन उसकी काम में कहीं रुकावट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से, इस होप के हिसाब से हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से और आगे अभी भी नया नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है कि इस साल कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से आर्थिक सहयोग भी कैसे मिल पाए। ये चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस अगर खत्म होगी तो आर्थिक भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन उसने जो हमको वो कहीं ना कहीं आर्थिक के बिना जो भी मदद की है वो बढ़िया की है, और इस हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है।
1: दिलीप भाई, आप ये जो जल संचय कामगिरी कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को प्रेरणादायी बात बताइए और श्रोताओं के लिए संदेश भी बताइए।
0: मैंने पहले भी बोला था, लास्ट भी बोल रहा हूँ कि पानी कोई बना नहीं सकता, बिना पानी से काम हो नहीं सकता। पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रहता है पानी। ये पानी की मूल्य है, ऐसा कीमती और अमूल्य पानी बचाना है वो गवर्नमेंट एक का काम नहीं है। हम देशवासी, भारत देश के सभी लोगों का यह धर्म है कि सभी को साइकिल चलानी है ना तो पानी की

0: जरूरत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर फट फट के इतना आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, वो मंगल और चंद्र पे चले गए, वहां जाकर भी पानी ढूंढ रहे, तो हम यहाँ पानी क्यों ना बचा पाए। तो पानी बचाने का सभी लोगों का धर्म है। तो गिर गंगा परिवार का तो एक ही ध्येय है कि हम हमारे जन्मदिन में डैम कैसे बना पाए। जब मेरे लड़के का जन्मदिन है तो उसमें डैम बनाए, जब मेरे स्वजनों की मृत्यु होती है, मेरे मम्मी और फादर, मेरे दादा दादी जो भी है, उसका नाम काम डैम क्यों ना बना पाए। ऐसे तरह से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बोलता हूं कि अगर राष्ट्र का विकास करना है, सभी समस्या का विकास करना है ना, तो आप पानी में ध्यान दीजिए। सभी कंपनी के CSR एक्टिविटी में अगर पानी पे लगाए जाए ना, तो देश की 90 समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी सहाय है ना, वो लोगों को आरसू कर रहे। मैं छोटा सा प्रसंग देता हूँ। थोड़े दिन पहले अमेरिका का एक भाई हमारे संस्था पे आए, बोले मेरे को जल्दी है, मेरे पास वक्त नहीं है, आप एक मिनट में आपकी संस्था को समझा दो। मैंने बोला आप दो बड़े डोनर मेरे को ढूंढ के दीजिए जो 10-10 करोड़ रुपया लगाते हैं, मैं आपको अच्छे दो गांव दिखाऊंगा। एक गांव में आपको 10 करोड़ रुपया गांव की सुविधा के लिए लगाना, लोगों की सुविधा के लिए, कि वहां पे गेट बनाना है बड़े बड़े, वहां पे बेंच लगानी है, वहां पे गार्डन एक बनाना है, वहां की अगर स्मशान है उसको अच्छी डेवलप करनी है, लोगों को मैरिज के लिए एक वाड़ी बनानी है, वहां के जितने भी मंदिर है वो मंदिरों को जीर्णोद्धार करना है, नया बनाना है, और दूसरे गांव में 10 करोड़ मात्र के मात्र जल संचय में, कि वहां चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, बोर रिचार्ज, कुआ रिचार्ज, डैम बढ़ा करना है, तो सिर्फ के सिर्फ जल संचय में लगाना है। 5 साल के बाद दोनों गांव की आप विजिट करने, क्या फर्क मिलेगा। जिस गांव आपके जल संचय के लिए आपने जो रुपया लगाए ना, उस गांव ने दूसरे गांव का 50% काम लोक भागीदारी से कर दिया होगा, और जिस गांव में आपने लोगों को सिर्फ सुविधा दी है, तो वहां के वही बेंच में बैठे बैठे वो हमारे राजकीय आगेवान को सिखाते रहेंगे कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है। तो कहने का मेरा इरादा है कि पानी है तो खुशहाली है, तो पानी अगर मिल जाए ने, बाकी की सुविधा लोगों को आरसू करने की सुविधा है। तो बड़ी बड़ी कंपनी को मेरे हिसाब से पानी में ध्यान देना चाहिए, अपने अपने विस्तार में पानी लगाना चाहिए। मैं कह मेरे वहां पे दो प्रसंग है छोटे। एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का फोन आया था कि दिलीप भाई, मैंने मेरी अगले साल दिकरी की शादी की थी, तो इस शादी में मैंने जो खर्चा तय किया था वो कर कसर से मैंने खर्च किया, तो इनमें से 2 से 2.5 लाख मेरा बचा, लेकिन मैंने रुपया तो दिकरी के नाम में इकट्ठा किया था। मैं सोच रहा था एक साल से कि इस रुपया के मैं क्या करूं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरे को एक विचार आ रहा कि 2-2.5 लाख मेरे पास है, 2-2.5 लाख में और आपको ढूंढ के देता हूं। मैंने जिस गांव में दिकरी दिए ना, इस गांव में मेरे को 4-5 लाख रुपया का छोटे मोटा एक चेक डैम और तालाब बना दीजिए, मेरे को मेरी दिकरी को करियावर में वो गांव में चेक डैम देना है। अब विचार चला, मेरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में 6 गांव के एक भी एक मीटिंग चल रही थी। कहने का मेरा इरादा है, सभी लोगों में अगर ये जागृति आए ने, तो और कामयाबी होगी। ऐसा दूसरा एक प्रसंग है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के कालावड़ तहसील का एक 6 गांव है, वहां पे चालू गांव की सभा में एक बुजुर्ग खड़े हुए मेरे साथ आके वो मेरे को बोला कि आप सर 2 मिनट रुकिए, मेरे 2 लड़के इधर है, आप इसको खड़ा कीजिए। दोनों लड़के को खड़ा किया, तो वो बुजुर्ग ने क्या बोला, बुजुर्ग ने बोला कि खबरदार, मेरे मरने के बाद आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपको मेरे पास कुछ करना है तो मेरे नाम का गांव का तालाब खोद डालना। तब मेरे को बहुत खुशियां मिली। ये अवेयरनेस है ना, वो जागृति का काम कर रही है। तो ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस गांव को आगे बढ़े रहे।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्तुति दिया है जल संचय से जन भागीदारी, और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया है कैच द रेन, तो जल संचय के इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में राजकोट स्थित गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के स्थापक प्रमुख दिलीप भाई सखिया और साथ में ट्रस्टी भरत भाई टिलवा उद्योगपति, आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
2: कैच द रेन, बचपन में जब बारिश होती थी हम सब कागज की नाव बनाकर बहते पानी में छोड़ दिया करते थे और खूब खुश होते थे, लेकिन क्या कभी आज हमने ये सोचा कि जिस पानी को हम बहकर नदी नालों में जाते हुए देखते हैं, वही पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आ सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया एक बेहद खास अभियान कैच द रेन। कैच द रेन सिर्फ सरकार का कोई कागजी अभियान नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी और हमारे कल की सुरक्षा की चाबी है। छतों से टपकते पानी को सहेजना हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्ट

0: सीवरेजिंग सिस्टम लगाना हो या अपने इलाके के सोखता गड्ढों की सफाई करना हो। हर एक छोटा कदम हमारे गिरते भूजल स्तर को वापस ऊपर उठा सकता है। तो हम सभी अपनी ओर से जल संरक्षण का भरपूर प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं नीलम मलकानिया कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज नई पीढ़ी के इंजीनियर, डिजाइनर, कोडर और वैज्ञानिक नई प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वैज्ञानिकों और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में जलभराव, बाढ़ की स्थिति, रक्षाबंधन पर महिला यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था तथा विद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आमजन की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुछ जनपदों में स्कूल कॉलेजों को लेकर भ्रामक वीडियो प्रसारित किए जाने की जानकारी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग का प्रतिनिधि मंडल कल उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस 2 दिवसीय दौरे का प्रमुख उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ ही युवाओं एवं भावी मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ना, उनमें निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देना तथा निर्वाचन तंत्र के महत्वपूर्ण आधार बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद कर उनके अनुभवों एवं सुझावों से सीधे रूबरू होना है। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक तथा तन्वी गुंदेश मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। मानसी को 68 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन की चेनलिंग सोंग से कड़े मुकाबले में 1-2 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तन्वी ने 57 किलोग्राम वर्ग में कैनेडा की एग्निया क्राकोविस्का को 10-4 से हराया, जबकि कोमल ने 59 किलोग्राम वर्ग में हंगरी की एडा बालाज को 5-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप

0: 1 एंड टाइप 2 बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM।

0: A woman's health is her capital. ये मैंने नहीं कहा है, ये कहने वाले हैं हैरियट बीशर स्टोव। और एक महिला का स्वास्थ्य ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, ये है इसका अर्थ। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ ज्योति और आप सुन रहे हैं FM रेनबो पर आपका अपना वीकली हेल्थ शो, हेल्थ एंड फिटनेस। दोस्तों, एक महिला की जिंदगी में कई बदलाव आते हैं। उम्र के साथ शरीर बदलता है, हार्मोन्स बदलते हैं और फिर आता है एक ऐसा पड़ाव जब शरीर मानो अपनी ही एक नई भाषा बोलने लगता है। कभी अचानक गर्मी की लहर, कभी रात में नींद का टूटना, कभी मूड में बदलाव और कभी बिना किसी खास बदलाव के वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में मन पूछता है कि आखिर मेरे शरीर में हो क्या रहा है, किससे पूछूं, किससे जानूं। हो सकता है कि ये मेनोपॉज ट्रांजिशन का हिस्सा हो, लेकिन क्या ये सारे सिम्टम्स नॉर्मल हैं? कितने बदलावों को सामान्य मानना चाहिए, किन संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, कैसे रखें बोन्स, हार्ट और इमोशनल हेल्थ का ख्याल, क्या मेनोपॉज के बाद जिंदगी में भी कोई पॉज आ जाता है, ये ढेर सारे ऐसे सवाल हैं जो तकरीबन हर उस महिला को परेशान करते हैं जो कि मेनोपॉज की एज में है। तो अगर आपको भी लगता है कि कहाँ जाएं, किससे सवालों के जवाब जाने, तो हम है ना, हम यानी आपके अपने साथी FM रेनबो। आपसे अपनी दोस्ती निभाने के लिए हमने खास तौर पर हमारे स्टूडियोज में आज इनवाइट किया है डॉक्टर निशा रानी द्विवेदी जी को, जो कि हैं जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज आप इनसे मेनोपॉज से जुड़े हुए किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मिलाना है 0522223845 या फिर 0522223852। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, आपका हमारी टीम और हमारे श्रोताओं की तरफ से तहे दिल से स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, ये जो मेनोपॉज है, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आज भी खुलकर कोई बात नहीं करना चाहता, तो ऐसे में प्लीज ये बताइए कि मेनोपॉज है क्या और किस उम्र में ये होना नेचुरल है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं?
1: ज्योति जी, मेनोपॉज जैसा कि हम बता सकते हैं आपको, शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। मेनो मीन्स मेंसेस यानी पीरियड्स और पॉज मीन्स उनका बंद हो जाना। तो हर महिला के जीवन में ये पड़ाव आता है, एक स्पेसिफिक एज पर प्राकृतिक तरीके से उसका पीरियड, उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अगर हम इसकी सामान्य एज की बात करें तो ये 45 से 55 साल के बीच होना चाहिए, लेकिन हाँ, कुछ महिलाओं में ये देखा गया है कि 40 से 45 यानी 45 से कम उम्र में भी पीरियड्स बंद होने लगे हैं, तो वो हम उसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज बोल सकते हैं। तो सामान्य एज की अगर बात करें तो 45 से 55 साल पे होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं।
0: तो ये जो आपने बताया कि कभी कभी पहले भी हो जाते हैं पीरियड्स बंद, तो ये नॉर्मल होता है?
1: समय से पहले बंद होना नॉर्मल नहीं है। जैसे कि हमने बोला, 45 से पहले अगर बंद हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, अगर उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स पेशेंट्स को ऐसे आ रहे हैं जिससे उसकी लाइफस्टाइल, अगर सामान्य लाइफस्टाइल जीने में उसको दिक्कत आ रही है, तो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही अगर समय से पहले पीरियड आ गया है तो किसी मेडिकेशन की ज़रूरत है, उसको हम सिंपली अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी मैनेज कर सकते हैं।
0: तो कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जाएं, किस तरह से अपना ध्यान रखा जाए, आपके हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में खास तौर पर आई हैं डॉक्टर निशा रानी द्विवेदी जी, जो कि है जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट। आपके जो भी सवाल हो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। इस वक्त हम आपके कॉल्स लेने के लिए, आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्टर साहब, एक और टर्म काफी सुनने में आता है, पेरीमेनो।

0: मेनोपॉज, ये क्या होता है?
1: पेरीमेनोपॉज ज्योति जी, मेनोपॉज के आसपास का, एक्चुअल मेनोपॉज आने से आसपास का समय, जैसे मेनोपॉज को एक्चुअली हम बोलते हैं कि जब किसी भी महिला को 12 महीने लगातार अगर पीरियड नहीं आया है और उसका कोई और उस महिला को कोई और बीमारी नहीं है, तो हम बोलते हैं कि इस महिला को मेनोपॉज आ गया है। अब मेनोपॉज एकदम से आता नहीं है, देयर इज ऑलवेज ओवरलैपिंग पीरियड, एक ट्रांजिशन होता है। तो ये यूजुअली देखा गया है कि मेनोपॉज एक्चुअली आने से पहले 2 से 4 साल पहले से कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं शरीर में, जिसमें प्रमुख तौर पे पीरियड से रिलेटेड अनियमितता और कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस मेनोपॉज आने के आ जाने के 1 साल के बाद का फेज, तो मेनोपॉज आ जाने के 2 से 4 साल पहले से लेकर के मेनोपॉज आने के बाद का 1 साल का फेज जिसमें ये सारे बदलाव होते हैं शरीर में, उसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं।
0: तो इस बारे में हम आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन फिलहाल हमारी एक कॉलर वेट कर रही है, चलिए जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो
2: मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, हाँ जी बताइए।
2: मैम मेरा सवाल यही है मैम से कि मैम पीरियड जो है मतलब 1 महीने में 2 बार आता है।
0: आपकी उम्र कितनी है?
2: मैम 21 साल।
0: अपना नाम बताना चाहेंगी?
2: जी मैम नहीं।
0: अच्छा कोई बात नहीं है, 21 साल की उम्र है और इनको पीरियड्स 1 महीने में 2 बार भी हो जाते हैं।
1: अच्छा, आपको पीरियड्स 1 महीने में जो 2 बार होते हैं, तो क्या वो प्रॉपर 4 से 5 दिन ब्लीडिंग चलती है या फिर जैसे एक नॉर्मल पीरियड आने के बाद से हल्का फुल्का स्पॉटिंग सा ऐसा कुछ होता है?
2: मैम कभी कभी 2 दिन होता है, कभी 3 दिन हो जाता है मतलब।
1: और ऐसा भी ऐसा कितने समय से है आपको?
2: मैम यही 5-6 महीने से हो गया है।
1: अच्छा हाँ, इससे पहले आपके पीरियड्स एकदम रेगुलर थे, नॉर्मल आ रहे थे?
2: हाँ उससे पहले सही था सर।
1: आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके?
2: नहीं मैम अभी हमारी शादी नहीं हुई।
1: अच्छा
2: है।
1: तो बेटा 21 ईयर्स की एज पे अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ऑब्वियसली कुछ अंडरलाइन कारण हो सकता है, तो आपको जांच करानी पड़ेगी जिसमें कुछ खून की जांच है और अल्ट्रासाउंड अनिवार्य है, क्योंकि 1 महीने में 2 बार पीरियड्स अगर आ रहे हैं तो ये नॉर्मल तो नहीं है, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो आपको हम यही सलाह देंगे कि आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से मिलकर मिलिए और उसके लिए कुछ जांचें कराना जरूरी है।
2: जी,
1: वो थायराइड वाले इश्यूज में हो सकता है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से हो सकता है, प्लस यूट्रस में भी कई बार कोई पॉलिप है या कोई फाइब्रॉइड है, इन सब कारणों से भी ऐसा हो सकता है। तो बिना जांचें कराए इस चीज पे एग्जैक्टली कुछ बोल पाना तो सही नहीं होगा, आपको जांचें कराना ही पड़ेगा, मिलना पड़ेगा अपने डॉक्टर से।
0: तो आपको डॉक्टर से मिलकर के अपनी जांच जरूर करानी चाहिए जिससे कि आपको पता चल सके कि अंडरलाइन कॉज क्या है इस समस्या का और इसका समाधान किया जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात से मुझे ये समझ में आया कि महीने में 2 बार पीरियड होना नॉर्मल तो किसी भी हालत में नहीं है।
1: नहीं, किसी भी महिला को अगर 28 से 30 दिन का साइकिल अगर नॉर्मल है, 28 से 30 दिन अमूमन होता है
0: जी,
1: 5 से 7 दिन जल्दी आना या 5 से 7 दिन डिले आ जाना इज फाइन, लेकिन महीने में 2 बार आना मतलब आपको 15 से 20 दिन में पीरियड आ रहे हैं, दैट इज नॉट नॉर्मल। आपकी शॉर्ट साइकिल्स हैं मतलब जल्दी फ्रिक्वेंट पीरियड्स हैं आपको, तो ऑब्वियसली यू नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम ए डॉक्टर।
0: तो इस चीज को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए। डॉक्टर साहब हमारी एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, नमस्कार जी। जी नाम बता दीजिए और अपनी उम्र बता दीजिए।
3: मेरा नाम नमता शर्मा।
0: ओके,
3: मेरा नाम नमता शर्मा है।
0: आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, क्या आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास में हैं?
3: जी
0: थोड़ा सा जी, अगर आपने स्पीकर पर फोन लगाया या रेडियो के पास है तो उससे दूर हट जाइए जी। प्लीज बताएं आपका सवाल क्या है और उम्र कितनी है?
3: और मैंने 50 के करीब ऑपरेशन करा लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मेरे कैंसर होने की संभावना।
0: 60+ एज है, 50+ में आपने ऑपरेट करा लिया था ये, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर की संभावना है। क्या समस्या थी उस टाइम मैम आपको?
3: मेरे 12 साल से टीजर शुरू हो गया था
0: जी,
3: ब्लीडिंग बहुत होगी।
0: ओके,
3: बहुत ज्यादा मतलब 8 दिन पहले से पीरियड आ जाता।
0: ओके,
3: तो 15 दिन ही मुझे मिलते थे और मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, दर्द इतना होता था, उस समय कोई सुविधाओं नहीं थी। तो उस समय मैं साइन करती थी, लेकिन 8 दिन मुझे कहीं जाने में बहुत प्रॉब्लम होती
0: जी, हैवी ब्लीडिंग होती थी और बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते थे पीरियड्स। तो अभी क्या समस्या है?
3: अभी मुझे चिड़चिड़ापन लगता है और ऐसा लगता है कि सब गंदा गंदा सा है, ऐसे मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज है कि

0: जो पिंक शुगर है।
1: जी आपकी आवाज कट गई। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रही थी कि इन्होंने ऑपरेट करा दिया है अपने यूट्रेस को, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें सजेस्ट किया था। अभी 60+ की हो गई, तकरीबन 8-10 साल हो गए इनके ऑपरेशन को, लेकिन इनको अब चिड़चिड़ापन और ये महसूस होना कि कुछ भी ठीक नहीं है, ये अंदर से फील होने लगा है। तो क्या इसका कुछ संबंध है इनके यूट्रेस से या इनके हॉर्मोन्स से?
2: हाँ बिल्कुल, हार्मोन से ही संबंध है इसका। मेनोपॉज नेचुरली अगर आ रहा है 45 से 55 साल में, इनका इनके केस में इनका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, तो जैसा बता रही हैं अगर कैंसर के उसके हिसाब से यूट्रस रिमूव करने से मेनोपॉज नहीं आता है, अगर ओवरीज भी रिमूव की गई हैं
1: जी
2: तो हम इसको एक सर्जिकल मेनोपॉज बोलते हैं। बट इन केस ऑफ हर ऐसा बता रही हैं 60 साल की एज है, तो अगर इनकी ओवरीज इंटैक्ट हैं तब भी ओवरीज एक सर्टेन एज पे 45 to 55 पे फंक्शन करना बंद कर देती हैं, इवन इफ दे आर इंटैक्ट, नहीं रिमूव किया गया सर्जिकली।
1: राइट
2: तो उसके बाद ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में कम होने लगती है, उसी वजह से शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस है, अचानक से गर्मी लगना, मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें फ्रिक्वेंटली होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि परिवार का बहुत ही सपोर्टिव होना पेशेंट के लिए, और इसको ये नॉर्मल मान करके कि नहीं ये तो होता ही है, कि एज रिलेटेड है या मेनोपॉज में ऐसा होता ही है, तब नहीं डालना जब आपको एक्चुअली में लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ हो रही है। जैसे कि ये महिला हमको ऐसा बता रही हैं कि इन्हें हर वक्त ये महसूस होता है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यूजुअली क्या देखा गया कि थोड़ी मोटी समस्याएं पेशेंट्स की रहती हैं जो कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपने आप रिजॉल्व कर जाती हैं, लेकिन जैसा कि इनको 60 साल की एज हो गई है अभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी मतलब जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योग है, प्राणायाम है, ये करके अगर नहीं मैनेज हो रहा है तो हो सकता है आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको अपने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना होगा, इसका प्रॉपर इलाज है।
1: तो ये मत सोचिए कि इस उम्र में तो ऐसा हो ही जाता है, ये सोच कई बार आपकी तकलीफों को बढ़ाती है। डॉक्टर साहब आपसे और भी बात करेंगे, हमारे कॉलर्स भी लाइन पर हैं और मेल्स भी हमारे सामने हैं, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि हम ले लें एक बहुत छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: 12:17 और ठीक 40 सेकेंड्स, आप हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में आज ज्योति के साथ, और हमारे साथ स्टूडियोज में कोई और भी हैं जो कि हैं बेहद खास। हमने खास तौर पर आज स्टूडियोज में इनवाइट किया है डॉक्टर निशा रानी द्विवेदी जी को, जो कि हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ और जो आज आपके मेनोपॉज से जुड़ी हुई शंकाओं के समाधान कर रही हैं, जो आज आपके सवालों के खुद जवाब दे रही हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल हो, पीरियड्स, हॉट फ्लशेस, स्लीप, मूड स्विंग्स, वेट, बोन्स या फिर HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर या फिर 0522-223-8845 पर। हमारा ईमेल आईडी भी वही पुराना वाला है, fmakashwanilakhnow@gmail.com। डॉक्टर साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं इस वक्त, जानते हैं कौन? हेलो, नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
5: मेरा नाम है साधना।
1: साधना जी आपसे ये गुजारिश करूंगी कि आप थोड़े नेटवर्क वाले एरिया में आ जाइए, आपकी आवाज बहुत खुलकर नहीं आ रही है। जी साधना जी अपना सवाल पूछें। जी सवाल पूछें।
5: आवाज आ रही है?
1: अब आ रही है आवाज, आप बताएं सवाल पूछें।
5: मेरी तरफ से डॉक्टर को भी नमस्कार।
2: हाँ नमस्ते साधना जी,
5: मैं ये कहना चाहती हूँ
2: जी,
5: ये सफेद जो व्हाइट व्हाइट का पानी होता है और ये कच्ची कच्ची सी होती है पीरियड आने के बाद
2: जी,
5: क्या होता है मतलब आना
2: है, नहीं आना है।
5: इसे लोग
2: अल्कोरिया बोलते हैं। ल्यूकोरिया बोलना चाह रहे हो आप? एज क्या है आपकी? 25 साल। 25 साल। और ये जो आप डिस्चार्ज बता रहे हो कितने दिन रहता है पीरियड के बाद, मतलब 2 से 4 दिन रहता है या फिर एक हफ्ते तक रहता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है? हाँ साधना जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हर प्रकार का डिस्चार्ज आप हमेशा पेशेंट्स बहुत

0: ही परेशान हो जाते हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको हम ये बता दें, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो भी महिलाएं हैं, जैसे जिसको जिसको मासिक धर्म आ रहा है, ऐसी महिलाएं जिनका अभी रिप्रोडक्टिव एज फेज में चल रही हैं, उनको इस तरह के डिस्चार्ज, ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। अगर आपको रेगुलरली आप ऐसा फील कर रहे हो कि 5 से 7 दिन ही आपको डिस्चार्ज रह रहा है, उसमें रिलेटेड और कोई अदर सिम्टम जैसे एबनॉर्मल कब मानेंगे, अगर वही डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है आपको, वो रंगीन है, मटमैला सा है, पस जैसा है, हरे रंग का है, या फिर उसमें एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जैसे आपको पेशाब में जलन है या बहुत ज़्यादा इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन होती है नीचे, इन दैट केस हम मानेंगे कि ये अबनॉर्मल है, तभी इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर सिंपल हल्का फुल्का डिस्चार्ज है जो कि आपको साइक्लिकली हर पीरियड में आता है, तो ओवुलेशन के टाइम ऐसा हो सकता है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको एडेड प्रॉब्लम जो मैंने बताई है वो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो जी।
2: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार। अपना सवाल पूछें प्लीज।
2: मैम, मेरा सवाल ये है कि मैम, मुझे अब 2-3 साल 5 साल शादी को हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई कंसीव नहीं हो पा रहा, क्या ऐसे कोई समस्या है? मैंने सारे टेस्ट भी करवाए हैं।
0: एज क्या है आपकी?
2: 27 ईयर।
0: 27 27।
2: जी।
0: और आप रेगुलर, मतलब आप और आपके हस्बैंड रेगुलर ट्राई कर रहे हैं? रेगुलर
2: जी, मैम जी, मैम 5 ईयर से मैम ट्राई कर रहे हैं। एक बार बीच में हुआ था, नवंबर 2025 में, उसमें मिसकैरेज हो गया था,
0: अच्छा
2: निकला था। उसके बाद से ट्राई भी कर रही हूँ, सारी दवा भी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं है। क्या इलाज करना चाहिए?
0: पहले तो आपने क्या जांचें कराई हैं, किसको दिखाया है, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है। और जांचें बहुत तरह की होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, मैंने अक्सर देखा है अपने पेशेंट्स में, वो बहुत सारा जांच लेकर के चले आते हैं जिसमें से एक्चुअली में बेबी नहीं आ रहा है, कंसेप्शन रिलेटेड यानी बच्चे से रिलेटेड कोई जाँच, बांझपन से रिलेटेड कोई जाँच होती नहीं है। आप अदर टाइप की जाँचें करा करके घूमते रहते हो, मिसगाइड होते रहते हो। मैं जैसा अगर बताऊँ, अगर आप किसी सही डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहे हो, आपको बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हार्मोन संबंधी कारण हो सकते हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, आपके पति में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उनका स्पर्म काउंट, सीमेन एनालिसिस सही है नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप कंसीव। तो ये सोच कर मत परेशान होइए, प्रॉब्लम सिर्फ आप में ही है, प्रॉब्लम ऑब्वियसली आपके पति में भी हो सकती है। तो अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, तो एज ए कपल आपका प्लस आपके हस्बैंड का प्रॉपर जाँच कराना बहुत ज़रूरी है, कारण जानने के लिए, उसी हिसाब से आपका इलाज भी हो सकता है। और अभी ये तो आपकी एज सिर्फ 27 है, तो आप अभी होपलेस ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप प्रॉपर कंसीव कर सकते हैं, बस ज़रूरत है आपको सही सलाह की।
1: जैसे कि बार बार मैं अपने प्रोग्राम्स में बोलती रहती हूँ डॉक्टर साहब, कि अब तो इतने रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मेडिकल की फील्ड में, कि ज़्यादातर घरों में किलकारी गूंज ही जाती है, बस ज़रूरत होती है तो सही समय पर ली गई सही सलाह की। तो आप भी बिल्कुल परेशान ना हो, आपके भी घर में किलकारी गूंजेगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार और सही डायरेक्शन में लिया गया निर्णय। हेलो
3: हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार।
3: नमस्ते मैम,
1: कौन बोल रही?
3: मेरा नाम अंजलि है।
1: जी अंजलि, बताएं।
3: मैम, हम जब से कैप की डलवाए हैं।
1: जी, जब से इन्होंने कॉपर टी डलवाई है। जी,
3: तब से मतलब 6 या 7 दिन लग जाते हैं आने में, कोई क्या दिक्कत है क्या?
1: मतलब इनके पीरियड्स डिलेड होने लगे हैं जब से इन्होंने कॉपर टी इंसर्ट कराई है, उसके बाद से, तो क्या ये नॉर्मल होता है डॉक्टर साहब?
3: मैम, और भी इससे क्या शरीर सूख जाता है?
0: नहीं, आपको अगर अंजलि जी आपको ऐसा ये सब अगर किसी ने बताया है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। कॉपर टी डलवाने से शरीर का सूखना या फूलना बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉपर टी डलवाने से जो प्रमुख तौर पर जो पेशेंट्स प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, वो ये हो सकता है कि आपको बीच में कभी पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ब्लीडिंग के दौरान पेन हो सकता है, ब्लीडिंग थोड़ी हैवी हो सकती है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो पीरियड्स का थोड़ा डिले होना, अगर आपने नॉर्मल कॉपर टी डलवाई है, आपने मिरिना यानी हार्मोनल आईयूसीडी नहीं डलवाया है, तो पीरियड्स डिले होना तो नहीं होता है कॉपर टी में। और डिले अगर हो भी रहा है 5 से 7 दिन, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और शरीर का सूखना या फूलना ये कॉपर टी डलवाने पर बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहा है, आप इस तरह की अफवाहों से दूर रहें।
1: डॉक्टर साहब, जब शरीर के फूलने की आपने बात कही तो मेरे मन में एक सवाल उठा। अक्सर ये देखा जाता है कि मेनोपॉज की उम्र में या फिर मेनोपॉज के बाद बड़ी तेजी से वजन बढ़ने लग जाता है, तो इसकी क्या वजह होती है, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
4: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती

0: उम्र में हड्डियों की कमजोरी,
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती और उन्हें लगता है कि वो त्याग कर रही हैं, जबकि असलियत ये है कि अगर घर की महिला स्वस्थ होती है तो वो अपने परिवार का ज्यादा ध्यान रख पाती है। और महिला का स्वस्थ होना यानी परिवार का स्वस्थ होना, परिवार का स्वस्थ होना यानी एक स्वस्थ समाज हमें मिल सकता है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगी कि अगर आपके मन में कोई शंकाएं हैं, कोई टेंशन्स हैं, कोई प्रश्न हैं, तो आप डायरेक्टली अभी बात कर सकते हैं डॉक्टर निशा रानी द्विवेदी जी से, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए खुद आई हैं हमारे स्टूडियोज में। आज ये बात कर रही हैं मेनोपॉज पर, तो अगर मेनोपॉज से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है हमें जल्दी से मिलाइए 223-8852 या फिर 223-8845 जो कि हमारे स्टूडियोज के लैंडलाइन नंबर है। इनके पहले अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो 0522 जरूर ऐड कर लीजिएगा। और हाँ, FM आकाशवाणी लखनऊ@gmail.com मतलब वही पुराना ईमेल आईडी, इस पर आप लगातार मेल कर रहे हैं, हमें आपके मेल्स मिल रहे हैं जिन्हें हम जरूर कवर करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, उससे पहले जो मैंने आपसे सवाल किया था, प्लीज उसका जवाब दें कि मेनोपॉज के आसपास या मेनोपॉज के बाद क्या वजन बढ़ना नॉर्मल है, क्या ये सभी के साथ होता है, क्या इससे बचा जा सकता है?
3: ज्योति जी, कुछ हद तक ये इसे हम सामान्य प्रक्रिया कह सकते हैं, सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया जो हर महिला के साथ होती है। एक्चुअली मेनोपॉज के बाद हमारे जो ओवरीज होते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं और जो उनके द्वारा सेक्रेटेड हार्मोन्स ईस्ट्रोजन प्रमुख तौर पे, उसकी मात्रा कम होने लगती है ब्लड में। उससे होता क्या है कि हमारा शरीर में फैट का एक्चुअली रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जो नॉर्मल तौर पर चर्बी हमारे थाइज में और बटक्स पे होती है वो ट्रंक एरिया में, कमर में और पेट में आने लगती है। तो आपने देखा होगा कि मेनोपॉज के बाद यूजुअली पेट निकलना, ये तो वेट गेन के प्लस दूसरा प्रमुख कारण है कि मसल जॉइंट प्रॉब्लम, बोन पेन की वजह से थोड़ा सा एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटी भी महिलाओं की कम हो जाती है। प्लस तीसरा एक कारण है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस, उनकी मेनोपॉजल सिम्टम्स की वजह से, वेजोमोटर सिम्टम्स, हॉट फ्लैशेस की वजह से नींद, बहुत ही ब्रोकन स्लीप लेते हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से, स्ट्रेस है और इनएडिक्वेट डाइट की वजह से वजन बढ़ता हुआ देखा गया है। हाँ, 700 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक का वजन हर साल के हिसाब से ऐसा बढ़ सकता है, बिल्कुल उसको मैनेज भी कर सकते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन से। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में वजन बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कुछ एडेड कारण हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ या थायराइड इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर किडनी, लीवर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनमें शरीर में पानी बढ़ने लगता है। तो अगर तेजी से वजन बढ़ रहा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। थोड़ी मोटी मात्रा में बढ़ते हुए वजन को आप अपनी डाइट मॉडिफिकेशन से मैनेज कर सकते हैं और एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है।
2: मतलब नॉर्मल है लेकिन इस पर कंट्रोल किया जा सकता बिल्कुल। है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब हम देखें हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो,
4: हेलो मैम, नमस्ते।
2: नमस्कार, कौन बोल रही है?
4: जी हम उषा बोल रहे
2: हैं। उषा जी, अपना सवाल पूछें।
4: जी हम मैम से पूछना चाहते हैं, हमें पीरियड होता है उसके 10-12 दिन पहले से दर्द होना और काफी चिड़चिड़ापन, और जब पीरियड होता है उसमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है और हद से ज्यादा दर्द होता है।
2: आपकी उम्र कितनी है?
4: 26 साल।
2: 26 साल की उम्र है और एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि बड़ी नॉर्मल, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, नॉर्मल नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ कॉमन जरूर है
3: जी।
2: तो इसके विषय में डॉक्टर साहब आप क्या सलाह देना चाहेंगी उषा जी को?
3: 26 वर्ष की आयु में जैसा ये बता रही हैं कि इनको पीरियड्स आने के पहले और पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, तो ये सामान्य नहीं है। इतना पेन, मतलब नॉर्मल थोड़ा मोटा पेन होता है कि हर किसी को हो सकता है एक शुरुआत के 1 से 2 दिनों में, लेकिन अगर आपको इतना पेन हो रहा है कि आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही हैं, आपको लगातार पेन किलर खाने की जरूरत पड़ रही है, आप अपने काम पर नहीं जा पा रहे हो, डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जांच की आवश्यकता है। अगर हम आपको बताएं मोटे तौर पे तो जैसे एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, जिनका पूरा इलाज है। तो अगर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो जांच के द्वारा ही पता चल सकता है कि किस कारण से है और उसका प्रॉपर इलाज है और आप इस सिम्टम से आराम पा सकते हो।
2: मतलब दर्द को बर्दाश्त मत करिए, किसी डॉक्टर से जल्द संपर्क करिए। डॉक्टर साहब, सवाल और भी हैं, कॉल्स भी लगातार आ रही हैं, लेकिन इस वक्त वक्त हो गया है एक अच्छे से म्यूजिकल ब्रेक का।
5: डायबिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन

0: शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: 7। डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: 12:33 और ठीक 14 सेकंड हो रहे हैं। आप हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में ज्योति के साथ और आज खास तौर पर हमने हमारे स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर निशा रानी द्विवेदी जी को, जो कि आपके मेनोपॉज से जुड़े हुए सवालों के जवाब दे रही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा होता है कि मेनोपॉजल एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं, अचानक बहुत गर्मी लगना या अचानक ठंड लगने लगना, मूड खराब रहना और भी कई सारे सिम्टम्स। और ऐसे में महिलाएं जब किसी बुजुर्ग से बात करती हैं तो अक्सर सुनने में लगता है कि अरे ये तो बड़ा कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है, सबको होता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे सुनने वालों को बताइए कि क्या नॉर्मल है और किन लक्षणों के आने पर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
3: ज्योति जी, मेनोपॉज होने के बाद कुछ सिम्टम्स होना नॉर्मल तो नहीं कहेंगे, कॉमन है। जैसे कि हॉट फ्लैशेस, अचानक से चेहरे पे, गर्दन में, सीने की तरफ बहुत जलन होती है, अचानक से गर्मी लगती है और बहुत फ्रीक्वेंट पसीना आना, बहुत अचानक से पसीना आना, इतना कई बार मतलब नाइट स्वेट्स की प्रॉब्लम इतनी होती है कि पेशेंट्स की नींद खुल जाती है और ब्रोकन स्लीप होती है, एंग्जाइटी, मूड डिस्टर्बेंसेस, इमोशनली पेशेंट बहुत लेबाइल होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें रोना आता है और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हार्मोन्स के बदलाव की वजह से हो रहा है। इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। दूसरा, वजन का बढ़ना और वजाइनल ड्राइनेस होती है, प्लस

0: इंटरकोर्स करने का मन नहीं करता, दे एक्चुअली डोंट फील लाइक टू बी विद देयर पार्टनर्स, तो ये सारी समस्याओं की वजह से और स्ट्रेस और बढ़ता है कहीं ना कहीं, और उनके आसपास के लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते हैं, और इस वजह से महिलाएं यूजुअली परेशान होती हैं। और मेनोपॉज के बाद हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो देखा गया है कि बोन पेन ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ हद तक ये सब चीज़ें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नॉर्मल है, कॉमन है, नॉर्मल और कॉमन में अंतर है, कॉमन समस्याएं हैं ज़्यादातर महिलाओं में। ये बहुत ही माइल्ड तरीके से, यानी बहुत ही कुछ टाइम के लिए होती हैं और बहुत माइल्ड सीवियरिटी में होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती, ग्रेजुअली विद टाइम पेशेंट अडाप्ट कर, मतलब महिलाएं अडाप्ट कर जाती हैं, उन्हें किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिन महिलाओं में ये सारे सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लैशेस हैं, स्पेशली मूड स्विंग्स हैं, मूड डिस्टर्बेंसेस हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि वो इससे कोप नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल अगर हैम्पर हो रही है तो उन्हें इलाज की ज़रूरत है। इलाज में बात करें अगर तो फर्स्ट लाइन थेरेपी तो हमेशा ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आपको हमेशा अपने विशेषज्ञ से बात करके ही लेनी है, अपने किसी दोस्त से या किसी फ्रेंड की या कलीग की सलाह से नहीं लेना है। और क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी हैं, कुछ साइड इफेक्ट प्रोफाइल हैं, तो ये आपका डॉक्टर ही आपको उस पर आप प्रॉपर एसेस करके बता सकते हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिन पेशेंट्स में अगर हार्मोन थेरेपी का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेजेंट है, यानी कि उन वो नहीं ले सकते हैं, तो नॉन हार्मोनल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। शॉर्ट में बोलें अगर तो सारी समस्याओं का ट्रीटमेंट है, अगर आप नहीं कोप कर पा रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट से इन सब चीज़ों से राहत पा सकते हैं।
1: मतलब तकलीफ को बर्दाश्त करने में बहादुरी नहीं है, अपनी सेहत का ध्यान रखने में ही समझदारी है। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो एक बार अपनी समस्याओं को डिस्कस जरूर करें किसी भी अच्छे डॉक्टर से। वैसे आप अभी हमसे भी डिस्कस कर सकती हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियोज में हमने खासतौर पर डॉक्टर निशा रानी द्विवेदी जी को बुलाया है, जो कि जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकती हैं फोन के जरिए या फिर ईमेल के जरिए। फोन नंबर्स बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर कर देती हूँ, 2238852 या फिर 2238845। ये दोनों नंबर्स हमारे स्टूडियोज में एक्टिव हैं इस वक्त, और ईमेल आईडी वही पुराना fmakashwanilakhnow@gmail.com। सो डॉक्टर साहब, लेट्स सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। इन्होंने बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार किया हुआ है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। जी बहुत बहुत माफी चाहूंगी आपको इंतजार कराने के लिए। अपना नाम बताएं और अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछें प्लीज।
2: मेरा नाम खुशबू है।
1: खुशबू जी, सवाल पूछें प्लीज।
2: जी मेरे पेट में दर्द होती है।
1: उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है?
2: 25
1: जी।
2: 25 साल।
1: 25 साल उम्र है, पेट में दर्द होता है, और भी कोई समस्या है?
2: और दो
1: ढाई साल शादी के हो गए हैं, पेट में दर्द बना रहता है। हर वक्त पेट दर्द रहता है या किसी खास वक्त पर होता है?
2: हाँ, कुछ खास वक्त पर। और हेम पुष्पा सिरप पी थी, कोई फायदा हल्की मतलब ज्यादा नहीं है फायदा।
1: अच्छा, तो बच्चे हैं आपके?
2: नहीं।
1: और पीरियड्स आपके नॉर्मल हैं?
2: वही तो समस्या है,
1: पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, पेट में अक्सर दर्द बना रहता है।
0: खुशबू जी, पीरियड्स में क्या प्रॉब्लम है आपको?
1: आपकी क्या समस्या रहती है पीरियड्स में?
0: आपका
1: खुशबू जी का फोन तो कट गया डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर जो इस उम्र में की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलरिटी या फिर ओवरफ्लो शायद, तो इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
0: उम्र इनकी 26 साल है, पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं इनके, और स्पेशली जो उन्होंने पीरियड की रेगुलरिटी पे तो बात हमारी इनसे हो नहीं पाई, लेकिन जो उन्होंने पेट दर्द की बात बताई, हालांकि वो भी उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि पेट में किस हिस्से में दर्द है। यूजुअली अगर पीरियड रिलेटेड पीरियड के दौरान दर्द हो रहा है, या फिर हमेशा अगर दर्द बना रहा है, पेड़ों में दर्द है पेट के निचले हिस्से में, तो इनके बताने के हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, कुछ वो परसिस्टेंट ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया है पेशेंट ने, तो उसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होना, लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द बने रहना कॉमन है। हाँ, अगर सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे अगर हो रहा है, बाकी टाइम नहीं हो रहा है, तो वो पीरियड रिलेटेड समस्याओं की वजह से हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है। बट ये इन्होंने शायद एक लाइन ऐसे ही बोली थी कि इन्होंने कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, शादी के 2.5 साल हो गए हैं, तो इनको जाँच कराने की

0: आवश्यकता है, खून खून की जांच, हार्मोन टेस्ट, ट्यूब टेस्टिंग जिसमें होती है, हस्बैंड की सीमेन की जांच होती है, इन दोनों को ही अपने आप को इवेलुएट कराना पड़ेगा कि वाई दे आर नॉट एबल टू कंसीव। 2.5 साल हो गए हैं शादी को, नाउ अब इट्स हाई टाइम। 1 साल अगर कॉन्टिन्यूस साथ रहते रहते बच्चा नहीं आ रहा है तो वी विल कंसिडर देम एज ए इनफर्टाइल कपल, तो इवेल्युएशन चाहिए।
1: तो सीधी सी बात है कि शर्म संकोच और झिझक से कोई फायदा नहीं होता है। खुशबू जी, आप जितनी जल्द हो सकें डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे और भी कॉलर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
1: 12:40 और 55 सेकंड हो गए हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास अब 20 मिनट का ही वक्त है, तो चलिए हम अपने अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो।
4: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
4: मैम मैं निशा यादव बोल रही हूँ।
1: अच्छा जी, तो बताइए अपना सवाल बताइए।
4: मैम पता है वो जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो सर में दर्द और चक्कर ऐसे आते हैं कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है।
1: उम्र कितनी है आपकी?
4: 17 ईयर्स।
1: 17 ईयर्स की एज और गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप?
0: निशा जी, मूड, ये अगर आपको हमेशा पीरियड्स के साथ में हो रहा है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड्स के आसपास मूड चेंजेस, क्योंकि उस टाइम शरीर में हार्मोन बदलाव कुछ ऐसा, मतलब हार्मोन्स का बदलाव होता है, जिस वजह से हर पेशेंट में तो नहीं लेकिन हाँ कुछ लोगों में मूड रिलेटेड चेंजेस, किसी के जब पेट दर्द है, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमनली देखी गई हैं। थोड़ी मात्रा में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, इससे आप योग है प्राणायाम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मूड चेंज, क्योंकि 17 की एज पे अगर इतनी कम एज पे आपको अगर बहुत एक्सेस प्रॉब्लम है और पूरे टाइम अगर बनी रह रही है पीरियड्स के बियॉन्ड भी, तो फिर आपको मे भी कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, आपको अपने साइकेट्रिस्ट से एक बार कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो।
1: डॉक्टर साहब एक और छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम अपनी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: डॉक्टर साहब हमारे साथ एक और कॉलर हैं, चलिए जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो।
6: हेलो मैम।
1: हाँ जी, आप अपना सवाल पूछें।
6: मैम जी नमस्ते, मैम मुझे कार की पत्नी है।
1: आपकी लाइन पर काफी डिस्टरबेंस है, आप अपने सवाल पूछें।
6: जी हम नसबंदी करवाए थे, फरदहन आज हो गया 12 दिन।
1: 12 दिन पहले आपने अपने नसबंदी कराई थी। ओके,
6: तो भी हो रहा है, टांके भी पक गए हैं।
1: और उम्र कितनी है आपकी?
6: हमारी है 32 साल।
1: 32 साल की उम्र है। डॉक्टर साहब इन्होंने ऑपरेशन कराया था, नसबंदी कराई थी, उसके बाद में बता रही हैं कि कुछ तकलीफ चल रही है, तो इनको क्या करना चाहिए?
0: आपने दूरबीन द्वारा कराई थी या फिर पेट में चीरा लगा करके नसबंदी की गई है?
1: हेलो
6: जी,
1: नसबंदी आपने कैसे कराई थी, लेप्रोस्कोपिक कराई थी कि चीरा लगवा कर?
6: दूरबीन द्वारा।
0: अच्छा, तो अगर आपके टांके पक गए हैं तो ज़्यादातर देखा गया है साफ सफाई अगर नहीं रख रहे हैं या फिर पेशेंट्स को पहले से कोई प्रॉब्लम है, जैसे शुगर डायबिटीज़ है या एनीमिक पेशेंट्स में यूजुअली देखा गया है कि टांके पक सकते हैं, इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो अगर ऐसा हो गया है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, दवा देंगे, तो आपको आराम आ जाएगा।
1: डॉक्टर साहब एक और ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद हमारे अगले कॉलर से।
2: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
1: 12:44 हो गए हैं डॉक्टर साहब और हमारे अगले कॉलर। हेलो हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।

0: सवाल पूछें।
1: नमस्कार विनीता,
0: हाँ जी, आप अपना सवाल पूछें विनीता जी।
1: कुछ नहीं, मैं दर्द होता रहता है, वैसे उठता है, जैसे
0: उम्र कितनी है आपकी?
1: दर्द होता है पीरियड्स
0: जी,
1: नहीं होते हैं हम। मेरा
0: पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और पेट में दर्द बना रहता है, उम्र कितनी है आपकी तकरीबन? हेलो,
1: साल
0: 22 साल की उम्र है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, पेट में दर्द बना रहता है।
2: पीरियड कब से नहीं हो रहा है आपको?
1: 1 साल हो गया दीदी।
2: 1 साल हो गया, 22 साल की उम्र है और आपको बिल्कुल पीरियड्स नहीं हुए हैं। इसके लिए आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है? बेटा, अगर एक
1: नहीं
2: साल हो गया है, 1 साल तक पीरियड लगातार ना आना है, बहुत ही गंभीर समस्या है, वो भी आपकी उम्र पे। हम कह रहे हैं 12 12 महीने तक अगर तक कॉन्टिन्यूस पीरियड नहीं आ रहा है तो हम जैसे एक स्पेसिफिक एज पे हो रहा है, मेनोपॉज बोलते हैं, आपकी एज में इसको चांसेस हैं कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है आपको, यानी कि ओवरी में अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडों की संख्या बहुत कम होगी। आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। 12 महीने तक पीरियड ना आना बहुत ही गंभीर है अपने आप में।
0: तो क्या पीरियड से किसी महिला की हेल्थ का पता चल जाता है डॉक्टर साहब?
2: जी बिल्कुल पता चलता है, थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होना बहुत कॉमन है और मैनेजेबल भी है, बट जैसा कि ये बता रही हैं 12 महीने तक कॉन्टिन्यूस पीरियड नहीं आना, वो अपने आप में एक डेफिनेशन है ऑलरेडी मेनोपॉज की। इस एज पे हो रहा है तो उसको मेनोपॉज तो नहीं, वो प्री मेच्योर या मेनोपॉज बोल सकते हैं, या फिर वो यूजली होता है ओवेरियन इंसफिशियंसी या प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर की वजह से।
0: जी, तो 12 महीने अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप उसे मेनोपॉज समझें, लेकिन उसके लिए उम्र वही होनी चाहिए जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताई, 45 से 55 साल की उम्र के बीच में। अगर ऐसा होता है तो फिर नॉर्मल है, लेकिन अगर उसके पहले है तो फिर डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक और हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद हमारे अगले कॉलर से बात करेंगे।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
0: हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब आपके सवाल का इंतजार कर रही हैं।
1: मेरा नाम मधुमिता है
0: जी।
1: पीरियड है, होता है 37 साल की उम्र है।
0: 37 साल की उम्र है, पीरियड्स रेगुलर है?
1: रेगुलर नहीं, वो समय से पहले, मतलब 10 दिन कम हो जाते हैं, कभी 12 दिन कम हो जाते हैं।
0: 10 12 दिन पहले ही पीरियड्स हो जाते हैं।
1: थकान सी रहती है और बुखार आ जाता है।
0: पीरियड्स के टाइम थकान रहती है डॉक्टर साहब, 37 ईयर्स की एज बिफोर टाइम हो जाते हैं और वो भी 10 12 दिन पहले थकान रहती है, फीवरिश हो जाता है, ऐसे में आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी?
2: कि पीरियड्स के दौरान अगर आपको थकान हो, हल्का फुल्का थकान है, तो वो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसा कि बोल रहे हो, आपको 10 दिन 10 12 दिन पहले पीरियड आ जाता है, ये ऐसा कब से हो रहा है?
0: जी, कब से ऐसा हो रहा है आपके साथ? 1 साल हो चुका है।
2: 1 साल अगर हो गया, इसका मतलब आपको अगर हम कहीं ना कहीं माने तो हर 20 से 22 दिन में पीरियड आ जा रहा है, जो कि अपने आप में फ्रीक्वेंट साइकिल्स, यानी कि जल्दी पीरियड, टाइम से पहले आपको पीरियड आ रहा है। फ्लो कैसा रहता है? ब्लीडिंग सही होती है या ज़्यादा होती है? अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर आपको जाँच करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है और पीरियड्स का बीच में ड्यूरेशन भी कम हुआ है तो आपको हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर बच्चेदानी में कोई गांठ होने की संभावना है, जिसकी आपको जांच करानी पड़ेगी अपने डॉक्टर से मिल करके, उसी हिसाब से आपका इलाज हम बता सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे सामने एक ईमेल है, नाम लेने को इन्होंने मना किया हुआ है, हालांकि हमारी बहुत ही रेगुलर होता है। 32 साल की उम्र है, ये लिख रही हैं, शादी नहीं हुई है, टाइम टू टाइम पीरियड नहीं आता, कभी महीने में 2 बार आता है तो कभी 6 महीने में 3 बार आता है, कई बार क्लॉटिंग भी हो जाती है, पेन बहुत अधिक होता है, जाँच में ओवरी में गांठ निकली है, 18 साल से इलाज हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगी?
2: एज क्या है इनकी?
0: इनकी एज है 32 ईयर्स।
2: ओवरी में गांठ है, पहली बात तो गांठ किस प्रकार की है, कितना साइज है गांठ का, ये बहुत महत्वपूर्ण है इनकी प्रॉब्लम्स में ये जानने के लिए,
0: जी,
2: जिसकी डिटेल शायद इन्होंने शेयर नहीं की है। वंस अगेन मैं बार बार कहें, सारे पेशेंट्स यही पीरियड्स की प्रॉब्लम अगर बता रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंट साइकिल्स हैं या फिर डिलेड साइकिल्स हैं, ब्लीडिंग हैवी हो रही है, तो कहीं

0: कहीं कारण आपके हार्मोन्स में हो सकते हैं या फिर बच्चेदानी में हो सकते हैं, जैसा कि ये बता रही हैं। ओवरी में गांठ ऐसा डायरेक्टली पीरियड्स को इतना अफेक्ट नहीं करती है कि जल्दी जल्दी पीरियड्स हैं, अनटिल अनलेस कोई हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर ना हो। अब वही है, अगर छोटी मोटी गांठ है तो उसकी वजह से ये नहीं होगा, अगर बड़ी गांठ है तो उसका इवैल्यूएशन चाहिए। बाकी अगर हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, वंस अगेन बार बार हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि जांचों द्वारा ही पता कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर रीज़न है उसका, जिसमें से एक प्रमुख तौर पे पीसीओडी भी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था,
1: जी,
0: तो वो हम जांचों द्वारा जान सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं।
1: सौम्या का ईमेल है, डॉक्टर साहब ये लिख रहे हैं, मेरी माता जी मेनोपॉजल एज में हैं, काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं और कई बार वो ये कहती हैं कि इस उम्र में ऐसा होना बहुत नॉर्मल है, बात बात पर गुस्सा करती हैं, तो डॉक्टर साहब ये कब तक चलेगा, मतलब मम्मी की नाराज़गी का कब तक इनको
0: नॉर्मल तो नहीं है, अपनी मम्मी को बोलिए। मैंने जैसे मैंने पहले ही बोला था कि नॉर्मल शब्द में और कॉमन शब्द में डिफरेंस है। कॉमन है मेनोपॉजल एज ग्रुप में, अगर उनको मेनोपॉज नहीं आया है अभी और अभी मेनोपॉजल एज ग्रुप में है, मतलब शी इज़ गोइंग थ्रू पेरी मेनोपॉजल फेज, जो कि मेनोपॉज आने से 2 से 4 साल से पहले से स्टार्ट हो जाता है। शरीर में हार्मोन्स के बदलाव हार्मोन्स की मात्रा कम होने के कारण बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर होना, चिड़चिड़ापन बने रहना कॉन्टिन्यूसली। अगर ये ज़्यादा है थोड़ा तो हम आपको सलाह देंगे कि अपनी माताजी को समझाइए कि वो इसे मैनेज कर सकते हैं, उनको प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है, मेडिटेशन करना है, अगर कर सकें तो योग है या मेडिटेशन द्वारा उनको इससे आराम मिल सकता है। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो इसकी दवाएँ हैं, हम दवा द्वारा इसको ट्रीट कर सकते हैं, आपको साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा कि अगर कुछ मूड रिलेटेड एक्चुअली, मतलब अगर लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ है जो कि नहीं कंट्रोल हो रहा है, परसिस्टेंट बना हुआ है, तो हम इसका इलाज द्वारा इसको मैनेज कर सकते हैं।
1: तो इसमें घर वालों का क्या रोल होना चाहिए?
0: घर वालों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इस टाइम पे महिला एक बहुत ही नाजुक फेज से गुजर रही होती है, जैसे कि प्यूबर्टी टाइम, जिस टाइम महिला के पीरियड शुरू होते हैं या फिर जिस टाइम बंद हो रहे होते हैं, तो शरीर में हार्मोन्स का इतना बदलाव हो रहा होता है कि ये चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, ये सब हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, जिस पे महिला का खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में परिवार का रोल यहाँ पे ये आता है कि वो एक इमोशनली सपोर्टिव इन्वायरमेंट दें, इमोशनल वार्म्थ रखें, बजाय कि उन पे उल्टा गुस्सा करें और उल्टा उनको ही ब्लेम करें इन सारी चीज़ों के लिए। तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट अगर उनके लिए रखेंगे, प्यार से रखेंगे, उनको प्यार से बात करेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, तो मैनेज कर सकते हैं ईजिली।
1: डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैम,
1: अपना सवाल पूछिए।
2: मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं पीरियड से होती तो मेरे पेट में दर्द होता है।
1: आपकी उम्र कितनी है?
2: 21 ईयर्स
1: की एज, पेट में दर्द रहना ड्यूरिंग पीरियड्स।
0: बेटा हमेशा हर साइकिल में होता है? अभी हाल ही में आपने महसूस किया है कि दर्द होना स्टार्ट हुआ है पीरियड्स के टाइम, या हमेशा से हो रहा है जब से पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं?
2: मतलब जब से ऐसी क्योंकि होता तो दर्द नहीं होती, वरना पीरियड में दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है।
0: आपको दवा खानी पड़ती है हर बार?
2: नहीं मैम,
0: मतलब इतना होता है कि आप सह सकते हो? स्कूल मिस करना, कॉलेज मिस करने की नौबत तो नहीं आती है?
2: नो मैम।
0: नहीं तो फिर इसका मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा पेन अगर है तो आप मैनेज कर सकते हो और दर्द की दवाएं ले सकते हैं। पीरियड महीने में 1 से 2 दर्द की दवाएं अगर लेना पड़ रहा है तो वो एब्सोल्युटली सेफ़ है। अगर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि आपको अपनी क्लासेस मिस करनी पड़े, अपना कॉलेज मिस करना पड़े, जॉब मिस करना पड़े, या दिन भर आप लेटे रह रहे हो और आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बिना दवा के काम ही नहीं चलेगा, तब फिर इसको हम गंभीर मानेंगे आपका। अगर ऐसा है कि आप सह सकते हो तो ये नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है, मतलब दवा दर्द की दवा आप 1 से 2 टैबलेट ले सकते हो।
1: तुहीना का ईमेल आया है डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा है कि आपने कई बार नॉर्मल और कॉमन के बीच के डिफरेंस की बात कही है, तो प्लीज़ बताएं कि मेनोपॉज में क्या कॉमन है और क्या नॉर्मल है, किस तरह से हमें ये समझें कि अगर हमें ये समस्याएं हो रही हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है।
0: ये सारी इसमें जितने भी हमने सिम्टम्स गिनाए थे, जैसे कि पीरियड मेनोपॉज आने के बाद मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेज हो गए, एक्सेसिव थकान हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो गए, बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये सब वजाइनल ड्राइनेस है, रिकरेंट यूटीआई वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये कॉमन हैं। लेकिन यही है कि सीवियरिटी के हिसाब से, अगर किसी पे हर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते हैं, ज़्यादातर पेशेंट्स को ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं और वो टाइम के साथ ग्रेजुअली सबसाइड भी हो जाते हैं और ये अडाप्ट कर जाता है पेशेंट। लेकिन अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफस्टाइल इफेक्ट हो रही है, इन दैट केस फिर इन सिम्टम्स के लिए हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है।

0: और मेनोपॉज यानी कि 12 मंथ्स तक पीरियड ना होना 45 से 55 साल की उम्र के बीच में।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, टाइम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बातें बहुत सारी हैं, लगातार कॉल्स भी आ रहे हैं, ईमेल्स भी हमारे सामने हैं, जिनमें से ज़्यादातर को हमने कवर करने की कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, तो आपसे मैं बस इतना कहना चाहूँगी अंत में कि बातचीत को समझते हुए हमारी श्रोताओं के लिए एक छोटा सा टेक अवे, अगर आपको मेनोपॉज के फेज में हर महिला से जो कि इसे गो थ्रू कर रही है 3 बातें कहनी हो जिन्हें वो अपनी जिंदगी का मंत्रा बना लें, अपनी प्रायोरिटी बना लें, तो वो 3 बातें आप क्या कहना चाहेंगी?
1: सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। मेनोपॉज में जितने भी सिम्टम्स हमने गिनाए हैं, आप इन सिम्टम्स से अगर गुजर रहे हो तो इनको नॉर्मल ना समझिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आपको मेडिकल एडवाइस लेना ले सकते हैं, इसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मेनोपॉज कोई टैबू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसको कि आप शर्म से या संकोच से छिपाएं। ये हर महिला में प्राकृतिक तौर पे आता है, तो हर महिला को इससे गुजरना है, तो इसके बारे में खुल के बात करें अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तीसरा, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। यूजुअली क्या होता है कि फैमिली में महिलाओं को लगता है कि अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ परिवार का ही ध्यान रखते रहते हैं, इससे ही नहीं होगा। एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव है, तो आपको सबसे सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। और अपने डॉक्टर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, एक्सेसिव सिम्टम्स अगर हो रहे हैं आपको मेनोपॉज रिलेटेड, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है।
0: तो क्या मेनोपॉज के बाद में बोन और स्किन की हेल्थ पर भी इफेक्ट आता है डॉक्टर साहब?
1: आता है, बिल्कुल आता है। ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, हेयर फॉल होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, स्किन लूज पड़ने लगती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो ये सारी यूथफुलनेस बना के रखता है, स्किन टाइट रहती है, ये हार्मोन कम होने की वजह से ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, एक एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
0: तो हम किसी तरह से इसको हम टिच कर सकते हैं, चकमा दे सकते हैं, क्या कोई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके थ्रू हम अपनी बोन्स को, अपने आप को मेनोपॉज के बाद भी हम पॉज ना करें और अपने आप को स्वस्थ रख सके?
1: ज्योति जी, हर केस में दवा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ, लाइफस्टाइल अगर अच्छी रखेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, प्रॉपर स्लीप लेंगे, मतलब प्रॉपर नींद लेंगे, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है, ये सब चीजें करके आप एक संतुलित जीवन अगर जी रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है, खान पान मैनेज करते हुए, आप इन सब चीजों को डिच कर सकते हैं। हाँ, अगर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं इन चीजों के द्वारा, तो ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हो।
0: तो सीधी सी बात है कि मेनोपॉज का मतलब मी नो पॉज, मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब तो भाई मेनोपॉज हो गया तो इसका मतलब अब जिंदगी में वो बात नहीं रही। सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत है तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर। डॉक्टर साहब, मेनोपॉज से जुड़े और भी कई और भी मुद्दों पर आपने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को बड़ी सहज और सरल भाषा में समझाया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद हमारी टीम की और हमारे श्रोताओं की तरफ से।
1: जी वेलकम ज्योति जी।
0: और श्रोताओं, मेनोपॉज को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि इसे अंत की तरह नहीं देखें, इसे बदलाव की तरह देखा जाए, क्योंकि जब शरीर बदलता है तो डरने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। मेनोपॉज, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये जीवन का ऐसा फेज जरूर है जब हमें अपने स्वास्थ्य पर और ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए शर्म नहीं, समझ चाहिए, डर नहीं, जानकारी चाहिए, और परेशानी को चुपचाप सहने के बजाय सही समय पर सही सलाह चाहिए। क्योंकि याद रखिए, जागरूकता डर पैदा करने के लिए नहीं, बेहतर फैसले लेने के लिए होती है। उम्र बढ़ती है, शरीर बदलता है, जीवन की भूमिकाएं बदलती हैं, लेकिन हमें अपने लिए स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन चुनना है, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती। आज के प्रोग्राम की शुरुआत में मैंने आपसे एक कोट शेयर किया था, अ वुमन्स हेल्थ इज हर कैपिटल, तो अपनी सबसे कीमती पूंजी का ध्यान रखिए, अपने लिए समय निकालना सेल्फिश नहीं है। मैं हूं ज्योति, आप सुन रहे थे आपका अपना कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस FM रेनबो पर। स्नेहिल मार्गदर्शन था हमारी कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती सुमोना एस पांडे जी का, प्रोड्यूसर हैं श्री कुंवर बहादुर सिंह जी, और विशेष सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी मैं स्वेच्छा जी को। और आपके लिए बस इतना कहूंगी कि स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और अपने स्वास्थ्य को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय

0: रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके अनुरोध पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। और आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, साथ ही साथ स्वागत अभिनंदन आपका। कार्यक्रम का पहला गीत जिसको आप सभी ने सुना चाहा है, फिल्म का नाम है लकी, आवाज है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की, बोल है समीर के, संगीत है अदनान सामी का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। ये पहला पत्र हमें भेजा है कालका से शुभ चंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। इसी गीत को सुना चाहा है डोंगर गांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, जमशेदपुर झारखंड गांव सुपाही साही से देवेंद्र तांती, इनके साथ में है राकेश तांती, प्रकाश कुमारी, निशा, रेशमा प्रीति और देवेन जी। ग्राम पंचायत बटेना से ये पत्र हमें भेजा है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। फिल्म लकी के इसी गीत को सुना चाहा है बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और आसिफ अली खान ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत मध्य प्रदेश से ये पत्र है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश गौड़, बेबी मंतशा, मोहम्मद शादाब खत्री का। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा व परिवार के सभी सदस्य। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। तो आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म लकी का ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। कार्यक्रम का अगला गीत जिसको आप सभी ने सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है अनवर, आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, बोल है सईद कादरी के, संगीत है मिथुन का। सुनने के लिए पत्र के द्वारा फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से शाजिया बी अंसारी, शगुफ्ता बी अंसारी, मोबिन जहां अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, लालू भैया अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और साथ में है परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोद से ये पत्र हमें भेजा है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने। छावनी अशरफ खां, पानी टंकी के पास होली चौक बरेली यूपी से, राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय और फजरुद्दीन भाई। इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, सतीश अनेजा और विमला अनेजा चंडीगढ़ से, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से, पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, रचना, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली से ही टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, पिट्टा बजाज और साहिल ने। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित। कार्यक्रम में अब आप सुनना चाहते हैं फिल्म आर्यन का गीत, आवाज है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, बोल है आनंद राज आनंद के, संगीत है आनंद राज आनंद का ही। सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, इसी गीत को सुनने के लिए ये पत्र हमें भेजा है एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद और इनका पता है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट से ही इनके परिवार के सभी सदस्य थे। पीएससी नकटिया बरेली से ताराचंद बबली और मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई। इसी गीत को सुनने के लिए ये पत्र हमें भेजा है मॉडल का टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति और सुनीता शर्मा का, अमलेश्वर से श्रीमती सुमन ठाकुर, तारनी ठाकुर, ज्योति और गुड़िया ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से ये पत्र है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा का, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज ठाकुर, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तवस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आशिफ। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत 100.4 FM पर। और आइए अब चलते हैं आपकी पसंद के अगले गीत की ओर, जिसको सुनने के लिए आप सभी ने बड़े प्यार से हमें ढेर सारे पत्र लिख के भेजे हैं। फिल्म का नाम है पाप, आवाज है राहत फतेह अली खान की, बोल हैं अमजद इस्लाम अमजद के और संगीत है शाही का। सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान, परी महल कासगंज से ये पत्र हमें भेजा है आबाद खान, नबील खान, अरफा, इल्मा, आफरीन और एम असलम सैफी ने। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी और मोहम्मद जुबैर अंसारी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, इसी गीत को सुनने के लिए पत्र भेजा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादाबाद गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलाम गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। सरगुना मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और अदीबा थापा। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार।

इसी गीत को सुनना चाहा था पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम, आनंद ने, बुड़छागाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। तो आइए आपको सुनाते हैं फिल्म पाप का ये गीत आपके अनुरोध पर।

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। कार्यक्रम है अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। अगले गीत को सुनने के लिए पत्र भेजा है नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजहत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, दानिश अंसारी, वसीम टेलर और पप्पू भाई अंसारी ने इसी गीत को सुनना चाहा है। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने ये पत्र हमें भेजा है। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और इनके साथ में है जाहिद सैफी और आबाद खान। आर्यनगर कोहका

भिलाई से ये पत्र है, उत्तम सिंह जंघेल, मोरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल और धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा। वीनेश कुमार श्रीवास्तव, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान बैंक सेंटर चनहटी के पास बरेली कैंट से। सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्षा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी, गांव गड़ी कोटाहा, जिला पंचकुला, हरियाणा से। अगले गीत के लिए अनुरोध किया है छबीलपुर गुरनौर यूपी से। लिखने वाले हैं हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश कश्यप और गायत्री कश्यप। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। इसी गीत को सुनना चाहे पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ककराला बदायूं से ये पत्र हमें मिला है। मशहूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, पुत्तन खान, विकास सक्सेना, कर्मवीर गोसवाल, प्रवीण रावर, अनिल नागर, सागर बख्शी और इनके सभी दोस्तों ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप सभी सुनना चाहते हैं रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये गीत, जिसके बोल हैं समीर के, संगीत है नदीम श्रवण का।

रहने दो मुझे दिल की बात कहने दो मैं पागल दीवाना तेरा मुझे

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। कार्यक्रम है अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। अगला गीत जिसको आप सभी ने सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में। आवाज है रूप कुमार राठौड़ की, बोल है समीर के, संगीत है हरीश जयराज का। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, पोत्रा मुश्तवा खान, आफिया खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकुला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गीत को सुनना चाहा है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने। कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी और कल्लू भाई व परिवार के सभी सदस्य। गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता गंगवार व इनके मम्मी पापा। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है धनौरी तेलीवाला से, लिखने वाले हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। कस्बा सेंथल जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजहान अंसारी। अगला पत्र हमें भेजा है गांव बांडी वाला फजिल का पंजाब से, लिखने वाले हैं ओम बगाड़िया, क्रियांश बगाड़िया, योगेश बगाड़िया और साथ में हैं रजत और बेबी गरिमा बगाड़िया। अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड दुलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी मगर और उदयन, साथ हैं अर्पिता। इसी गीत को सुनना चाहे राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार ने। ये पत्र हमें भेजा है दुगोई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी ने। फिल्म रहना है तेरे दिल में के इसी गीत को सुनना चाहा है फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल।

मल नफीजा प्रवीण, इनका पता है हयात कॉलोनी अरहरिया बिहार से। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार खलीफों की बाबड़ी से, खुदा बख्श खलीफा रामदेवरा से, दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल, गांधी रोग बड़मेर राजस्थान से ये श्रोता थे। कस्बा सेंथल जिला बरेली से लिखने वाले हैं फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन अंसारी, तासिफ हुसैन अंसारी, मोहम्मद अजहान अंसारी और साथ हैं अलमीर बशर अंसारी। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से ये पत्र हमें भेजा है अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू और एरोही मौर्य ने। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं आपके अनुरोध पर ये गीत।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत 100.4 FM पर। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। कौन सा गीत है आप सभी ने सुनना चाहा है? अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम हो गए आपके का गीत आप सभी ने सुनना चाहा है। बोला समीर के संगीत है नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनने के लिए पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। राम सिंहपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मनु। अगला पत्र हमें भेजा है सदाबहार सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और साथ में है राजकुमार बोड़ाना। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र भेजा है गांधीनगर गुजरात से। लिखने वाले हैं सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, समा, हिना, रजिया, सुल्ताना और अंसारी परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम गुलाब लोध तहसील आलोद से जिला रतलाम मध्य प्रदेश से खो करपाल सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विशाल और समस्त परिवार ने। अगला पत्र हमें भेजा है नक्षत्रपाल यादव, आयुष यादव, मयंक, शुभी यादव, अनशुभी यादव और यादव परिवार के सभी सदस्य सवायजपुर हरदोई उत्तर प्रदेश से। इसी गीत को सुनने के लिए हमें अगला पत्र भेजा है नर्मदा पार्क मंगलवीड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल ने और साथ में है परिवार के सभी सदस्य। चौखड़ा धाम कॉलोनी जिला खरगोन मध्य प्रदेश से कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी चौहान, नवोदित सिंह चौहान और नवउदित सिंह चौहान और इनके साथ में है वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी और प्रद्युम्न सिंह चौहान। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। फिल्म हम हो गए आपके के इसी गीत को सुनना चाहा है। नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह जिला मोतिहारी बिहार से। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत 100.4 FM पर और अब समय है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। फिल्म का नाम है राज, आवाज है केके की, बोल है सईद कादरी के, संगीत है राजू सिंह का। सुना चाहे आप सभी श्रोताओं ने मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगाना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथक सिंह। इसी गीत को सुनने के लिए अगला पत्र हमें भेजा है प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से। साथ में है इनके परिवार के सभी सदस्य, मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से ये पत्र है, भाई राफत शाहब, सईद भाई मंसूरी असद और इनके साथ में है फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मसूरी भी। इसी गीत को सुना चाहे अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से, मनोहर मगर और इनके साथ में है यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता, सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से। तो आइए आप सबको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म राज से।

अभी तक आपके अनुरोध भरे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। आकाशवाणी का ये परिली केंद्र है 100.4 FM पर। दिन के पूरे 2 बज गए हैं और हम लेकर आ गए हैं उस सफर को जिसका नाम है रस रंग। कार्यक्रम रस रंग में हम शुरू करते हैं गजल, कव्वाली और लोकगीतों के सफर को। सबसे पहले

आपको ले चलते हैं इस लोकगीत के सफर पर। आप हमें सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। सबसे पहली प्रस्तुति शशिलता की आवाज में इस लोकगीत के रूप में।

सावन की आई है बहार मेरी बहना, झूला तो पड़ गयो बाग में। ये लोकगीत आप सुन रहे थे और कार्यक्रम इस समय चल रहा है रस रंग। आप हमें सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। सलमा आगा की आवाज में अब ये गजल पेशे खिदमत है।

0: तरन्नुम नाच की आवाज में इस गजल जहाँ तेरे नक्शे करम देखते हैं, और इसी के साथ कार्यक्रम रसरंग अब यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे रसरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुझे बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे अल्लाह दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत, दीवाना फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें इस गीत को सुन ले हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। तो सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में कैफ इरफानी की बोल रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी मिशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अकोला महाराष्ट्र से आप हैं विनोद।

हारा अमोला महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा, अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

ले मंगला उबाले कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा हेमलता वर्मा वेद किरण वर्मा और जुनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे विविध भारती पर। समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अक्षय और अभिषेक नायडू अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू डी कृष्णा राव नायडू अमृता और संतोष मालीवेश बीड़ शहर से किशोर।

0: कुछ कहता
1: मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से, और इस गीत को फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतला नगर से अरपा पैरी पार्वती राधा शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मधु आयाम और प्रतीक कुमार, ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार, गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता भोलू नीलू विशालराज और वंशराज, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े सुभाष दिगंबर राजेश गड़े शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल जाह्नवी के बोल खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, सेक्टर

67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले शेख, शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत पसंद किया है विठल मंदिर चौक भीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम और आप हैं इस्लामापुर से इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

तो है के माने। अरे चीतक तो हमारी सहन के सामने रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना। कितना बड़ा है ये ट्रक।

0: Y déjame sandwich, bistar, sofá, mis. Or motorcycle, kaisi pyari choti cycle. Iski to sawari karni chahiye. Tren, tren, tren. Batke jara batke bhai sahab. Main niche jaakar isko dekhata hu. Par nahi, phir mummy daanti hai. To kabhi padta bhi hai. T-O-Y toy, to kya hua? मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। B-O-Y boy,
1: टॉय
0: के माने खिलौना। B-O-Y boy,
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्राकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: B-O-Y boy के माने लड़का, लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट ना जाए हाथ से।
2: एक छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रही है। B-O-Y टॉय, टॉय के माने लड़का। T-O-Y बॉय, बॉय के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है रे?
3: T-O-Y बॉय।
0: T-O-Y बॉय होता है क्या?
3: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। T-O-Y
0: टॉय होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
3: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
3: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
3: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
3: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
3: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
3: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी?
3: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
3: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
3: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब?
3: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
3: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
3: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
0: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। T-O-Y टॉय,
3: T-O-Y टॉय,
0: T-O-Y टॉय,
3: T-O-Y टॉय, T-O-Y टॉय।
0: देख रहा था।
3: झूठ।
0: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
3: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
0: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे?
3: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती हैं क्या?
0: हाँ, तुम्हारी?
3: मेरी मम्मी भी देखती हैं।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती हैं।
3: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती हैं। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
0: हाँ, मैं समझाता, तुम भूल ही गई होगी।
3: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
0: वो क्या होता है?
3: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
0: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
4: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
3: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
0: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
3: तुम्हें कैसे मालूम?
0: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
3: हाँ, मेरे भी।
0: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
3: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
0: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
3: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
0: अच्छा।
3: हाँ, अब बैठो सीट पर। ओफो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
0: अच्छा, ले लिया।
3: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
0: अच्छा अच्छा, छोड़ो।
3: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो ऐसे।

0: ऐसे।
1: तुम क्या डरते हो डरपोक कहीं के?
0: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी, वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
0: अब धक्का दो ना,
1: हैंडल ठीक से थामना।
0: अच्छा
1: देखो मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
0: हाँ अब कहो ना गो।
1: गो।
0: गिरा।
1: अरे तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना?
0: कहाँ हटाए?
1: लगी तो नहीं?
0: नहीं।
1: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
0: अच्छा।
1: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
0: हाँ, तुमने किसे सीखी?
1: खुद ही सीखी?
0: नहीं।
1: और नहीं तो क्या?
3: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
1: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
0: पापा ने।
1: नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम ही बताओ।
0: मुझे क्या मालूम?
1: मामा जी ने।
0: पापा मम्मी ने चलाने दी।
1: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
0: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
1: झूठ।
0: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
1: फिर
0: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
1: चूहे?
0: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
1: ताकि चूहे न ले जाए। तुम चूहे।
0: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
1: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: ऐसी ऐसी ही कार थी, उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, गाय की तोड़ा मेरा। जानती हो, जानती हो, हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं।
0: हैं? कहाँ?
2: बाग में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ।
0: चल
3: चल आ जा,
2: जल्दी आ जा।
0: अगर हमारे भी पंख होते,
2: आहा, तब हम भी उड़ते।
0: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती।
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
0: तब हम खिड़की से अंदर आते
2: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
0: क्यों?
2: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं, शाबाश, आगे चलो, आगे चलो। और आगे से मैडम डांटती है, पीछे चलो, पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
0: क्यों, उसे क्या हुआ?
2: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी। मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
0: फिर
2: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा, शर्ट पर दाग क्यों है, बैड बॉय। फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा, ना ड्राइवर से।
0: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
2: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देखकर हंसते।

0: अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो थे ना हमारे पेड़ पे बुलबुल के दो बच्चे।
1: हाँ थे तो?
0: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनकी मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
1: उन्होंने शादी की होगी।
0: शादी? तुम्हें कैसे पता?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
0: अलग? अलग क्या?
1: ओफो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। BOY टॉय। अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
0: तुम्हें कैसे पता?
1: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया। झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
2: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
0: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
2: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
2: और तुम?
0: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
2: डरपोक डरपोक,
0: खुद शर्मीली नहीं
2: है? नहीं।

0: तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती है जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए,
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट टाके दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है,
3: बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना?
1: मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे, टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूँगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूँगी।
1: क्यों,
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूँगा ऐसे।
0: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।
1: खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना?
0: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
1: नहीं तो, मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
0: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
1: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
0: तो चलो फिर।
1: चलो,
0: चलो।
1: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।

0: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है। ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
1: अगर ये सचमुच की कार ही होती
0: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
1: जब मैं देता तभी ना हम खुद इतने घूमने जाते।
0: हाँ, कार मैं चलाती।
1: अरे लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
0: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
1: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
0: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
1: क्या पौधों को सींचेंगे?
0: बूढ़ा होता है
1: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
0: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
1: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
0: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
1: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो आओ,
0: चलो आओ। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
1: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे ये बुलबुल तो मर गई।
0: कहाँ?
1: यहाँ तो आओ।
0: अरे ये तो वही बुलबुल है।
1: हाँ वही, जिससे वो अलग हो गए थे अलग मकान में।
0: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
1: अब क्या करें इसका?
0: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कहीं की?
0: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी। झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मुँह थी, उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था। फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
2: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
1: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
2: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
1: हाँ वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
2: तुम कहाँ जा रहे हो?
1: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
2: रुमाल?
1: हाँ डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
2: डैडी मारेंगे?
1: वो कुछ नहीं कहेंगे।
2: झूठ।
1: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
2: क्यों?
1: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
2: अच्छा लपेटो फिर।
1: ना तुम लपेटो।
2: क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
1: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
3: नहीं मैं कहता हूँ इसे हाथ लगाने से।
2: अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
1: लो।
2: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
1: मुझे भी।

0: पहले ही आ गई?
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाचित से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को, मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए हैं ना,
0: उससे क्या होता है?
1: मामा जी की शादी है।
0: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
1: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
0: क्यों?
1: अफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।

0: फिर
1: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया, मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
0: मुझे भी नहीं।
1: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं, मैं नहीं डरती वरती पापा से।
2: झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे।
1: तुम डैडी से डरते हो?
0: मैं क्यों डरूंगा?
3: झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
1: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे।
1: D-O-Y-T-R-Y.

0: मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे, रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखें।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ।
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती, मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: जब मैं तुझसे नहीं बोलता कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है आया ना काट कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करते हैं ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे।
1: मम्मी डैडी के बगैर ही?
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुट्टी बुलबुल जो मर गई, नहीं होगी।
1: आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
0: जाओगी तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो।
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता। मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, खूब खेलना, ऐसे ऐसे ऐसे।
1: Ha ha ha!

0: दो फूल जूही के। अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने
0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: कहा, अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है। हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 4 बजे हैं और हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के लिए हम आपकी फोन कॉल्स को दिन में 2:30 से रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए हमारा फोन नंबर है 0581251700। इस पर दिन में 2:30 पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी फोन कॉल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। वहीं आपसे एक गुजारिश और करेंगे श्रोताओं कि जिन साथियों के फोन हमारे आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, वो कृपया हमसे एक सप्ताह के अंतराल से दोबारा बात करें, दोबारा हमें कॉल करें। हमारा आज का विषय श्रोताओं आपको बता देते हैं, आज ही के दिन 2023 में 23 अगस्त को चंद्रयान 3, जो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग उसकी की गई थी, उसके उपलक्ष्य में हमारा आज का विषय है कि अगर चांद पे जीवन हो तो आप चांद पे रहना पसंद करेंगे या अपनी पृथ्वी पर। इस विषय को लेकर जानते हैं हमारे पहले श्रोता हमसे कौन जुड़ रहे हैं और क्या मानना है आज के विषय को लेकर। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है।
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार।
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: बाहुबली जी हमसे जुड़े हुए हैं छत्रपति संभाजी नगर से, और आपकी आवाज से हमें लग रहा है कि आप काफी बुजुर्ग हैं। अपनी एज बताइए।
1: मेरी उम्र 85 साल चल रही है
0: जी। बिल्कुल।

0: हमारा मानना सही है।
1: से थोड़ा सा रेडियो के प्रति आकर्षण और एक गीत सुनने का जो मुझे शौक है वो आज तक जिंदा है बहन जी।
0: बिल्कुल, अपने शौक जिंदा रखने चाहिए। तो बाहुबली जी, बताइए कि अगर चांद पे जीवन हो तो आप चांद पे रहना पसंद करेंगे या अपनी पृथ्वी पर?
1: दूर के है ढोल सुहाने बोलते हैं ना
0: जी,
1: तो उसी प्रकार मैं वो चांद के माहौल में न रहते हुए अपने पृथ्वी तल पर जिस हालत में हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, उसमें मैं खुश रहूंगा। क्योंकि चार के ऊपर उधर क्या क्या माहौल है, पीने के लिए पानी है या अनाज है या किस प्रकार का हवामान है, वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं, इसका कुछ अंदाजा नहीं। बेहतर ऐसा है कि जो भगवान ने हमें बख्शा है
0: जी,
1: जो पृथ्वी तल हमारा स्वर्ग है, इसमें खुश रहे कि मैं अपनी सारी जिंदगी आनंद के साथ बिताना चाहूँ।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार आपके हैं। तो बताइए, हम आपको गीत कौन सा सुनवा दें आज?
1: फिल्म मोहब्बत जिसको कहते हैं, ठहरिए होश में आलू तो चले जाएगा।
0: बिल्कुल, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: तो श्रोताओं, अगर चांद पे जीवन हो तो आप चांद पर रहना पसंद करेंगे या अपनी पृथ्वी पे रहना पसंद करेंगे? ये हमारा आज का विषय है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। जानते हैं हमारे और कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं और इस विषय को लेकर क्या उनके विचार हैं। हेलो।
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: बिल्कुल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए जरा हमारे इस प्रश्न का जवाब।
1: जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल, अपना नाम बताएं।
1: जी, मोहम्मद तालिब अंसारी बोल रहा हूँ।

0: कटरा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से।
1: जी
0: और इस विषय पर अगर हम कहना चाहें, जब हम बड़े हुए हैं और मेरी एज इस वक्त 24 ईयर्स है, लेकिन अब जब इस वक्त हम मौजूदा आते हम टेक्नोलॉजी और अपने भारत देश को जो मतलब युद्ध स्तर पर अपने बढ़ रहे हैं और हर चीज में, तो चंद्रयान 3 जो मिशन भेजा गया था और उस
1: जी
0: पर जो मतलब श्रीहरिकोटा से, तो अब मतलब वहां से जो इमेजेस

0: अब मतलब वहां से जो इमेजेस आई, फोटो आए, सब चीज आए, अब तो मतलब हमने सब चीज देख भी लिया, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब हम लोग चांद पर भी होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल, अब ऐसा लगता है कि चांद पहले से थोड़ा पास आ गया है ना।
0: ये चांद अब पहले से थोड़ा पास आ गया है, लेकिन चांद की खूबसूरती अलग ही होती है। चांद के ऊपर कई सारे गीत बने, सब चीज बने, लेकिन अब जो मतलब हमने वहाँ के फोटो भी देख ली, सब चीज देख लिया, तो अब मतलब बहुत अच्छी खुशी होती है। और हम लोगों की युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। एक
1: तो
0: साथ
1: अब अगर आपको वहाँ पे सुविधाएं दी जाएंगी तो आप चांद पे रहेंगे या पृथ्वी पर रहेंगे?
0: चांद पर भी रहेंगे और यहाँ पर भी रहेंगे,
1: दोनों तरफ।
0: दोनों तरफ रहेंगे, लेकिन अब इसमें सबसे अच्छी चीज है कि अगर हमको आकाशवाणी बरेली अगर हमको वहाँ पर भी सुनने को मिलता है तो हम जरूर रहेंगे।
1: ओहो, बोला आकाशवाणी बरेली अगर चांद पे है तो ये चांद पे जरूर रहेंगे, बहुत अच्छी बात।
0: सबसे अच्छा हमको यही प्रोग्राम लगता है और बहुत अच्छे हमको 4 बजे हम इंतजार करते रहते हैं। और आज तो मैंने 2-3 मरतबा ही कॉल ट्राई किया और मेरी कॉल लग गई थी, बहुत बढ़िया। उन्होंने बारिश का मौसम है और मेरी कॉल लग गई और मेरी पसंद का गीत भी सुने जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: तो फिर पसंद का गीत बता दीजिए, हम आपको सुनवा देते हैं।
0: दीवाने मूवी का है कयामत कयामत, अजय देवगन की मूवी का ये सॉन्ग से, बहुत बढ़िया गीत है। और मैं सभी सुनने वालों को और एक मैसेज भी देना चाहूंगा कि बारिश के मौसम में अगर हो सके तो बारिश के मौसम में भीगे मत, क्योंकि मैं खुद एक वायरल फीवर से मैं पीड़ित था और तकरीबन मेरे को 1 हफ्ता लगे रिकवर होने में, लेकिन अब फिलहाल बहुत बेहतर है। तो थोड़ा सा बचाव रखें बारिश के मौसम में, बहुत सारी सावधानियां हैं, वो सभी चीजें अपनाएं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार आपके हैं और आपसे बात कर अच्छा लगा। अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: थैंक यू
2: सपना, बहुत दिनों बाद तुम्हें,
3: बहुत दिनों बाद

0: तो श्रोताओं, आपने देखा हमारे इन श्रोता की दीवानगी कि अगर आकाशवाणी बरेली भी चांद पर चले तब वो रहने को तैयार है। फिलहाल दूसरे हमारे कौन से श्रोता हैं और कितनी प्यारी सी इनकी बातें हैं जानते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम
0: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, अपना नाम
1: जी। मैं मंसूरी क्लब ग्राम है चोरा तहसील मलक जिला रामपुर से शखावत हुसैन मंसूरी बात कर रहा हूँ।
0: शखावत हुसैन, आपका स्वागत है। बताइए जरा आज के प्रश्न को लेकर आप क्या कहेंगे।
1: जी हमारा यही ख्याल है मैम मैम, मगर आज के दौर में जो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, जो अपने यहाँ के गए थे चंद्रयान पर, तो वाकई में ये मालूम पड़ता है जैसे कि पास नहीं हूँ।
0: अच्छा
1: जी
0: तो अगर आपको चांद पे रहने को कहा जाए, सारी सुविधाएं दी जाएं, तो चांद पर रहेंगे या पृथ्वी पर ही रहना पसंद करेंगे?
1: जी हाँ, सारी सुविधा मिल जाए चांद पे तो रह लेंगे मैम।
0: बिल्कुल, पृथ्वी को छोड़ देंगे।
1: जी
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और बताइए आप वहाँ से हमारे कार्यक्रम किस माध्यम से सुनते हैं?
1: जी आपके कार्यक्रम मैम इस टाइम रेडियो तो है नहीं, मगर न्यूज ऑन AIR ऐप इसके जरिए सुनते हैं और आपके सारे प्रोग्राम सुनते हैं मैम।
0: सबसे अच्छा प्रोग्राम
1: आपकी
0: कौन
1: पसंद
0: सा
1: आता
0: लगता
1: है
0: है?
1: सुबह को वो भी, और ये आप आकाशवाणी आपकी बात, ये सारे प्रोग्राम सुनते हैं मैम।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बताइए आपको गीत कौन सा सुनवा दे?
1: जी फिल्म दिलवाले का कोई सा भी सुनवा दीजिए मैम, कुछ दो अच्छे हैं, इजाजत हो तो।
0: जी
1: जी छोटा भाई तालिब मंसूरी, तौफीक मंसूरी, सरफराज मंसूरी, शकूर अहमद मंसूरी और सहनूर अंसारी जी हैं बरेली।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं अपने साथियों के साथ। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और आपके विचारों को जो हम जानते हैं आदान प्रदान होता है। ये लगता है कि बस ये सफर यूं ही चलता रहे। आज का विषय भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा यानी कि चांद को लेकर है। तो जानते हैं कि इस विषय पर हमारी ये कौन सी श्रोता

0: से जुड़ी है। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, नाम बताएं।
1: जी, हम गुलफ्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीला हरदोई से।
0: गुलफ्ता सिद्दीकी हमसे जुड़ी हुई है, क्या करती हैं गुलफ्ता?
1: जी, हम घर पर रहते हैं, हाउसवाइफ हैं।
0: हाउसवाइफ है, तो फिर हमारे कार्यक्रम कैसे सुनती हैं?
1: जी मैम, सुनते हैं मोबाइल पे।
0: मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से, है ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, अगर चांद पे जीवन हो और आपको चांद पे रहने को कहा जाए, तो आप चांद पे रहेंगी या पृथ्वी पे?
1: जी मैम, हम चांद पर रहना चाहेंगे,
0: चांद
1: नई नई जगह पे
0: पर।
1: रहना हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, यानी कि अगर प्लॉट की बुकिंग शुरू हो जाए, तो सबसे पहला प्लॉट आप लेने की कोशिश करेंगी, है ना?
1: जी मैम।
0: चलिए, आज गीत कौन सा सुनवा दें आपको?
1: जी, बिच्छू मूवी का है, दिल टोटे टोटे हो गया।
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी मैम, थैंक यू।

0: बात आकाशवाणी के साथ हो रही है जी।
1: मैडम नमस्कार, मैं ग्राम ऐशोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से लही अहमद मंसूरी बात कर रहा हूँ। मैडम
0: लही अहमद मंसूरी रामपुर से हमसे जुड़े हैं, बताइए अगर चांद पे जीवन हो तो आप चांद पे रहना पसंद करेंगे या पृथ्वी पर?
1: मैडम हम तो मैडम पृथ्वी पे रहना पसंद करेंगे। मैडम
0: अगर सारी सुविधाएं दी जाए चांद पर ही, जो पृथ्वी पर आप ले रहे हैं, तब भी आप पृथ्वी पर ही रहना पसंद करेंगे या चांद पर?
1: मैडम पृथ्वी पे।
0: बिल्कुल, क्यों, ऐसा क्यों?
1: ऐसा ही मैडम, ऐसे कि सब लोग मिलजुल के हम रहते हैं, अपने परिवार में, घरवार में, और ये है।
0: ये बात तो ठीक कही आपने कि भाई अकेले हम ही तो चांद पे जा बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है कि आप
1: अपने परिवार के लिए गुजारा कर रहे हैं।
0: पृथ्वी को आप अपना जो आपका जन्म स्थली है, जहाँ आप रहे, वो जगह नहीं छोड़ना चाहते, चाहे कोई चांद पर ही क्यों ना भेजने का प्रस्ताव रखे। तो बताइए आज आपको गीत कौन सा सुनवा दें?
1: मैडम गीत मैडम फिल्म खिलौना का आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेके आया मैडम।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: मैडम तो दोस्तों नाम ले सकते हैं?
0: जी लीजिए।
1: मैडम ऐसे हमारे बड़े भाई सभी गैम मंसूरी और तोसी गैम मंसूरी, सरताज मंसूरी, सकाउ हुसैन मंसूरी, तालिक हुसैन मंसूरी।
0: बिल्कुल
1: मैडम, आप सभी परिवार के लिए
0: बिल्कुल अपने साथियों के साथ सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: ठीक है मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम। मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, रामशिव नगर चंपतपुर तहसील आंवला जिला बरेली से।
0: सद्दाम अली आंवला बरेली से हमसे जुड़े हुए हैं। सद्दाम जी, बताइए जरा, जो हमारा आज का प्रश्न है उसको लेकर आपका क्या मानना है?
1: मैम, बहुत अच्छा विषय है। मैं यही कहना चाहूंगा, चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण हुआ, इससे हमारे देश के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला। और कोई भी सफलता हो मैम, अगर हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो वो चीज हमें पास लगने लगती है।
0: अच्छा, अगर चांद पे जीवन हो और आपसे कहा जाए चांद पे रहने के लिए, तो आप चांद पे रहना पसंद करेंगे या पृथ्वी पर?
1: अकेले तो कोई नहीं रह पाएगा, जैसे अगर समाज के व्यक्ति सभी जाए इच्छुक है तो चांद पे रहने में क्या दिक्कत है मैम।
0: तब आप पृथ्वी को छोड़कर चांद पर चले जाएंगे।
1: जी
0: बिल्कुल। और गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: मैम, गीत सुनवा दीजिए, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा।
0: बिल्कुल, आपने विषय से जुड़ा गीत सुनना चाहा है, बहुत अच्छे गीत का चयन आपका, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैम।

त्रिशुदा, अब तक तो आप सुन रहे थे उन फोन कॉल्स को जो हमें दिन में मिली और हमने उन्हें रिकॉर्ड किया, उनसे बातचीत की अपने श्रोताओं से और आप तक पहुंचाए उनके विचार। और अब जरा फेसबुक की ओर चले, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से श्रोताओं ने आज के जो विषय है, आज का विषय, उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया लिख भेजी है। तो सबसे पहले अनोखे लाल जी हैं, क्या कहते हैं ये? आप मौर्य मंदिर कटरा चांद खा पुराना शहर बरेली से हैं, लिखते हैं, आज का विषय बहुत अच्छा है और जब हमें जरूरत पड़ी तो चांद पे भी जा सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं। इसके बाद यहीं से कटरा चांद खा पुराना शहर बरेली से ही हैं हमारे ये साथी, लिखते हैं, आकाशवाणी की पूरी टीम को मुकेश मौर्य और पुष्पा मौर्य का नमस्कार। आपको भी, मैं चांद पर रहने के लिए तैयार हूँ। अगर वहाँ आकाशवाणी केंद्र बरेली का हो और आपकी पसंद और हेलो फरमाइश जैसे प्रोग्राम हो, अगर नहीं होंगे तो मैं नहीं रहूँगा। मुझे आकाशवाणी के सभी सदस्यों से और जो है बरेली के जो सदस्य हैं आकाशवाणी बरेली के, उनसे सभी से बहुत मोहब्बत है। मैं अपने बहन भाइयों को छोड़कर चांद पर जाकर रहना पसंद नहीं करूंगा। इसके बाद ग्राम व पोस्ट गोठा खंडुआ से राम बाबू मिश्रा।

कृष्णा देवी पंडित निर्दोष शर्मा शास्त्री जी क्या लिखते हैं। जैसा कि आज वैज्ञानिक युग चल रहा है, इस स्थिति में चंद्रयान 3 की भूमिका हमारे देश की एक बड़ी उपलब्धि है, जो कि हमारे लिए नई खोज करके दे रहा है। चाहे मौसम हो, चंद्रयान पर पानी की उपलब्धता हो या उस पर जीवन की संभावना, ये सभी जानकारी हमको चंद्रयान 3 के माध्यम से प्राप्त हो रही है। और चंदा मामा अब दूर के नहीं बल्कि पास के हो गए हैं। हाँ, मन भी चलता है कि शायद हमको भी कुछ देखने को मिलता चंद्रयान 3 बनाने और उसका प्रत्यारोपण करने वाले वैज्ञानिकों व सरकार को, आपके आकाशवाणी केंद्र को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ये लिखते हैं और आपके माध्यम से हमें ये सभी जानकारी घर बैठे ही मिल जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, क्या लिखते हैं आप। अगर चांद पर रहने का मौका मिले तो जरूर रहना चाहेंगे। दुनिया के बारे में तो सारी जानकारी है, चांद पर रहने से चांद की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, मगर सोचना ये पड़ रहा है अगर चांद पर जाने की पड़ जाए तो जाएंगे कैसे। भाई सब मेन बात तो यही है कि अगर चांद पर जाना पड़ जाए तो जाया कैसे जाएगा, है ना। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम आपके बाद आकाशवाणी के साथ। हमने कॉल्स आपको सुनवा ही दी जो दिन में मिली और अब हम फेसबुक की ओर चल पड़े हैं। तो अब आप है सरात, ये लिखते हैं कहां से हैं ये नहीं लिखा है इन्होंने। यूपी बरेली जिला पोस्ट के पास से हैं। लिखते हैं, अगर चंद्रमा पर रहना संभव हो तो चंद्रमा पर जरूर रहना चाहूंगा, क्योंकि वहां ना तो कोई शोर होगा ना कोई शराबा होगा और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वहां पर भी आबादी इसी तरह बढ़ा दी जाए तो फिर ये सब चीजें वहां भी हो जाएंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आप है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। विष्णु, मिस्कीन, रितिका, वाणी, आरव और इनके परिवार के सभी सदस्य, आप लिखते हैं चंद्रयान 3 के बाद तो चंदा मामा थोड़े पास लगने लगे हैं, क्योंकि अब चांद सिर्फ कविताओं और कहानियों का हिस्सा नहीं रहा। भारत ने वहां पहुंचकर यह साबित कर दिया कि जिस चांद को हम दूर से निहारते थे वहां तक हमारी वैज्ञानिक सोच अब पहुंच गई है। अब चंदा मामा दूर के नहीं, भारत की उपलब्धियों से अब करीब के लगते हैं। इसके बाद गंगा सिंह रावत है रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से, ये लिखते हैं, फिर भी मैं अपनी प्यारी हरी भरी शस्य श्यामला धरती पर ही रहना पसंद करूंगा, क्योंकि चांद भले ही देखने में कितना सुंदर क्यों ना हो पर वो धरती की सुंदरता के आगे फीका ही है। वैसे भी चांद की सुंदरता बाहरी है यानी दिखावटी है, जबकि धरती अंदर बाहर दोनों तरफ से सुंदरता की खान है। हमारी धरती रत्न गर्भा है, ये अनाज हवा जल से मनुष्य का पोषण करती है, इसीलिए मेरी नजर में चांद दूर ही अच्छा है। वो किसी माशूक का महबूब हो सकता है, किसी शायर की गजल हो सकता है, कोई उसे अपने दिल में

चुरा के कैद कर सकता है, मगर मेरी धरती का जवाब नहीं। गंगा सिंह रावत जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी शब्दावली है आपकी। इसके बाद शारु नूर अंसारी हैं, ग्राम बापोस्ट हरापुर मटकली जिला बरेली से हैं। ये लिखते हैं, अगर चांद पर भी इंसानों की एक खूबसूरत दुनिया आबाद होती तो शायद वहां रहना बेहद दिलचस्प होता। चांद की खामोश फिजा, तारों से भरा आसमान और जमीन से अलग नजारा दिल को अपनी तरफ खींचता। लेकिन अगर मुझे पृथ्वी और चांद में से किसी एक को चुनना हो तो मैं पृथ्वी पर ही रहना पसंद करूंगा। पृथ्वी सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और मोहब्बतों की दुनिया है। यहाँ बारिश की खुशबू है, पेड़ों की हरियाली है, नदियों की रवानी है और अपनों का साथ है। चांद कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मगर पृथ्वी की ये रंगीन दुनिया और इसकी रौनक कहीं और नहीं मिल सकती। मेरे लिए चांद हमेशा एक खूबसूरत ख्वाब रहेगा, जिसे दूर से निहारना अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए मेरी पसंद हमेशा पृथ्वी ही होगी। कितना अच्छा लिखते हैं हमारे ये श्रोता, बहुत अच्छी शब्दावली आपकी भी। और अब ये कमेंट राम कुमार रेवाड़ का है, ये लिखते हैं, चांद पर पता नहीं रेडियो सुनने को मिले या ना मिले, इसलिए मुझे तो अपनी धरती ही प्यारी है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनने को तो मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही मानना फोन कॉल पर जब हमारे एक श्रोता हमें मिले थे, उनकी भी यही सोच थी और ऐसी ही सोच हमारे इन श्रोता की भी है। वाकई में बहुत अच्छे विचार हैं आप सभी श्रोताओं के, और सच कहें ऐसा लगता है कि बस आप मैसेजेस या जो ये इतनी अच्छी अच्छी शब्दावली लिखकर भेजते हैं, हम इसको पढ़ते रहें। बहुत अच्छी शब्दावली आप सभी की होती है, और अब आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

तो श्रोताओ, हमारे आज के विषय की अगर चांद पर सभी सुविधाएं आपको दी जाएं और रहने को कहा जाए तो आप चांद पर रहना पसंद करेंगे या पृथ्वी पर? आज के इस विषय पर सभी श्रोताओं के बहुत अच्छे अच्छे विचार हम तक पहुंचे और उनकी पसंद के गीत हमने आप तक पहुंचाए। अब हमारा काम हो चुका है, अब आपके काम की बारी है। मतलब हमारा ये है कि अब आपकी प्रतिक्रियाओं की बारी है, तो आपको देनी है अपनी प्रतिक्रियाएं आज के कार्यक्रम के लिए। और अब एक बहुत आसान तरीका जिसके माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, जी हाँ, हमारा आकाशवाणी बरेली का व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आप आपका पत्र मिला, लकी 3 और मनभावन कार्यक्रम के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो अपनी प्रतिक्रियाएं इस फोन नंबर पर हमें भेज दीजिए। फोन नंबर है 9457395859। फिर से नंबर नोट कर लीजिए, कार्यक्रम आपका पत्र मिला के लिए 9457395859। वहीं अगर पत्रों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो उसके लिए पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली। बरेली का पिन नंबर है 243001। वहीं ईमेल के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। तो इसके लिए है akashvanibareli@gmail.com। तो देखिए, अब ये इतने सारे माध्यम हमने आपको बता ही दिए हैं, एड्रेस दे ही दिए हैं कि किस तरह से आपको अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचानी है। फटाफट भेज दीजिए और आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ 100.4 FM पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। अब एक संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की।

5:30 पर लेकर आएंगे मन भावन कार्यक्रम। और हमने आपको बताया कि मन भावन कार्यक्रम के लिए भी आप आकाशवाणी बरेली के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शब्दावली भेज सकते हैं, जो कि नंबर है 9457395859। समय है, याद रखिएगा, 5:30। एक मुलाकात लेकर आएंगे 5:45 पर। युवाणी में 6 बजे होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। ग्राम जगत में चर्चा की जाएगी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं विषय पर, साथी होगा लोक मंजरी। समय रहेगा 6:30 पर। 7 बजे लेकर आएंगे जय जवान जनमंच, इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 7:31 पर। कल सुबह 8:15 पर हम लेकर आएंगे नमस्ते बरेली कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला, सुन सकेंगे आप सुबह 9 बजे। 9:30 पर एक और प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है का समय रहेगा। सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे।

10 बजे, 11 बजे का समय सब रंग का रहेगा। दिन में 1 बजे आपके अनुरोध भरे पत्रों के साथ शुरू करेंगे कार्यक्रम अनुरोध गीत। दिन में 3:30 का समय रहेगा NCERT प्रायोजित कार्यक्रम का। कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ सुन सकेंगे आप शाम 4 बजे। कल शाम 5:30 पर नारी संसार में साइबर बुलिंग से बचाव पर चर्चा की जाएगी और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर भी चर्चा होगी। समय रहेगा 5:30 का। वहीं युवाणी में होगा कल का सवाल और बहुत कुछ खास धूम धड़ाका। समय रहेगा 6 बजे का। 6:30 पर ग्राम जगत में चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। अक्षय वट इस कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे। 7:31 पर आपके ढेर सारे अनुरोध पत्रों के साथ कार्यक्रम शुरू करेंगे अनुरोध गीत। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज के शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। ये देश हमारा है। अपने देश की प्राचीनतम और पौराणिक धन संपदा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। देश की वगिया का सबसे महकता पुष्प हिंदी। अपने देश को स्वच्छ बनाए रखने में अपना अहम योगदान अवश्य दें।

जल ही जीवन है, इसका संरक्षण करें, इसे व्यर्थ ना बहाएं। हमेशा याद रखें, जल का कोई विकल्प नहीं। वृक्षारोपण से करें धरा का श्रृंगार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 5:05 और 12 सेकंड हुए हैं। और हम लेकर हाजिर हुए हैं भजन संध्या। तो लीजिए, कांधे पर है कावरिया के कावर। अनूप जलोटा की आवाज में इस शिव भजन से शुरुआत करते हैं भजन संध्या की।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला लीजिए, शाम के 5:30 और 5 सेकंड हुए हैं। तो श्रोताओं, वो समय हो गया है जब हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम मन भावन में हम चुनिंदा कुछ श्रोताओं के पत्रों को शामिल करते हैं, जिसमें वो सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, साथ ही उस गीत से जुड़ी शब्दावली। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको यदि कोई गीत पसंद है तो आप मनभावन कार्यक्रम में हमें लिख सकते हैं, और ये जरूर लिखें कि वो गीत आपको क्यों पसंद है। उस गीत से जुड़ी शब्दावली हमें जरूर लिखें और हम चुनिंदा श्रोताओं के पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अब आप कमेंट के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, हमारे नए व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर नोट कर लीजिए, 9457-395859। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आपका पत्र मिला, लकी 3 और मन भावन, इन तीन कार्यक्रमों के लिए अपनी शब्दावली भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, 9457-395859। तो देखिए, अब कितना सरल हो गया है आपका जो है कार्यक्रम में शामिल होने का। यदि इच्छा है तो आप बड़े आसानी से, बड़े आसान तरीकों से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ श्रोताओं के हमने चुनिंदा कमेंट शामिल किए हैं कार्यक्रम मन भावन के लिए। तो सबसे पहले जो श्रोता जिनका ये कमेंट हमने शामिल किया है, ये व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिला है, आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। बधाई हो आपको। आप हैं वारिस अली खान और बहन इनकी शहनाज खान। अब आपकी शब्दावली पढ़ते हैं। आपने बदलते रिश्ते इस फिल्म से ये गीत सुनना चाहा है कि ना जाने कैसे पल में बदल जाते हैं। किशोर कुमार की आवाज में इस गीत को सुनना चाहा है। आप क्यों सुनना चाहा है ये आपको बताते हैं। आप लिखते हैं, अर्ज है, रिश्ता कोई भी हो झगड़ा होता ही है, झगड़ा करके भी जो रिश्ता ना टूटे।

बस वही अपना होता है। इसीलिए रिश्ते की डोर को मजबूती से थामे रहें, और शायद इसीलिए इन्होंने इस गीत का चयन किया है। बिल्कुल, वारिस अली खान जी कहते हैं ना, शीशा और रिश्ता, ये दोनों ही चीज़ बड़े नाजुक होते हैं। आप कहीं से शीशा लेकर आइए, उसको कितना देखभाल की ज़रूरत होती है ना, और अगर आपने ज़रा सी लापरवाही कर दी तो बस छिन्न से ज़रा देर में टूट जाता है। तो शीशों की तरह ही हमारे रिश्ते होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं ये रिश्ते। और इन दोनों में फ़र्क यही होता है कि जो शीशा होता है अक्सर हमसे गलती से टूट जाता है, और रिश्ते गलत फहमी से। तो इसीलिए इन दोनों चीज़ों को ही बड़ा संभाल कर रखें अपने जीवन में। और रिश्तों का तो महत्व हम क्या ही कहें, हर कोई अपने जीवन में रिश्तों से बंधा हुआ है, और अगर ये रिश्ते ना हों तो जीवन ही बड़ा कठिन हो जाएगा। कोई संस्कार सभ्यता मानो सब विलुप्त से हो जाएंगे, ना कोई संस्कार रहेंगे, ना रीति रिवाज रहेंगे, ना सभ्यता रहेगी, ये सभी रिश्तों पर निर्भर है। तो चलिए अब आपको सुनवा देते हैं इतनी सुंदर आपकी शब्दावली के लिए आपकी पसंद का ये गीत।

मन भावन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। आप भी अपनी बहुत अच्छी सी शब्दावली हम तक भेज सकते हैं और चयनित श्रोताओं को हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसी क्रम में ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी। संभवतः इनका जो ये कमेंट है हमें 16 अगस्त को मिला है और इसीलिए इन्होंने लिखा है कि कल हमने मनाया 15 अगस्त। आज़ादी के 80वें वर्षगांठ स्कूलों में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर तरफ भारत माता की जय और दिन भर देशभक्ति के गीत सुनाई दिए। मगर हमने ये सोचा कि ये जश्न हमें मनाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने अपने सरों का नजराना पेश किया है, कितने लोगों ने फांसी के फंदे को अपने गले में पहना। 1847 में ये प्रक्रिया शुरू हुई और 1947 को हमें कामयाबी हासिल हुई। 100 साल लगे हमें अपना देश आजाद कराने में, तब कहीं जाकर हमें आजादी मिली। आज भी बहुत सारे हमारे देश के जो जवान हैं इस देश की रक्षा करते हैं, सरहदों पर खड़े होकर ना वो दिन की फिक्र करते हैं ना रात की। हमें गर्व है अपने देश की सेना पर, एक बार नहीं 100 बार सैल्यूट हमें अपने देश की सेना पर। बहुत अच्छी शब्दावली आपकी लाल मोहम्मद अंसारी जी। हम अपने देश की सेना पर गर्व करते हैं और बार बार जितनी भी बार उन्हें नमन करें कम है।

देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस गीत को हमारे इन श्रोताओं ने बहुत अच्छी शब्दावली के साथ हम तक भेजा, और अब चलते चलते अपने इन श्रोताओं को शामिल कर लेते हैं। तो आप हैं रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप मिश्रा, माधुरी मिश्रा, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा, सलोनी, शिवम, शास्त्री जी, निर्दोष, शर्मा। कहाँ से हैं आप, ये आपने नहीं लिखा है। आप लिखते हैं, प्रिय महोदय, अब सावन महासमाप्ति की ओर

है, केवल एक ही सोमवार शेष बचा है। इस सोमवार के बाद है रक्षाबंधन। तो इस सावन के पवित्र महीने में हमने आकाशवाणी बरेली से बहुत कुछ सीखा, बहुत ज्ञानवर्धक प्रोग्राम सुने, जिसमें सावन की फुहार, कांवड़ यात्रा सहित आपने ऐसे प्रोग्राम प्रस्तुत किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम बाबू मिश्रा जी, अगली बार आप गीत का चयन जरूर करके लिखिएगा, और उस गीत को क्यों सुनना चाहते हैं उससे जुड़ी शब्दावली भी लिखिएगा। बाकी बहुत अच्छी शब्दावली आपकी है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: और अब श्रोताओं, समय नहीं है कि हम अपने कार्यक्रम को और आगे तक ले चलें, क्योंकि जरा समय की ओर देखिए, 5:45 होने वाले ही हैं और अब हमें कार्यक्रम से लेनी होगी अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मन भावन। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 5:45 और 32 सेकंड हुए हैं। हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम एक मुलाकात। इसमें हम आशीष गुप्ता से की गई मिथिलेश श्रीवास्तव की बातचीत आप तक पहुंचाते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव और हर बार हम अपने कार्यक्रम में किसी न किसी खास मेहमान को बुलाते हैं। तो आज जो मेहमान आए हैं वो बहुत ही खास हैं और एक क्लू देते हैं, हिंट देते हैं आपको, वो अभी तक सबका इंटरव्यू करते आए हैं। आज हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आशीष गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आकाशवाणी आप मुझे लगता है पहली बार आ रहे हैं
2: जी,
1: कैसा लग रहा है सर?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, और चूंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ और रेडियो जो है वो पहला माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो रेडियो के साथ आज इस तरह से आना और खुद अपना इंटरव्यू यहाँ पर करना, तो अपने आप में बहुत अच्छा एक विलक्षण अनुभव हो रहा है। और निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत बधाई भी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर।
1: जी बिल्कुल, 90 वर्ष भी हो रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इंटरव्यू अभी तक आप लेते आए थे, आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, और निश्चित तौर पर जब इंटरव्यू का जो एक मोटिव होता है वो यही होता है कि जब सार्थक चर्चा होती है तो जो श्रोता होते हैं या जो दर्शक होते हैं उनको कुछ ना कुछ पाने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगले 15 मिनट में हम लोग जो चर्चा करेंगे हमारे श्रोताओं को कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो उनके काम आएगा।
1: जी बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि डॉक्टर आशीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते आए हैं, और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का पत्रकारों का एसोसिएशन है उपज, उसके भी आप चेयरमैन हैं। साथ में आप ओलंपिक संघ जो है जिला स्तर का, उसके चेयरमैन भी हैं, तो उसके अलावा उद्यमी भी हैं
2: जी।
1: तो इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर लेते हैं?
2: देखिए, बेसिकली तो हम 3 पीढ़ियों से व्यापारी ही हैं।
1: अच्छा।
2: जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने, उनके पिताजी ने जो है, मेरे दादाजी ने शंकर पुस्तक भंडार के नाम से एक धार्मिक किताबों की दुकान इस्टेब्लिश की थी।
1: अच्छा।
2: 1930 में।
1: अच्छा अच्छा।
2: लगभग 96 ईयर्स हो चुके हैं उसको।
1: लेगेसी है फिर तो।
2: हाँ, लेगेसी है अपने आप में। तो ये बरेली और कुमायूं रीजन का एक अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर

0: सभी दुर्लभ धार्मिक पुस्तकें जो है मिलती हैं, जनरल बुक्स मिलती हैं। तो जो बचपन से जब मेरी एजुकेशन शुरू हुई तभी से प्रेमचंद, शरदचंद और इन सबको पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए। कॉमिक्स और तमाम जो मैगजीन है, बैलेंस है और नंदन है, चंपक है, पृथ्वी दर्पण, तमाम जो मैगजीन्स और मतलब किताबों से जो लगाव रहा, उस लगाव ने जो है मेरे को जो है पत्रकारिता की जो
1: तरफ
0: ये
1: मोड़ दिया, एक
0: तरफ
1: एक
0: मोड़
1: रुचि।
0: दिया। हाँ, एक रुचि थी। संपादक के नाम जो पत्र छपते थे वो उसको हम लिखते थे, जब वो छप जाते थे तो उसको कटिंग काट कर जो है
1: अच्छा
0: पेस्ट
1: अच्छा
0: कर लिया करते थे।
1: क्या
0: जब वो
1: बात
0: छपना शुरू हो गया, एक थिंकिंग डेवलप हुई, तो
1: है।
0: मन किया कि उसी सिस्टम का पार्ट बनना है। तो उस सिस्टम के पार्ट बनने के लिए पत्रकारिता में आ गए। व्यापार चूंकि शुरू से खून में था, इसलिए वो सब चीजें हैं। और चूंकि पत्रकारिता में हम लोगों का एक नेटवर्क अच्छा हो जाता है, तो मन में ये विचार भी आया कि जहां जहां हम अपने संपर्कों के जरिए सामाजिक कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं, तो वहां वहां जोड़ा जाए। तो खेलों में रुचि थी। मेरा बेटा भी क्रिकेट का अच्छा शौकीन है, तो डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में पिछले 5 वर्ष पहले मैंने काम करना शुरू किया। वहां पर जो कुछ हो सकता है, बन पड़ सकता है, वो किया जाता है। इसके अलावा और जो सामाजिक संगठन है या जो अपने पत्रकार साथियों के लिए हित में कर सकते हैं, तो उस तरह से सक्रियता रहती है। तो एक तरह से एक तालमेल बैठाने में समय का तो अभाव रहता है, लेकिन आप अगर उसका दूसरा पक्ष देखेंगे, तो आप जब भी किसी एक ही स्ट्रीम में काम करते जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके अच्छे और बुरे चीजों के सामने आने के बाद में आपके मूड में परिवर्तन हो। लेकिन मेरे साथ अच्छा ये होता है कि आज मैं अभी आपके साथ जो है स्टूडियो में पत्रकार के रूप में बैठा हूँ या इंटरव्यू दे रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद अपने व्यापार में, बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाऊँ, या
1: जी
0: शाम को हो सकता है किसी सामाजिक कार्य में जो है व्यस्त रहूँ। तो उसमें बड़ा एक अच्छा मुझे इनपुट मिलता है। मेरे एक डॉक्टर से चर्चा हो रही, तो बोले आप तो हमेशा जो है वो डिफरेंट मोड में रहते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: कभी भी तनाव हावी नहीं होता।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: आप जो है, जब हो सकता है मैं यहाँ से जाने के बाद शाम को किसी शूटिंग रेंज में जो है बच्चों के साथ पुरस्कार वितरण समारोह में रहूं, या बच्चों को कोई सी और एक्टिविटी में रहूं, तो जो दिन भर का स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है।
1: रिलीज हो जाता है, सही
0: तो
1: बात।
0: एक मतलब ओवर हेक्टिक शेड्यूल भी है, लेकिन साथ साथ उसका फायदा भी है।
1: हाँ, लाइफ को एक जो प्रवाह है जिंदगी का, उसमें
0: हाँ, वो
1: आप
0: चल रहा है।
1: चल रहे
0: तो
1: हैं।
0: इस वजह से इसी तरह से तीनों चीजों में समन्वय जो है स्थापित रहता है।
1: स्थापित होता रहता है।
0: जी
1: इसमें फिर अपने लिए समय कब निकाल पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए?
0: देखिए, मैंने जो है एक शेड्यूल बना रखा है। जैसे
1: अच्छा।
0: मॉर्निंग होती है तो 3 अखबारों को पढ़ने का एक रूटीन बना हुआ है। अब बहुत लंबे समय से वो जीवन का हिस्सा बन चुका है। जब तक हम 3 अखबार पढ़ नहीं लेते, जब तक हमें शहर का मतलब, क्योंकि इस विधा में है इसलिए अखबारों में पढ़कर और तीनों अखबारों में उसी खबर को किस तरह से छापा गया, क्या उसमें नयापन आया, या हमने जो कवर किया था उससे आगे और क्या मतलब प्रिंट मीडिया ने उसको आगे कैसे बढ़ाया उस खबर को, इस तरह का रहता है। मॉर्निंग में जो मेरा अपना वेंचर चल रहा है न्यू स्टूडेंट नेटवर्क, उसकी टीम के साथ में जो मीटिंग हो जाती है, अपने संस्थान के साथ में जो मीटिंग हो जाती है, दिन भर की फॉरवर्ड प्लानिंग हो जाती है, वो उसके बाद फिर जो इनपुट्स आए हुए हैं, जो असाइनमेंट है या कोई बड़ी खबर कवर करना है, उसको कर लिया जाता है। बाकी जो बचा हुआ समय है उसमें कोई सामाजिक कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम लगा हुआ है वो हो गया, बिजनेस को देखकर, और शाम का समय अपने भाई के साथ में।
1: शाम
0: तो
1: का समय
0: मतलब
1: मिलता
0: थोड़ा
1: है।
0: सा कम समय मिलता है, लेकिन मैंने कभी कभी ये करके देखा कि अगर मैं किसी चीज़ को स्किप करता हूँ और ज़रा समय देता हूँ, मुझे लगता ये है कि जब मैं तीनों चीजों के साथ रहता हूँ तो अब आदत पड़ गई है।
1: आदत पड़ गई है।
0: हाँ, और उसी के साथ में अच्छा फील होता है, और परिवार के लोगों को भी आदत पड़ गई कि ठीक है,
1: हाँ, छुट्टी लेते हैं आप?
0: छुट्टी तो कभी नहीं हो पाती।
1: कभी हो ही नहीं पाती है।
0: हाँ,
1: और छुट्टी के
0: मीडिया
1: दिन
0: मीडिया
1: भी।
0: में कभी छुट्टी है नहीं। और व्यापार में अगर मैं अपनी शॉप की बात करूँ, तो वहां पर थर्सडे ऑफ रहता है, लेकिन थर्सडे को और चीजों में व्यस्त रहते हैं हम। जैसे आज थर्सडे है, तो आज मैं यहाँ पर हूँ, और रियल एस्टेट वाला काम या तमाम और जो उद्यमित वाला काम है वो चल रहा है, तो वहां पर भी जाना होता है। लेकिन कोशिश ही करते हैं कि थर्सडे वाले दिन इवनिंग का टाइम जो है वो बच्चों के साथ में और परिवार के साथ कहीं बाहर जाया जाए और
1: अच्छा,
0: समय दिया जाए परिवार को।
1: बिल्कुल। जो इतने सारे हैं, पत्रकारिता है और बिजनेस है आपका,
0: जी
1: और साथ में ओलंपिक संघ भी है। जो आप सामाजिक कार्यों की बात कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या करते हैं आप?
0: देखिए, सामाजिक कार्यों में ये है कि एज सच जो टारगेट है वो, तो जैसे ओलंपिक एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो उसमें प्रयास ये करते हैं, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन जो है एक अम्ब्रेला है, उसके अंतर्गत 36 खेल आते हैं जो ओलंपिक्स में रजिस्टर्ड हैं, और उन फेडरेशंस के द्वारा जो खेलों का आयोजन किया जाता है उसमें खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, वो कैसे अच्छे से आ सकते हैं, उनके रहने का खाने की व्यवस्था प्रॉपर है नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं। साथ साथ जो निर्धन खिलाड़ी हैं वो कैसे आगे जा सकते हैं, कैसे अपना प्रतिभा को उभार सकते हैं, उसको हम प्रयास करते हैं। बरेली में हमने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। 2021 में हमने 49वीं नेशनल सीनियर हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था, जिसमें 26 राज्यों से लगभग 600 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था।
1: क्या बात।
0: कोरोना के टाइम वो हुआ था, एक चैलेंज था, लेकिन
1: हाँ
0: हमने
1: हाँ
0: अच्छे से
1: हाँ
0: किया।
1: बिल्कुल।
0: उसका 2023 में हमने 45वीं जूनियर हैंडबॉल महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया। अभी रिसेंटली पिछले महीने ही हमने 54 भी जो है यहाँ पर सीनियर नेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट किया, तो मतलब हैट्रिक एक नेशनल आयोजन की बरेली में।

0: बेसिक ओलंपिक एसोसिएशन ने लगाई है,
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: अपने आप में भारत का पहला शहर है जहाँ पर 3 नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन एक ही खेल के हुए हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इस तरह से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। बाकी पत्रकार एसोसिएशन में अपने पत्रकार साथियों के ऊपर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, या अभी हम एक मंथली बैठक का हमने एक आयोजन रखा है, उसमें हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनके बच्चों ने जो अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो उनको प्रोत्साहित करना है। कोरोना के दौरान हमने जो है क्रेडाई, जो मेरे रियल इस्टेट एसोसिएशन है, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बांटे थे, दवाइयाँ बांटी थी, जो वहाँ पर उस समय ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वरदान साबित हुए हम लोगों के लिए, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत कम थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो संपर्कों के दौरान जो है मरीजों को भर्ती कराना या इस तरह की, मतलब बहुत सारी चीज जैसा जो अवसर मिल जाता
1: जो
0: है,
1: अवसर मिल जाता
0: हाँ,
1: है,
0: उस तरह से अपने संपर्कों के द्वारा जो है लोगों की जो मदद हो
1: जितनी
0: जाए।
1: कोशिश है कर सकते हैं उतना
0: जी जी
1: करते हैं।
0: उसमें आत्मिक संतुष्टि भी होती है और ये भी लगता है कि हाँ ठीक है, हमारे जो संपर्क हैं उसका हमने सही इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल सही बात है। और बात करें केवल जिस तरह के बरेली के बारे में आपने बताया ही, लेकिन
0: जी
1: बरेली में अभी और क्या फ्यूचर है, किस तरह से देखते हैं बरेली को?
0: देखिए, बरेली जो है एक उभरता हुआ शहर है। मैं चूंकि जन्म से इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, तो आप मान के ये चलिए कि बरेली जो है वो तरक्की प्रसव पीड़ा से गुजर रहा है, मतलब ये शहर कुलबुला रहा है। आप देख रहे होंगे सन 2000 में ये शहर जो था आज 2026 में एकदम बदल चुका है। 2000 से 2010 का एक समय जो था वो बदलते हुए बरेली का था, उसके बाद अब 2020 में यहाँ पर जो है, 21 में यहाँ पर एयरपोर्ट शुरू हुआ। एयर कनेक्टिविटी के बाद हम मुंबई से, माया नगरी से सीधे जुड़ चुके हैं। स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बन चुकी हैं, इंक्यूबेशन फाउंडेशन से लेके और जो राधेश्याम कथावाचक स्मृति सभागार बना है या फिर जो अर्बन हार्ट बना है, तमाम ऐसी चीज़ें। उसमें कुछ चीज़ों में कंट्रोवर्सी भी है कि आपका कोई एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है या कुछ है, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं।
1: प्रोसेस में है।
0: हाँ, मतलब एक बुजुर्गों की कहावत है ना कि लड्डू बनेगा तो चूरा होगा, लेकिन चूरा होने के डर से आप लड्डू बनाना नहीं छोड़ सकते।
1: बिल्कुल।
0: तो बरेली के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और बरेली बहुत ही विलक्षण शहर है अपने आप में। और सबसे अच्छी खूबी यह है कि यहाँ पर जो भाषा लिखी जाती है वही भाषा बोली जाती है। आप यहाँ से 40 किलोमीटर दूर चले जाइए, बदायूं, आपको भाषा बदल जाएगी। आप शाहजहांपुर की तरफ जाइए, भाषा बदल जाएगी।
1: बदल
0: पीलीभीत की तरफ
1: जाएगी।
0: जाइए, भाषा बदल जाएगी। देवनागरी जो बरेली में है वो एकदम शुद्ध बोली जाती है। ये शहर की खूबसूरती है। बढ़ता हुआ शहर है, दिल्ली बरेली के बीचों बीच है, 250 किलोमीटर दूर दिल्ली है, 250 किलोमीटर दूर लखनऊ
1: बिल्कुल
0: है। तो मतलब देश और प्रदेश की राजधानी के
1: के
0: बीचों बीच
1: बीचों बीच में है
0: सारे
1: स्थित।
0: मौसम आपको यहाँ पर मिलेंगे, सर्दी गर्मी बरसात सारे
1: बिल्कुल।
0: मौसम यहाँ पर मिलेंगे। शांत शहर है, कभी यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ऐसा उपद्रव हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, कुछ तरह की सामुदायिक सांप्रदायिक चीजें थी, लेकिन अब चूंकि सरकार का जो रुख है उसके बाद से अब यहाँ पर वो भी सब शांत। तो मेरे हिसाब से जो मेरा शहर बरेली है अपने आप में उसका भविष्य जो है बहुत उज्ज्वल है। यहाँ से बड़ी प्रतिभाएं निकली हैं, मून अजी, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़े राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है। तो
1: बिल्कुल।
0: निश्चित तौर पर आगे जो शहर बरेली है वो आपको अगले 5 या 10 सालों में और बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल। और खेलों में भी आगे आएंगे
0: जी
1: कुछ।
0: बिल्कुल, खेलों में यहाँ पर रिदम है, जो एक मूक बधिर बच्ची है वो, उसने जो है वो मूक बधिर ओलंपिक में जो है बहुत अच्छा नाम रोशन किया है बरेली का। इसके अलावा यहाँ पर तीरंदाजी में है या फिर यहाँ पर जो कमल सेन है, इंटरनेशनल शूटर है, और तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने बरेली को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दी है। और जिस तरह से सरकार खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है तो निश्चित तौर पर बरेली में जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आएंगी। और स्टेडियम में आप देखिए मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण हो चुका है, 10 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण हो चुका है यहाँ पर। इसके अलावा जिमनास्टिक का हॉल बनना है इस समय यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रतिभाओं को अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर आगे जाएंगे। और चूंकि मैंने जैसा बताया ठंडी तासीर का शहर है बरेली,
1: ठंडी तस्वीर क्या है।
0: यहाँ पर जो है लोग जो है बहुत ज्यादा उपद्रव करने में या लिटिगेशन करने में या एजिटेशन करने में, उसमें उन लोगों का बहुत ज्यादा वो नहीं रहता। व्यापारी अगर जो सरकारी सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अपने प्रयासों से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, दीपक स्वीट्स वाले दिलीप गुप्ता जी हो गए, सिलेक्शन पॉइंट वाले नरेंद्र गुप्ता जी हो गए, तमाम ऐसे, या मेरे जीजाजी हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बल पर जो है वो शहर में बहुत बड़े काम किए हैं और शहर को भी आगे बढ़ाया, अपना नाम भी आगे बढ़ाया। तो बरेली मैं मानता हूँ मतलब ऐसे लोगों का शहर है जो शहर को आगे ले जाना चाहते हैं। सरकारी प्रयास या सरकारी सहयोग निश्चित तौर पर मिलता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो वो अपने आप चाहते हैं कि शहर हमारा आगे बढ़े। आज बहुत अच्छी खबर मैंने अखबार में सुबह पढ़ी थी कि 2 जून से बरेली से दिल्ली के लिए फिर से फ्लाइट शुरू होने वाली है,
1: बिल्कुल।
0: जेवर एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट शुरू होने वाली है। तो निश्चित तौर पर अब यहाँ पर संसाधन बढ़ेंगे। आप देखते होंगे कि फिल्मों की शूटिंग बहुत होने लगी बरेली में,
1: बहुत सारी।
0: अलीगढ़ फिल्म की शूटिंग हुई, इसके बाद अब रिसेंटली एक और फिल्म की शूटिंग हुई। माया नगरी से सीधे कनेक्टिविटी का बहुत फायदा है यहाँ पर। तो आप

0: जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो रंगमंच की प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। राधेश्याम कथावाचक जी की नगरी है बरेली, पूरे देश में जो रामलीला होती है वो राधेश्याम जी की लिखी हुई रामायण पे ही मंचन होता है उनका।
1: बिल्कुल सही बात
0: तो
1: है।
0: आप चाहे साहित्यिक रूप से देख लीजिए, चाहे और परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, बरेली अपने आप में एक बढ़ता हुआ शहर है।
1: बिल्कुल बढ़ता
0: और
1: हुआ शहर है
0: जी
1: और खेलों में भी आगे बढ़ ही रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो ओवरऑल अगर आप युवाओं को अगर कुछ संदेश देना चाहें जो पत्रकार बनना चाहते हैं
0: जी
1: वो और जो ओलंपिक में कुछ करना चाहते
0: जी
1: हैं उनके लिए अगर कुछ आप संदेश देना चाहें इंटरव्यू के आखिर में।
0: जी बिल्कुल। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है। एक बहुत पुराना नारा है, जिसो जवानी चलती है उसो जमाना चलता है। तो भारत में अच्छी बात यह है कि इस समय युवाओं की संख्या ज्यादा है। और बरेली के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कोई संदेश देना चाहूँ तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड है ये। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले भी कि पत्रकारिता के साथ साथ अपने इनकम का कोई और सोर्स रखिए, लेकिन आप आएंगे कुछ सीखेंगे और ऐसा कुछ करिए जो आपके शहर को आगे ले जाने का काम करे। जैसे मैं जब भी रिपोर्टिंग करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म क्या फर्क पड़ेगा मेरे शहर पे या मेरे देश पर या मेरे प्रदेश पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करिए, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि हर विषय की जानकारी हो जाती है। जब आप आज मुझे 22 साल का लंबा अनुभव हो गया, तो 22 साल में मैंने त्रिशूल एयरबेस के अंदर जाकर भी देख लिया, आर्मी एयरबेस के अंदर जाकर भी देख लिया, दंगे में भी देख लिया, यहीं पर इसी बदायूं रोड पर बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ की कवरेज भी कर ली। और मतलब तमाम जो ऐसी चीजें हैं, दंगा है, बाढ़ है, आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू होने का
1: सारे
0: मौका
1: अनुभव
0: मिलेगा।
1: मिल
0: तो आप
1: जाते
0: अगर
1: हैं।
0: जिंदगी में रोमांच चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका करा हुआ आपको बाद में लगे कि हाँ आपने समाज के लिए भी कुछ किया, तो पत्रकारिता निश्चित तौर पर आपके लिए है। इसके अतिरिक्त खेलों की अगर आप बात करेंगे तो खेलों में इस समय बहुत एक्सपोजर है। खेलों के द्वारा आपको सरकारी नौकरी मिलने में भी आसानी है। सरकार का बहुत अच्छा रुझान इस समय खेलों की तरफ है। देश और प्रदेश की सरकार लगातार खेलों को आगे ले जाने का काम कर रही है। तो सुविधाएं बहुत मिल रही हैं आपको, चैलेंजेस पहले से अमूमन कम हो गए हैं क्योंकि अब
1: और अब तो
0: आपको
1: ओलंपिक में प्रदर्शन भी पहले से
0: हाँ
1: बेहतर होने लगे
0: दो
1: हैं।
0: में इंडिया में ओलंपिक्स भी होने वाले हैं। तो आज से अगर युवा तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको आके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का मौका मिलेगा। मेरे द्वारा जो सहयोग किसी को चाहिए हो युवा को, उसके लिए मैं तैयार हूँ।
1: जी बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम श्रोता आपने जो बातें बताई हैं उससे जरूर लाभान्वित होंगे और अपने जीवन में कुछ करेंगे, कुछ आगे भी बढ़ पाएंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर।
0: धन्यवाद मिथिलेश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। शाम के 6 बजे हैं और ये समय है युववाणी का। तो लीजिए अब सुनते हैं माधुरी लोधी के साथ युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम युगवाणी में। और आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों आज है हेलो फ्रेंड्स, बहुत खास है आज का ये दिन, क्योंकि आज के दिन हम आपसे जुड़ते हैं सीधे कॉल्स के जरिए। आपकी बातें, आपके सवाल, आपके अनुभव, इन्हीं से तो खास बनती है हमारी ये मुलाकात। तो चलिए बढ़ते हैं फोन की तरफ और उठाते हैं कॉल्स को और बात करते हैं अपने युवा श्रोताओं से।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: हेलो फ्रेंड्स, अपना नाम बताइए।
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद, जिला बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं बताइए।
1: जी मेरा बिल्डिंग का काम है, साइकिल की दुकान है, यहाँ पे मैं अपना काम करता हूँ और आपके कार्यक्रमों को सुनता हूँ। खासतौर से शाम को जो युवाणी कार्यक्रम आता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो गीत सुनाए जाते हैं और जो जानकारियाँ दी जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है और इनसे काफी फायदा भी होता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है।
1: 8th क्लास तक है, ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई लेकिन।
0: जी जी, तो कुछ युवा साथी क्या होते हैं बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई अगर आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का तो आप पूरी जितना अभी संभव हो मतलब पढ़ाई को छोड़े ना, और अगर ऐसी

0: तो स्थिति बन भी जाए फिर भी कोशिश ये की जाए कि पढ़ाई ना छोड़ी जाए, क्योंकि सब कुछ पढ़ाई से होता है। पढ़ाई से आदमी बहुत कुछ कर सकता है, अगर बिजनेस भी करेगा तब भी हमें पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, और कहीं अगर जॉब लगती है तब भी हमें पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी हाथ से अगर पढ़ाई को ना छोड़े, अपनी पढ़ाई पूरी करे तो ज्यादा बेहतर है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है, और कोशिश यही करें कि हम अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। जी तो आज आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: जी गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसका गाना है तुझे देखा तो ये जाना शरम प्यार होता है दीवाना शरम।
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी। ये

0: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हेलो फ्रेंड्स। जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए।
3: जी, मैं सना खान बात कर रही हूँ, बरेली से। पढ़ाई करती हूँ जी, मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अभी।
2: जी, फर्स्ट ईयर में आप हैं, तो आपने अपना लक्ष्य क्या बनाया है आगे?
3: जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ।
2: जी, टीचर आप बनना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? कौन सी क्वालिटीज हैं जो उसके अंदर होनी चाहिए?
3: जी, अच्छा टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को प्यार से पढ़ाए और उन्हें समझाए, अच्छी एजुकेशन दे उन्हें और अच्छे से प्यार से पढ़ाए ताकि बच्चा आगे बढ़ सके।
2: जी, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपका फोन लगा है, क्या कहना चाहेंगी? ये हमारे युवाओं को कोई मैसेज जो आप देना चाहें?
3: जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल से और सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब तक हम पढ़ाई करेंगे तो उसी से हम कुछ बन सकते हैं और आगे कुछ कर सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने आकाशवाणी के बरेली केंद्र से की। तो आज आपका फोन लगा है, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगी आप?
3: जी, मैं सुनना चाहूंगी ऐ दिले मुश्किल का टाइटल
2: ट्रैक। जी, तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का सॉन्ग। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, जैसा कि डेली प्रोग्राम में किसी न किसी युवा साथी से की गई बातचीत को शामिल किया जाता है, और आज भी हमने एक युवा छात्र से बातचीत की है। क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं।
3: आपका नाम?
4: जी, मेरा नाम शिवम वर्मा है और मैं बरेली से बिलोंग करता हूँ।
3: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या करते हैं आप?
4: मेरी हॉबी तो सिंगिंग और गिटार है, बाकी गिटार वगैरह सिखाता हूँ।
3: जी, अच्छा, ये बताइए कि आपने ये गिटार बजाना और गाना कहाँ से सीखा?
4: गिटार बजाने के लिए मैंने अपने गुरुजी श्री संदीप सेठ जी, उनसे अपना गिटार की शिक्षा ली है। बाकी म्यूजिक में वोकल जो होता है वो मैंने अपने गुरुजी गोस्वामी सर और देवजीत बैनर्जी सर से शिक्षा ली है उसके लिए।
3: जी, आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है?
4: मैंने वैसे अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया है, बाकी एमबीए अभी भी मेरा चल रहा है, और वैसे सिंगिंग मैंने प्रभाकर किया हुआ है।
3: जी, क्या आपने अभी तक कोई अपनी एल्बम भी रिलीज की है क्या?
4: हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी श्याम बाबा का कुछ टाइम पहले भजन आया था, भजन का नाम है काबिल बना दो। इससे पहले हाय प्यार सॉन्ग जो कि मेरे ही चैनल से रिलीज हुआ था।
3: जी, जो गीत आप गाते हैं क्या वो आप खुद लिखते हैं?
4: जी जी, मैं लिखता हूँ, बाकी मेरे दोस्त भी लिखते हैं साथ में, और सब साथ में रिकॉर्ड वगैरह करते हैं।
3: जी, अच्छा, हमारे कुछ युवा साथी क्या होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, आपने ये विषय क्यों ले रखा है, मतलब आपकी रुचि इसमें कैसे आ गई?
4: एक्चुअली एक बार मैं अपने घर में बैठकर टीवी में सिंगिंग शो देख रहा था, बचपन की बात है, तो मैं उनको देखता था, सुनता था, तो मुझे भी लगता था क्यों ना एक बार मैं भी कोशिश करूं। तो उनको देख के फिर अपना रुचि बनती गई, तो फिर स्टार्टिंग में मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया। गिटार सीखने के बाद फिर मैंने सिंगिंग के लिए अपने गुरुजी के पास गया, तो उनसे शिक्षा ली।
3: जी,
4: तो बस यही सब रहा।
3: जी, तो क्या आज आप हमारे प्रोग्राम में कोई अपने द्वारा लिखा हुआ गीत सुनाना चाहेंगे?
4: जी जी, बिल्कुल।
3: जी, स्वागत है।

0: अच्छा, अन्य कोई ऐसी सलाह जो आप हमारे युवा साथी को देना चाहें जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए?
1: एक्चुअली म्यूजिक को आप सिर्फ म्यूजिक के नजरिए से ही नहीं देख सकते, ये आपको मेंटली भी आपको फिट रखता है, डिप्रेशन से दूर करता है, और म्यूजिक में भी बहुत स्कोप है। मैं आज की यूथ से गुजारिश करना चाहूंगा जो म्यूजिक में रुचि रखते हैं वो अपना ऐसे ही अपना कार्य करते रहें, और उनका जो भविष्य म्यूजिक के लिए होगा वो उज्ज्वल ही होगा।
0: जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: अभी आपने सुनी है बातचीत, और अब फिर से आपको लिए चलते हैं सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स की ओर, और देखते हैं कि ये कॉल हमारे किस श्रोता की लगी है। हेलो फ्रेंड्स।
3: जी नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
3: बात कर रहा हूँ
2: जी। कहाँ से फोन किया है आपने?
3: कुतुबखाना सब्जी मंडी बरेली से।
2: जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या करते हैं आप?
3: मैम मेरी शॉप है कुतुबखाने में, सब्जी मंडी में, कपड़े की, वहीं कपड़े बेचता हूँ।
2: तो आज आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे
3: आप? देखो आपका क्या आवाज आना पहले।
2: जी जी, तो हम आपको आपकी पसंद का गाना भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें क्या है कि अपने व्यस्त जीवन में से खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी होता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
3: मैम वैसे तो आजकल इसकी भाग दौड़ भरी जिंदगी में निकालना बड़ा मुश्किल हो चुका है लोगों के पास में, क्योंकि इतना प्रेशर है हर चीज का, व्यस्त हो चुके हम लोग, तो हमें कहीं ना कहीं छुट्टी लेना पड़ती है। इसमें हम जो है थोड़ा घूमने जाते हैं बाहर, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, मूड फ्रेश हो जाता है। हालांकि काम में भी देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए इस भाग दौड़ जिंदगी में।
2: जी जी, तो आप कहीं घूमने गए हैं?
3: हाँ बिल्कुल गए मैम, हम अभी तक नैनीताल भी हो जाए, अजमेर शरीफ भी होके आ चुके हैं।
2: जी, तो आज आपसे बात हुई, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको भी उम्मीद है अच्छा लगा होगा।
3: जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल माधुरी जी, बहुत अच्छा आपकी आवाज़ से अच्छा लगा, मैं तो आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लगा।
2: जी जी शुक्रिया। तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं चित्रा बात कर रही हूँ जी शाहजहाँपुर से।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपका फोन लगा है, कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। क्या करती हैं बताइए?
1: जी मैं सिलाई करती हूँ।
0: जी सिलाई आप करती हैं, क्या क्या सिल लेती हैं?
1: जी मैं सूट सलवार ट्राउजर और शरारे परारे सब सिल लेती हूँ।
0: तो आपने कहाँ से सीखी सिलाई?
1: जी मैंने सिलाई सेंटर से सीखी।
0: जी तो आप सिलाई कर लेती हैं, तो पढ़ाई आपने कहाँ तक की है?
1: जी पढ़ रही हूँ मैं भी।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक कौशल जो आपके अंदर है उसको भी निखार रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगी उन छात्राओं से, उन युवाओं से जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर उनके अंदर कोई हुनर है तो वो उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: जी जी मैं यही कहना चाहूंगी, पढ़ाई कर रहे हैं आप तो सिर्फ पढ़ाई पे भी रहना चाहिए और अपना काम भी करना चाहिए।
0: जी बहुत अच्छी बात आपने की है। तो आज आपका फोन लगा है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी मैं सुनना चाहूंगी कि हम सफर चाहिए उम्र भर चाहिए।
0: जी तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। फोन करने के लिए और आकाशवाणी के बरेली केंद्र से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक्स।

0: तो ये था सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स। और दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। दोस्तों हमने आपसे पूछा था कि कार बैटरी में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं जमुना प्रसाद, उत्तम सिंह जंगेल, मोहम्मद फरमान, सुरेश खुराना, प्रभाकर गुप्ता, विष्णु मिस्किन, हीरामणि वर्मा और ओमपाल गंगवार। तो दोस्तों ये था सवाल और जवाब। और दोस्तों आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-25-17-200। साथियों प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है हर संडे को दोपहर 1 बजे से, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी गीत आप सुन सकते हैं। तो फिलहाल आज का ये सफर बस यहीं तक। अपनी रेडियो दोस्त माधुरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे माधुरी लोधी के साथ युववाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 6:30 और 28 सेकंड हुए हैं और इसी समय के साथ लीजिए अब प्रस्तुत है ग्राम जगत।

सब भैया बहनों को आपके भैया तेजपाल की राम राम। और सुनाओ भैया बहनों, कैसे हाल चाल हैं? उम्मीद करते हैं कि हमारे सब भैया बहन स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे से काम धाम को करते होंगे। इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमें अपने व अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखने होगा, क्योंकि इस मौसम में मच्छर मक्खियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण जो है संक्रामक बीमारियों के होने को खतरा बन रहता है। और भैया बहनों, आज है दिन है रविवार को, और आज के दिन हमारे भैया बहनों को इंतजार रहता है उनके मनपसंद कार्यक्रमों पर आधारित, मनपसंद लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकमंजरी का। और मैं आपका भैया तेजपाल कार्यक्रम लोकमंजरी लेकर हाजिर हो चुका हूँ। भैया बहनों, मनोरंजन तो हम सब करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा है जो कर लेते हैं अपने भैया बहन से, जिसको विषय है सरकारी योजनाओं को लाभ उठाएं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले अपनी पात्रता के अनुसार सही योजना की पहचान करें, समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका हमारे भैया बहन लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये बहुत सी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे भैया बहन समय रहते जागरूक होकर उठा सकते हैं। कृषि योजनाओं के लिए किसान पंजीकरण अवश्य कराएँ, पात्रता के अनुसार दस्तावेज तैयार करके किसी भी जनसेवा केंद्र या सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। भैया बहनों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकमंजरी, और इस कार्यक्रम में हमारे कुछ भैया बहन हैं जो अपनी फरमाइश हमको लिखकर भेजते हैं। तो पहली फरमाइश हमको मिली है चरडोगरी पिपरिया जिला कबीर।

0: लिख रहे हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू, माया साहू, कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, और जिला बदायूं ग्राम दूनेनगर से लिख रहे हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदेश, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता, अंतिमा व समस्त कठेरिया परिवार, ग्राम करेली भिंडी मोहल्ला बरेली से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, दिलदार अहमद, मोहम्मद अर्स, मोहम्मद आजिस। तो भैया बनो इन सब की फरमाइश पर सुन लेते हैं ओम प्रकाश भैया की आवाज में जो ढोला सुमिरन।
1: हरि का नाम जिन सारी।

अल्लाह मैं बस रही द्वारिका, तीन लोक से न्यारी के है गुल्लू में सब ग्वाल बाल और ब्रज की सखियां सारी रेखे, बेगम मैं मृग भान तुलारी और राधिका प्यारी है के बादशाह में ब्रज

भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश भैया व उनकी साथियों की आवाज़ में ढोला। और अगले लोकगीत को सुन की फरमाइश हमको मिली है, मरहरा दरवाज़ा एटा से लिख रहे हैं नबी हसन अब्बासी, अनम यसफ, नावेद हसन अब्बासी, रसीद बारसी, शहनाज अब्बासी, सोहेल हसन अब्बासी। जिला संभल, तहसील चंदौसी, ग्राम खुशालपुर से भरत सिंह, रामवीर सिंह। गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम। कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से लिख रहे हैं अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरहुई, स्वाति। ग्राम सिरौंधी, अंगतपुर टावर के पास मीरगंज बरेली से जाहिद सैफी, समीर सैफी, सोहेल साहेल और मुनिंद्र शर्मा पंडित जी। तो भैया बहनों, इन सब की फरमाइश पर सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत माधुरी शर्मा की आवाज़ में, जिसके बोल हैं जल भरे नवेली नार बिजुरिया चमक रही।

जल भरे नवेरी नार बिजुरिया चमक रही, माधुरी शर्मा की आवाज़ में सुन रहे थे अभी हमारे भैया बहन जो प्यारों से लोकगीत। उम्मीद करते हैं कि सब भैया बहन उनको पसंद आओ हो। भैया बहनों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक मंजरी और अगले लोकगीत को सुन की फरमाइश हमको मिली है नाज रेडियो क्लब बरेली से निसार अहमद अंसारी, मजहबी निसार, बेटी नुजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, सलीम राजा और पप्पू भाई, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ व उनके समस्त मित्रगणों ने, धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से लिख रहे हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, और ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शिखा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा व समस्त मेहरा परिवार ने, ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, कस्बा कोयलड़िया नवाबगंज बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन टेलर, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य। तो भैया बहनों, इन सब की फरमाइश पर सुन लेते हैं आवो जो प्यारो सो लोकगीत जिसके बोल हैं यमुना के तट पर आए जइयो नटखट नंद दुलारे, या कुछ स्वर्द हो चेतराम वर्मा जी ने। तो आओ भैया सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

भैया बहनों, अभी आप सुन रहे थे चेतराम वर्मा जी की आवाज़ में जो प्यारो सो लोगी, जिसके बोल थे यमुना के तट पर आ जाइयो वो नटखट नंद दुलारे। और अगले लोकगीत को सुन की फरमाइश हमको मिली है कस्बा कोलड़िया नवाबगंज बरेली से राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन टेलर, अनुज अनमोल, कमलेश तुलाराम, अंकुश मौर्य। जिला पीतल नगरी ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। अलखनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन बरेली से लिख रहे हैं बेचेलाल गंगवार, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, गुड्डी देवी, इला देवी, संजय अग्रवाल, राज बर्फा देवी, सुनील यादव, अश्वनी कुमार, दयाराम मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित, बाबू भाई, रमेश चंद्र सैनी व समस्त मित्रगणों ने। ग्राम मीरापुर फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली से लिख रहे हैं सूरज शर्मा, महावीर श्रीवास्तव, पप्पू श्रीवास्तव, अतुल, सनी, आदित्य, सुमित, लक्ष्मी प्रधान जी, थान सिंह व समस्त ग्रामवासी। ग्राम करोड़ा तहसील मीरगंज जिला बरेली से फूल सिंह, जसवंत सिंह, सौरभ, गौरव, दीपक, सरदार सिंह, नन्हे, महावीर, धर्मदास, सोनू, संजीव, पिंटू, फौजी व समस्त ग्रामवासियों ने। तो भैया बहनों, इन सब की फरमाइश पर सुन लेते हैं जो सावन गीत, जिसके बोल हैं झूला कैसे झूलूं, आए नहीं सांवरे जी, और जाको स्वर्द हो सीमा और संजय ने। तो आओ भैया सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

भैया बहनों, और अब ज़्यादा समय ना बचो है कि अपने भैया बहनों को और मनोरंजन करावें। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने भैया तेजपाल को दियो अनुमति। भैया बहनों, राम राम।

0: अभी आप तेजपाल भैया के साथ सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। शाम के 7 बजे हैं और हम लेकर उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम जय जवान।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, ये कार्यक्रम जवानों को समर्पित है। समय समय पे हम सेना के जवानों को बुलाते हैं और उन्होंने किस तरह से सेना को ज्वाइन किया, वहाँ क्या क्या काम किया और इस समय क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें हम उनसे पूछते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और उससे हमारे आप सुनने वाले लाभान्वित होते हैं। इसी क्रम में हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है कैप्टन शेर सिंह बिष्ट जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
2: धन्यवाद सर।
1: सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आप मेडिकल कोर में रहे हैं और उसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल आपको कैसे आया और किस उम्र में आया, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि हाँ सेना को ज्वाइन करना चाहिए।
2: सर, मैं जब अपना स्कूलिंग में जब मैंने एनसीसी का कैडेट भी रहा हूँ
1: जी,
2: तो उसमें जो हमारे एनसीसी कैंप रखते थे, तो कैंप के दौरान जो हमारे जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर होते थे, जो भी हमको ले जाते थे अपने मिलिट्री एरिया में ले जाते थे, हम लोग उसमें रानीखेत में गए थे।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर रानीखेत में हमने भव्य परेड देखी वहाँ के जवानों की, तो उनकी उनका डिसिप्लिन, उनका यूनिफॉर्म देख के प्रेरणा मिली कि यार हमें भी जो है एक दिन फौज में जाना चाहिए। तो तभी से हमें दिल में ख्याल आया कि हम भी आर्मी ज्वाइन करेंगे। तो हमने तब से जो अपना शारीरिक जो है अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया और उसके बाद मेहनत की, तो दौड़ भाग किया, तो फिर आर्मी में भर्ती हो गए।
1: लेकिन अब इसमें बात आई होगी कि आर्मी ज्वाइन तो करना है लेकिन कैसे करें, कौन सा एग्जाम होता है या फिर कहाँ से ट्रेनिंग लें, तो इसके लिए आपने क्या किया?
2: उसके लिए सर हमारा जो बीआरओ अल्मोड़ा से भर्ती हुआ, तो हमारे जो पहले हमसे जो हमारे जो बड़े जो एल्डर होते थे वो जाते थे भर्ती के लिए, तो उनसे पूछते थे कैसे जाते हैं क्या जाते हैं
1: जी।
2: या जो हमारे आर्मी के जवान जो पहले छुट्टी आते थे उनसे पूछते थे सर आप कैसे अप्लाई किया क्या किया। उसमें क्या होता था कि आजकल ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, उसमें सीधे जाते थे बीआरओ में जाते थे, वहां पर जो सूचना लिखी रहती होती थी कि इन्हीं तारीख को भर्ती है और अपना सर्टिफिकेट लेके आप लोग 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेके आइए, तो सीधे लाइन में खड़े होते थे अपना सीधे वहाँ पर अपना नापतोल होती थी और अपना हाइट मेजरमेंट वेट का सब नापा। उसके बाद जो है मेडिकल हुआ तो टेस्ट के लिए डेट देते थे वो लोग, टेस्ट में निकलने बाद घर में फिर पोस्टमैन जो है कॉल लेटर लेके आता था,
1: कॉल लेटर,
2: और तब जाके हम सेंटर में रिपोर्ट करते थे।
1: तो पहली बार में आप सिलेक्ट हो गए?
2: मैं पहली बार में हो गया था सर।
1: अच्छा।
2: मैं सन 1987 में भर्ती हुआ था, तो उसी समय मैं 27 अक्टूबर को भर्ती हुआ था।
1: 27 अक्टूबर को
2: 1987
1: में। फिटनेस में क्या क्या देखा गया आपका?
2: फिटनेस में होता है सबसे पहले तो रनिंग होती सर,
1: रनिंग होती,
2: रनिंग करते हैं उसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, उसके बाद बीम खिंचवाते हैं।
1: अच्छा।
2: उसके बाद जो गड्ढा पार कराते हैं तो उसमें सब उसका स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक्सीलेंट गुड करके होता है, तो उस हिसाब से वो पूरा करना पड़ता है।
1: तो इसके लिए आपने जो फिजिकल फिटनेस के लिए आपने तैयारी की होगी, तो खुद से की या कहीं ज्वाइन किया था?
2: खुद से सर,
1: खुद से।
2: क्या था सर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई होते नहीं थे। उसमें क्या थे, हम लोग स्कूल पढ़ते थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे और सुबह पहले गाँव में

0: था गांव के, गांव में जो है बच्चों में एक कंपटीशन होता है, तो गांव के सुबह उठेंगे अपना सुबह अपना फ्रेश होके अपना सुबह गए दौड़ने के लिए, 4-5 चक्कर मारे और जो है बीम वीम खींचे अपना लकड़ी का ऐसे बांध के रंबरेली, तो उसमें आदमी फिट रहता था।
1: और तो उसके बाद AMC आपको मिल गया। अच्छा, आप बात करते हैं आपके आर्मी में जो आपने काम किया है उसकी बात करते हैं, किस तरह के आपके अनुभव थे अपने करियर के काम के दौरान आर्मी में, जो भी आपका रहा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही, और कोई ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहें।
0: आर्मी में सर मैं पहले तो हम मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, हमारा काम लड़ाई का भी काम है, दो लड़ाई होती है हमारे हमेशा, एक लड़ाई काम और दूसरा जवानों के साथ जो घायल हो जाते हैं उनको बचाने का काम,
1: इलाज
0: तो हाँ उनका इलाज। जो हम कहीं भी ट्रेनिंग होती है, पहले हमारी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी होती है, मरीज के साथ जो है प्रैक्टिकल भी होते हैं और बहुत काम करना पड़ता है, तो काफी इतना आदमी को मतलब इतना ट्रेनिंग देते हैं कि आदमी फुल्ली मतलब क्वालिफाइड हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग फिर आगे फिर जाते हैं सर, पूरे ट्रेंड हो जाते हैं सोल्जर, तो फिर हम जाते हैं अपने आगे बॉर्डर एरिया में, फील्ड एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर जो हमारी भी इन्फेंट्री बटालियन होती है जो लड़ाई की जो फौजें होती हैं
1: जी,
0: तो उनके साथ हमको फिर पोस्टेड किया जाता है। जैसे एक बटालियन है तो उसके साथ दो मेडिकल के होंगे, एक डॉक्टर होगा, तो उनके साथ हम पूरा अपना तैयारी के साथ उनके साथ 3-4 साल ऐसे उनके साथ रहते हैं पोस्टिंग, तो उन जवानों के साथ फिर हम वहाँ जाके उनके साथ उनके माहौल में ढल जाते हैं। जैसे कोई कुमाऊं रेजिमेंट है, डोगा रेजिमेंट है, या कोई सिग्नल यूनिट है, तो इनके साथ जो है फिर उनके कोई जाट रेजिमेंट है, तो उनके साथ फिर पूरा 3-4 साल रहते हैं। तो जवान के साथ चाहे कोई जवान कहीं हमने कहीं लड़ाई में जा रहे हैं, कहीं बॉर्डर से हमें पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं, या कहीं मिलिट्री के जो RR बटालियन है उनमें मिलिट्री के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल जा रहे हैं, तो उसमें हमारा एक मतलब एक नर्सिस्ट है जो AMC का बंदा जो होगा वो पक्का जाएगा,
1: पक्का जाएगा।
0: और उसका क्या होता है, डबल काम हो जाता है उसका। हमारे पास पूरा सामान है सर, हमारे पास राइफल भी है, एमिनेशन भी है, और अपना ब्लड प्रूफ जैकेट वगैरह, मतलब पूरी तैयारी है, वो सबके पास है। ये हमारे पास एडिशनल क्या था, हमारा मेडिकल प्रोफेशन का सामान होता पूरा।
1: जी जी, मतलब आप डॉक्टर भी हैं और सैनिक भी,
0: सैनिक भी है,
1: बिल्कुल डबल आपका प्रोफाइल।
0: तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी साथ में हम जवान के साथ जाते हैं तो उनको हिम्मत रहती है, एक प्रकार मैंने देखा, तुझे देखा क्या लड़ाई लड़ते हैं यार, हमारे साथ तो ये बिस्टर सर है या AMC के बंदे हैं, हमारे कुछ नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस होता है सर। बसरते गोली तो ये नहीं सोती कि बंदा AMC का है या कोई जो जवान इन्फेंट्री का है, गोली तो जहाँ जाएगी जो छोड़ेगी नहीं, तो उनके साथ इतना घुल मिल जाते हैं हम लोग, उनको विश्वास था कि मेरे साथ जो है डॉक्टर साहब हैं या मेरे साथ नर्सिंग असिस्टेंट हैं,
1: कुछ भी होगा तो डॉक्टर साहब
0: बचा लेंगे,
1: बचा लेंगे।
0: तो ऐसे जो है फिर एक बार हमारा कोई लेक्चर चल रहा था, तो हम लेक्चर भी लेते हैं उनको, जैसे जवानों को फर्स्ट एड के बारे में सिखाते हैं, अपना शरीर हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, हाइजीन सैनिटेशन ये बारी चीजें उनको मेंटेन करते हैं। दूसरा भी हमारा एक्सपीरियंस रहा, फिर मैंने AMC का एक सोल्जर होने के नाते फिर मैंने पैरा कोर्स भी किया सर।
1: अच्छा,
0: पैरा कोर्सिंग किया, पैरा जो ड्रॉपिंग करते हैं, तो पैरा के साथ मैं मेरे फर्स्ट पैरा में रहा पहले, फिर 21 पैरा SF जो कमांडो है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उनके साथ में हम रहे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो उस समय मैं जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें मेरा एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट में लाइफ का सोचता हूँ अपना,
1: उस लड़ाई में थे,
0: उस लड़ाई में एकदम एक्टिव रूप से मैं था, उस समय 21 पैरा SF जो कमांडो यूनिट है उसमें पोस्टेड था। उसमें जब हम लड़ाई में गए तो मुझे वहां पर पहली बार लड़ाई देखी थी।
1: अच्छा,
0: जो लड़ाई होती है दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर जो है जाते थे, जैसे अपना टाइगर हिल जो कैप्चर किया था, कुछ पहाड़ियां और थी, मास्को वैली है, टोरिन है, 2487 ऐसे पहाड़ियों के नाम है, तो वहां पर जनजीवन कुछ है नहीं, पेड़ पौधे कुछ है नहीं,
1: बिल्कुल,
0: तो पहाड़ियां में सिर्फ गोली मार मार के पहाड़ियों को मतलब ऐसे लाल कर रखा है, तो वहां पर काफी उस समय काफी कैजुअल्टी भी हुआ और लोगों में उत्साह भी था, डर भी था, तो इस टाइप से वहां पर हमारे को भी मतलब बहुत जगह जाने का टाइम मिला। तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी वहां आए थे, उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला। तो लड़ाई वहां पर ऐसी थी कि जवानों के साथ जाते थे तो उनको हौसला रहता था कि हमारे साथ जो है मेडिकल के डॉक्टर साहब हैं, तो हम लोग डॉक्टर साहब ही बोलते सबको, तो उनके साथ रहते थे और अपना भी ध्यान देते थे। तो जब वहाँ पर कम से कम 2-3 दिन के लिए जाते थे कि हमको इस पहाड़ी को कैप्चर करना है, तो पहाड़ी को कैप्चर कर लिया, जैसे उसमें कमांडो वाले यूनिट भी गई, इन्फेंट्री भी गई, जॉइंट ऑपरेशन बोलते हैं उसको, तो बहुत सारे होते हैं जो हमारे बड़े कमांडर होते हैं उनके अंडर में होता है सर काम। तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा अनुभव लगा कि मुझे जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि यार मैं तो जाट का हूँ, वो सिग्नल का हूँ या मैं दूसरी यूनिट का हूँ, वहाँ पर क्या होता है हम पूरा एक फैमिली, एक फौज के हैं, हमारा मकसद है कि हमारा देश है हिंदुस्तान,
1: बिल्कुल
0: हैवी, उसको बचाना
1: बिल्कुल हैवी।
0: वहां पे ये नहीं था सर कि

0: मैंने आपके उधर से आपके को लंगर से क्या खा लिया,
1: हाँ
0: अब उनके लंगर से क्या खा लिया, कुछ नहीं बोला सर, इतना ही होता सर अपना। सब हर एक आदमी बोलता सर आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन से नोट के हो, सर अपना ध्यान देना और हिम्मत रखना।
1: हिम्मत
0: एक दूसरे
1: रखनी।
0: को खासे हमारे जो जूनियर आते थे बच्चे, जोश बहुत होता है उनमें, थोड़ा
1: जी
0: उनको जब मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जहाँ जो हम जैसे ऑपरेशन बोलते हैं हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं, ऑपरेशन करके आए थे तो शाम के टाइम फिर वहाँ से 2-3 दिन जब ऑपरेशन करते हैं तो फिर 2-3 दिन उनको 1-2 दिन रेस्ट देते हैं, फिर उनको फिर दूसरी बहुत चढ़ाते हैं जैसे कि अपना अगले टास्क के लिए तैयार हो सके बंदा।
1: जी
0: तो ऐसे हम लोग रेस्ट में थे 1-2 दिन के लिए, तो हमारा एक वहाँ पर मंदिर प्रोग्राम होता था, तो मंदिर में सभी लोग करीब करीब आते थे, लड़ाई का माहौल था, सभी भगवान से प्रार्थना करते थे कि हम लोग जीतें और हमारे जो पहाड़ियाँ जो उन्हें कब्जा करेंगे दुश्मन वो हमको मिले और हम चीटा अपने इनोट के साथ अपने बच्चों के साथ जाएं।

0: करेंगे तो उसमें वो हमको मिले
1: हम्म।
0: और हम चीटा अपने इनोट के साथ अपने बच्चों के साथ जाएं,
1: बिल्कुल
0: ये सब करता था।
1: हम्म।
0: तो उस समय हमारे पर सर एक वहां से 3-4 गोले पड़े पाकिस्तान के,
1: अच्छा
0: हमारे कैंप के ऊपर।
1: हम्म।
0: तो उसमें 22 कैजुअल्टी हुआ था,
1: अच्छा
0: 22 में से 7 ऑन द स्पॉट वही
1: ढेर
0: हो गए थे। ऐसे जो हमारी गाड़ी होती फंस गई वहां जाके कहीं दूर जगह ले गए जहाँ फायर नहीं आता, तो वहां लेके उनको सबको एवैक्यूएट किया, सबको टेस्टिंग किया। कम से कम उसमें से सर 5 बंदों की जान तो बचाने का अवसर मिला,
1: अच्छा
0: जो एट ए टाइम जो हम उनको सही ट्रीटमेंट दे दिया,
1: बहुत बड़ी बात है,
0: बड़ा संतोष मिलता।
1: वाकई तो बड़ा काम है ही।
0: जो हम इनोट में जब वापस आए, जब अपने पटन वापस आए, तो उसमें हमारे पटन थी वहाँ आसाम में, वहां से आए थे हम लोग जहाँ भाई यार। तो जब वो बच्चे जो 4-5 जो जवान थे हमारे, वो ठीक होके जब आए तो अपने बच्चों को लेके आए वहाँ, तो वो बोलते हैं कि हमको जो है इस साथ में बचाया। तो मैंने कहा मैंने बचाया यार, परवाल ने बचाया, लेकिन हमको बहुत बड़ा दिल की इतनी आनंद की अनुभूति हुई, इतना संतोष मिला तेरे में, तो बहुत बड़ा विजय मिला सर हमारा कारगिल का। जब कारगिल लड़ाई करके आए तो दिल में एक वो जैसा हुआ कि हमने जो कसम खाई थी और जो हमने ट्रेनिंग किया, जो हमको सरकार ने इतना सब कुछ सुविधा दी, उसका मतलब थोड़ा सा हमने आज चुका दिया ये लगा सर।
1: जी वाकई फक्र की बात थी कि आपने, आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपकी जो कैपेबिलिटी थी वो आपने अच्छी तरह से किया। और हम उम्मीद करते हैं कि, अच्छा इस समय आप क्या कर रहे हैं?
0: इस समय सर मैं अपना ये सैनिक कॉलोनी चिराडा में रहता हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो मैंने वहाँ पर एक बीइंग जो मेरे प्रोफेशनल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हेल्थ केयर सेंटर खोल रखा है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो उसमें मैं मैक्सिमम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद करता हूँ सर।
1: क्या बात है।
0: जैसे हमारे जवान है या गरीब तबके के बंदे हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को शुगर है, लोगों को पता नहीं है, गाँव में है वो, तो उनको जहाँ मोटिवेट करता हूँ आपको बीपी है या शुगर है या इस तरह से खान पान ठीक करो, तो हिसाब से जो भी आता है बंदे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क, तो मेरा ये बिना ये समाज सेवा बोलिए या मेरा दायित्व समझिए, जो गरीब लोग हैं जिसके पास कोई ज्यादा फाइनेंशियली वो नहीं है, उनको भी मैं कम से कम मैं जितना हो सकता है अपने से पूरा उनको मैं लुकआउट करने की कोशिश करता हूँ सर। ये अपना बहुत बड़ा पुण्य समझता हूँ।
1: बिल्कुल वाकई ये पुण्य का काम है ही। और पूरा देश जो है आराम से सो पाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी की वजह से, क्योंकि सरहद पे कोई ना कोई तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए।
0: बहुत जी सर।
1: सर आपको सैल्यूट है और आर्मी के सभी जवानों को जो उससे जुड़े हुए हैं उन सबको सैल्यूट है। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: कोई भी गाना, देशभक्ति का गाना।
1: देशभक्ति का कोई भी गाना। बिल्कुल भी। तो इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने जीवन की अनुभव से साझा करने के लिए, सभी श्रोताओं से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम जय जवान में आप सुन रहे थे कैप्टन शेर सिंह विष्ट से मिथिलेश श्रीवास्तव की बातचीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
1: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।

यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित अपने गंतव्य क्षेत्र तक पहुंचें। अपने और अपने से आगे वाहन के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें। सड़क पर वाहन चलाते समय अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखें। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब से कुछ ही देर में सुनिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित

0: जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7 पर कॉल करें।
1: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: को तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: तेरी वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा। मानदेय बढ़ाकर किया 3,000 रुपए। रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा। लाइव कंट्रोल रूम के जरिए की गई निगरानी। जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन, श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों को सराहा। और कल सावन के आखिरी सोमवार को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम। कई जिलों में लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले करीब 3,54,000 रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। साथ ही साथ हर साल 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि इन सुविधाओं के साथ ही अब दुर्घटना या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में रसोइया और उनके परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिधान के लिए मिलने वाली राशि भी 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है।
1: हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं।
0: स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 91 बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के झंडेवाला पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्री योगी ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की यादों को जीवित रखने के लिए प्रदेश सरकार स्मारकों के निर्माण का काम जारी रखेगी।
2: राज्य सरकार उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों अमर बलिदानियों की स्मृतियों के लिए उनके स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरंतरता देगी। उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों पे छाजन लगाने, पार्क को नव निर्माण करने, उन्हें सुरक्षित करवाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत वर्षों की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्देश दिया है। 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाएं एक सहयोगी के साथ मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कल देर शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को लेकर परिवहन विभाग, पुलिस और

0: शासन को मिलकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 आज पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो गई। ये परीक्षा प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्र पर कराई गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के 2587 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा के लिए 1,602 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इसमें से 79.29% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 20,830 अभ्यर्थी यानी 20.71% लोग अनुपस्थित रहे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए 500 सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट और 14,696 अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया था। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी 10,674 CCTV कैमरों और लाइव कंट्रोल रूम के माध्यम से की। लखनऊ के एक केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया, जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ आ रहा है। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल युवाओं और मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उनसे संवाद करेगा, वहीं VLO से उनके अनुभव और सुझाव साझा करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और उनका आशीर्वाद लिया। जापानी मेहमानों का मंदिर पहुंचने पर रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। जापानी मेहमानों ने भव्य और दिव्य बाबा विश्वनाथ धाम की आध्यात्मिक आभा को भी निहारा। प्रतिनिधिमंडल ने काशी में आध्यात्मिक विरासत और आधुनिक विकास के समन्वय को करीब से देखा और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। कल सावन के आखिरी सोमवार के सिलसिले में प्रदेश भर के प्रमुख शिव मंदिरों और शिवालयों में विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं प्रशासन ने प्रमुख मंदिरों सहित राजमार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात को नियंत्रित करने का बंदोबस्त किया है। कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मुरादाबाद अमरोहा के ब्रजघाट तक करीब 60 किलोमीटर रोड को कल तक जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि हाईवे पर 106 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं।
2: सावन के आखिरी सोमवार के परिपेक्ष में आज शुक्रवार को ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सारे जो भारी वाहन है वो ऑलरेडी डायवर्ट कर दिए गए हैं। रास्ते को एक तरफ कर दिया गया है, जहां पर एक तरफ कावड़ चल रही है, दूसरे तरफ पर जो हल्के वाहन है वो अभी के लिए चल रहे हैं। आगे कावड़ की संख्या के आधार पर इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से हाईवे को इसमें संचालित करना है। यदि हम कावड़ यात्रा के लिए फोर्स की तैनाती की बात करें तो जिले में जरूरी या आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी जो फोर्स है वो कावड़ की यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने के लिए तैनात किया जाएगा।
0: काशी में भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान वाहनों की आवाजाही से भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट कंट्रोल लागू किया है। आगामी 26 अगस्त को मिलाद उन नबी मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले जलसों और जुलूस के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से सेंटर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
3: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की जानिब से रबी अव्वल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि मुसलमानों से अपील की गई है कि 12 रबी अव्वल यानी मिलादुन नबी 26 अगस्त को है। ये मौका वो है उस दिन बड़े पैमाने पर जलसे होते हैं और 12 रबी अव्वल को जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस में इस बात का ख्याल रखें कि जो रास्ते मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं रास्तों से जुलूस निकालें और जुलूस में कोई भी ऐसा नारा ना लगाएं जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हों। इसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रूट मुकर्रर किया गया है उसी पर सिर्फ जुलूस निकाला जाए।
0: राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से

0: प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। संतकबीरनगर जिले में घाघरा सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से धनघटा क्षेत्र के करीब 18 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रीय विधायक गणेश चंद चौहान ने कहा कि प्रभावितों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
1: गांव में पशु चिकित्सक, उन गांव में अन्य वस्तुओं की चिंता करने का काम किया जा रहा है। उन गांव में जाकर उनसे जानकारी लिया जा रहा है, उनके बारे में कहीं से कोई असुविधा न हो, इस पर पूरी तरह से सक्रियता बनाए।
0: राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस राशि सुविधा की घोषणा। मानदेय बढ़ाकर किया 3,000 रुपए। रक्षाबंधन पर 27 अगस्त की रात से 28 अगस्त की रात तक महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के 12 जनपदों के 229 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा। लाइव कंट्रोल रूम के जरिए की गई निगरानी। जापानी प्रतिनिधि मंडल ने आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन। श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों को सराहा। और कल सावन के आखिरी सोमवार को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम। कई जिलों में लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
4: कहाँ?
5: एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। लीजिए अब प्रस्तुत है जनमंच।
9: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ मिथिलेश योगेंद्र और जनमंच कार्यक्रम में जैसा कि आपको पता है हर बार किसी न किसी खास विषय पे हम आपके बीच से ही कुछ लोगों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके विचार जानते हैं, अनुभव जानते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में 3 नारी शक्तियां हैं, तो आइए जानते हैं उनका परिचय, कौन है और क्या करती हैं। तो सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में कुछ।
10: मेरा नाम सारा मरियम है।
9: और क्या करती हैं?
10: मैं एक हाउसवाइफ हूँ।
9: हाउसवाइफ हैं
10: जी।
9: ठीक ठीक, और आप बताइए।
11: मेरा नाम महनाज अब्बास है और मैं हॉस्पिटल में आयुष्मान का काम करती हूँ।
9: हॉस्पिटल में आयुष्मान का?
11: जी।
9: अच्छा, मतलब जो जितने मरीज आते हैं उनकी हेल्प करती हैं, आयुष्मान कार्ड में जो भी डिटेल्स होती हैं,
11: अप्रूवल उनका जी।
9: क्या बात है। और आप?
12: मेरा नाम फेमिना हुसैन, मैं नर्सिंग करती हूँ।
9: नर्सिंग करती
12: जी है। और स्टूडेंट भी हूँ, स्टडी भी चल रही है
9: नर्सिंग की ही।
12: जी।
9: अच्छा अच्छा, क्या बात है। हमारे पास 3 बेहद खास मेहमान हैं और एक तरह से आप हाउसवाइफ हैं और आप 2 लोग हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, नर्सिंग। और इंटरेस्टिंग तो खैर आपका भी है, आयुष्मान की बात की आपने। तो पहले तो हमारे श्रोताओं को आप खुद आयुष्मान के बारे में कुछ बता दीजिए। आयुष्मान कार्ड कैसा है, आयुष्मान भारत योजना क्या है?
11: आयुष्मान एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार की तरफ से चली है जो गरीबों की भी मदद करती है, जिसमें फ्री इलाज होता है, सारी सुविधाएं फ्री होती हैं।
9: तो क्या ये सरकारी अस्पताल में ही होता है या प्राइवेट में भी?
11: प्राइवेट में भी होता है, जो हॉस्पिटल स्कीम ले ले।
9: जो स्कीम ले ले
11: जी।
9: तो उसमें मान लीजिए किसी को फायदा उठाना है तो क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, एकदम शुरू से बता दिए, ताकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं। आयुष्मान आजकल के समय में बहुत लोगों के पास होगा भी, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे ये क्या है, तो एकदम शुरू से बताइएगा।
11: आयुष्मान के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, आयुष्मान ऑपरेशन कराने के लिए आयुष्मान कार्ड होना चाहिए।
9: तो और कार्ड कैसे बनेगा?
11: वो कार्ड डिस्ट्रिक्ट में बनता है।
9: और उसके लिए क्या चाहिए होगा?
11: उसको डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड होना चाहिए, उसका आधार कार्ड और राशन कार्ड
9: भी होना चाहिए।
11: राशन कार्ड तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट
9: है जी।

0: ये होने पे फिर आय की भी सीमा है?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है
0: अच्छा, किसी
1: इसमें।
0: भी आय वर्ग के
1: जी
0: लोगों का
1: जी
0: आयुष्मान कार्ड में बन सकता
1: जी
0: है।
1: बन सकते
0: चलिए,
1: हैं।
0: अब बात आती है कि जैसे हॉस्पिटल में कोई गया और आयुष्मान कार्ड के जरिए ही उसको इलाज करवाना है, तो कैसे क्या करना होगा?
1: तो सबसे पहले उसको अपना आयुष्मान कार्ड देना है, जिसे
0: अच्छा,
1: पीएमजे लेटर भी कहते हैं।
0: पीएमजे लेटर,
1: जी,
0: अच्छा ठीक।
1: और राशन कार्ड देना है और आधार कार्ड। ये तीनों चीजें मिलने से उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है,
0: अच्छा
1: सबसे
0: अच्छा
1: पहले ये होता है। फिर उसको मतलब फिर हो
0: रजिस्ट्रेशन
1: गया,
0: होगा
1: जी
0: फिर?
1: रजिस्ट्रेशन हो गया, वो किसी और हॉस्पिटल में नहीं जा सकता
0: अच्छा
1: इस,
0: अच्छा उसी हॉस्पिटल में
1: जी
0: होगा
1: मतलब वो उस टाइम के लिए इसमें
0: उस
1: हो
0: टाइम के
1: गया।
0: लिए। हाँ ठीक है।
1: फिर उसके बाद अप्रूवल, जब ऑपरेशन का टाइम आता है तो उसको अप्रूवल दिलाने के लिए उसके सारे नोट्स चाहिए होते हैं,
0: अच्छा
1: क्लिनिकल नोट्स
0: हाँ, वो
1: वगैरह।
0: तो
1: जी,
0: एक
1: वो सारे उसमें
0: सारे
1: डॉक्यूमेंट्स।
0: डेंजर्स का कराया
1: जी
0: जाता है,
1: जी
0: ठीक है। उसके बाद फिर उनको पहले
1: जैसे
0: आप,
1: गवर्नमेंट अप्रूवल वो कर देती है,
0: अच्छा
1: अप्रूव कर देती है,
0: उसके बाद
1: वैसे ही उनका
0: अच्छा,
1: ऑपरेशन होता है स्टार्ट।
0: तो क्या इनके आयुष्मान कार्ड के धारकों के लिए हॉस्पिटल में बेड आरक्षित होते हैं या फिर जो भी पहले आए उसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ है?
1: नहीं, आरक्षित होते
0: आरक्षित
1: हैं
0: होते हैं, कुछ
1: जी।
0: कुछ जो है बेड्स उन्हीं के लिए होते हैं।
1: नहीं, कोई
0: हाँ
1: भी बेड है, मतलब जैसे नॉर्मल,
0: कोई भी बेड उनको
1: जी
0: मिल
1: जी
0: जाएगा,
1: नॉर्मल जैसे हर पेशेंट आता है वैसे
0: उनको
1: उनको भी
0: ऐसे
1: मिल
0: ही
1: जाएगा।
0: मिल जाएगा।
1: जी
0: ठीक। चलिए, ये बात तो रही हमने कार्यक्रम की शुरुआत में, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी दे दी तमाम श्रोताओं को। और बात आते हैं, जैसे आप तीनों हमारे स्टूडियो में आई हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इस समय महिलाओं की स्थिति किस तरह से देखती हैं आप समाज में? सबसे पहले आप मरियम जी, आप बताएं, खासतौर पे हाउसवाइफ के रूप समाज में महिलाओं की कैसी स्थिति है?
2: समाज में इस टाइम महिलाओं की स्थिति ये है कि थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए काम के लिए। अपना जो
0: हाँ,
2: हाउस वाइफ है तो वो काम भी कर सकती है,
0: काम भी कर
2: काम भी
0: सकती
2: कर,
0: है,
2: घर का भी करे और इंडिपेंडेंटली जॉब भी कर सके,
0: जॉब
2: वो
0: भी कर सकती
2: जॉब
0: है,
2: भी कर सकती
0: थोड़ी
2: है।
0: छूट मिले।
2: जी जी छूट
0: जैसे अपनी बात करें, आपके बारे में बात की जाए,
2: जी
0: तो कई बार होता है कि घर के कामकाज से ही समय नहीं मिल
2: जी
0: पाता
2: जी
0: है,
2: जी
0: आपको भी समय नहीं मिल
2: जी
0: पाता
2: जी
0: होगा,
2: जी
0: तो क्या आप सोचती हैं कि हाँ मैं बाहर भी कुछ काम करती?
2: जी अभी फिलहाल मैं सोचती हूँ,
0: सोचती हैं
2: और जी
0: लेकिन समय ही नहीं मिल
2: समय
0: पाता।
2: नहीं मिलते क्योंकि अभी फिलहाल ही मेरी शादी हुई है,
0: अच्छा,
2: ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है
0: ज्यादा
2: मेरी,
0: टाइम नहीं हुआ,
2: ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 ईयर हुआ है मेरी
0: 1 ईयर
2: शादी,
0: हुआ
2: वन
0: है,
2: ईयर हुआ है।
0: तो मतलब उस कुछ समय बाद
2: तो
0: आप
2: जी जी जी फिलहाल
0: सोचेंगी, तो
2: फिलहाल
0: फिर
2: आगे
0: आपने
2: मैं
0: पढ़ाई
2: सोचूँ।
0: पढ़ाई क्या की है?
2: मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया
0: फैशन
2: है
0: डिजाइनिंग की है, क्या
2: जी,
0: बात है, तो इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ से किया
2: मैंने
0: आपने?
2: दिल्ली से फैशन डिज़ाइनिंग किया है।
0: जो निफ्ट है वहां से
2: नहीं
0: किया?
2: नहीं नहीं
0: अच्छा, किसी और से किया,
2: किसी और से
0: चलिए
2: जी
0: कोई नहीं। तो फैशन डिजाइनिंग के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए, क्या है और इसमें करके फिर क्या कर सकते हैं लोग?
2: फैशन डिज़ाइनिंग भी ये है कि आप अपने अलग अलग डिज़ाइंस बना के
0: हाँ
2: उनको शो पर रैंप पर उतार सकते हैं, आगे जाके डिज़ाइंस
0: हाँ
2: बनाना, अपना अलग अलग तरह के अपना यूनिट खोल सकते हैं आगे जाके, अपना थोड़ा सा अपना ये एस्टेब्लिश हो सकता है। उसमें यह है कि आप अपना अलग से कुछ भी कर सकते हैं,
0: जैसे
2: डिज़ाइन
0: बुटीक।
2: जैसे जैसे बुटीक खोल सकते हैं अपना, किसी भी एरिया में जाके स्टिचिंग का अलग से अपना ये हो सकता
0: ये
2: है।
0: हो सकता है,
2: जी
0: तो क्या ऐसा सोच रही हैं करने का?
2: जी जी मैंने सोचा है अपना अलग से यूनिट खोलने का।
0: तो इसमें कैसे क्या किया जा सकता है? जैसे आपने, आप एकदम
2: जी
0: शुरुआत कर रही हैं तो आपने क्या प्लान किया है, कैसे? पहले तो सबसे पहली चीज होती है कि पैसा, जो
2: सबसे
0: भी
2: पहले
0: कुछ
2: जी जी जी
0: व्यवस्था।
2: जैसे इन्होंने अभी पहना बुरखा पहना हुआ है तो हम इस टाइप के देखेंगे कि ये किस तरह के कपड़े पहनती हैं, ये हमें ये भी देखना होता है उसमें। अब ये भी है जैसे कि थोड़ा सा वो खड़ी हुई है, जैसे वो एंकर हैं तो एंकर हमें हमें बताने देखना वगैरह कि एंकर किस तरह के कपड़े पहनती है,
0: किस
2: अब
0: तरह?
2: बैकग्राउंड कैसा है, पीछे का
0: अच्छा,
2: क्या चीज़ है, हेयर
0: तो
2: कैसे होने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए उसका,
0: ये सब कुछ
2: ये
0: फैशन
2: सब उस
0: टेक्नोलॉजी में होता
2: फैशन
0: है?
2: में आता है। ये सब
0: अच्छा, मतलब सिर्फ कपड़ों तक सीमित
2: कपड़ों
0: नहीं
2: तक
0: है,
2: से
0: सीमित
2: नहीं है,
0: नहीं
2: हर
0: है,
2: चीज़ एक
0: पूरी
2: एक चीज़
0: टेक्नोलॉजी
2: पूरी
0: है।
2: टेक्नोलॉजी।
0: जी,
2: जी
0: अब इसमें जैसे अब आप बिजनेस शुरू करेंगी
2: जी
0: तो कितने पैसे लगने की इसमें उम्मीद है?
2: इसमें कम से
0: कम
2: कम
0: से कम
2: आप 1 लाख,
0: 1 लाख चाहिए
2: जी
0: उसमें,
2: जी जी वन
0: उससे आप
2: लाख
0: शुरुआत कर
2: वन
0: सकते
2: लाख
0: हैं।
2: एक तो होना चाहिए आप ही के हाथों, हैंड में होना चाहिए,
0: हाँ
2: एक
0: हाँ
2: होना चाहिए पीछे
0: हाँ अच्छा,
2: आपके स्पैर में होना चाहिए
0: हाँ हाँ
2: 1 लाख रुपीज़ की, कि एटलीस्ट अगर कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो हमारे पास होनी चाहिए।
0: सही बात है।
2: जी
0: तो बिल्कुल ये व्यवसाय
2: जी जी
0: आप शुरू करने की मंशा भी रखती
2: जी
0: हैं, तो इससे बहुत सारे हमारे श्रोताओं को एक उम्मीद भी जगी।
2: जी
0: आपने
2: जी
0: शुरू में
2: जी
0: बताया कि आप हाउसवाइफ हैं,
2: जी
0: तो यही बात है, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें छुपी हुई प्रतिभा है,
2: जी
0: उसको जाहिर, जैसे आपने

0: इस मंच पे आके भी जाहिर नहीं किया, पहली बार भी जाहिर नहीं
1: जी
0: किया।
1: जी जी
0: तो आप क्या मानती हैं, आप जैसे आप बता रही थी आप भी हॉस्पिटल में काम करती नर्सिंग,
1: जी
0: तो अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे आपने ये जॉब हासिल की?
1: बेसिकली बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनने का शौक था,
0: अच्छा
1: लेकिन थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरी स्टडी वैसे हो नहीं पाई।
0: अच्छा हाँ MBBS वगैरह नहीं हो
1: जी
0: पाई,
1: जी तो
0: ठीक है।
1: अभी थोड़े टाइम पहले मतलब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी, थोड़ा मेडिकल लाइन में गई,
0: अच्छा
1: सीखा वहाँ से थोड़ा काम। 2 साल हो गए मुझे मेरी इंटर्नशिप करते हुए।
0: अच्छा
1: अब
0: अच्छा
1: उसके बाद मैंने अब BAMS में एडमिशन लिया है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी अब मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो गई फिर से।
0: कंटिन्यू हो गई, मतलब
1: जी
0: ये बस आयुर्वेदिक वाला?
1: BAMS मेडिकल लाइन वाला, गायनी
0: अच्छा
1: गायनिकोलॉजिस्ट।
0: गायनी वाला, अच्छा ये
1: जी
0: बात है। और आप नर्सिंग का काम कर रही हैं,
1: जी
0: तो वो
1: उसको दो
0: आपने
1: साल हो
0: उसके
1: गए।
0: लिए कोई कोर्स आपने किया या फिर कहीं से
1: उसके
0: सीखा
1: लिए
0: है?
1: मैंने BSC करी थी, उसी के थ्रू हो गया
0: BSc इन
1: था।
0: नर्सिंग,
1: नहीं, नॉर्मल BSC
0: नॉर्मल
1: ऑनर्स की
0: BSc।
1: थी।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो फिर नर्सिंग में बेसिकली देखा जाए तो हर कोई जानता है कि हाँ भाई नर्स वो होती है ना, लेकिन बेसिकली नर्सेज के क्या क्या चैलेंजेस हैं ये बताइए।
1: बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं, पेशेंट को हैंडल करते हैं अपने तरीके से, अपना 100% देते हैं, लेकिन जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि जैसे हम उनकी केयर ढंग से नहीं कर पा रहे
0: नहीं
1: हैं।
0: कर रहे हैं।
1: अक्सर वो लड़ते हैं,
0: हाँ
1: एग्रेसिव हो जाते हैं, तो हमें पेशेंस रखना पड़ती है बहुत ज़्यादा, समझाना उनको, एक्सप्लेन करना है एक एक चीज़। उनको हम बताते हैं कि आपके पेशेंट अभी सेंसिटिव है, उससे दूर रहना है, वो उस
0: हाँ
1: चीज़ को गलत वे में लेके जाते हैं,
0: जी जी
1: तो अक्सर उनकी ट्यून भी चेंज होती है, अक्सर फाइट भी होने के चांसेस
0: सही
1: रहते हैं, तो उसको
0: बात
1: बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखने पड़ते हैं।
0: सही बात है। तो हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें जिन्होंने देर से रेडियो ट्यून किया है, कार्यक्रम चल रहा है जनमंच और हम बात कर रहे हैं तीन नारी व्यक्तियों से। हमारे बीच तीन लोग हैं, एक फैशन डिजाइनर हैं कहा जाए तो, और एक जो है हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारकों को हेल्प करती हैं, उनकी उनको सेवाएं देती हैं, हॉस्पिटल फील्ड से जुड़ी हैं। तीसरी जो शख्सियत हैं वो भी वो नर्सिंग से जुड़ी हैं और साथ में अभी मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे जो हॉस्पिटल में आप काम करती हैं, हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं इस समय, क्या महिलाएं इस फील्ड में मेडिकल के फील्ड में आसानी से जा सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं,
1: इजली
0: क्या क्या
1: बना
0: चुनौतियां
1: सकती
0: हैं?
1: हैं। चुनौतियां तो हर एक काम में हैं,
0: हाँ महिलाओं के लिए तो हर जगह है,
1: महिलाओं के लिए तो हर जगह है, क्योंकि उन्हें ये कहा जाता है तुम नहीं कर
0: तुम
1: सकती,
0: नहीं
1: तुम
0: सकती,
1: ये नहीं कर सकती।
0: आपको भी फेस करना पड़ा है,
1: जी करना पड़ता है,
0: करना
1: पर
0: पड़ता है, मतलब अभी भी करना पड़ रहा है।
1: अभी मेरी स्टार्टिंग ही है,
0: अच्छा अच्छा
1: 1 month हुआ है, मेरे दोस्त ने ही मुझे बुलाया है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: ठीक। और बात की जाए घर से पांव बाहर रख के कुछ अर्निंग के लिए जॉब करने के लिए, ये जो फैमिली से चुनौती भी सामना करना पड़ता है ऐसा भी
1: नहीं,
0: है,
1: मुझे ऐसा
0: फैमिली
1: कोई
0: सपोर्ट
1: भी,
0: है पूरा,
1: फैमिली को कोई प्रॉब्लम
0: कोई
1: नहीं, आप
0: प्रॉब्लम?
1: जॉब करिए मत करिए,
0: हाँ
1: जैसे आप मतलब मेरी जैसे लाइफ है मैं वैसे
0: वैसे जी सकती
1: जी
0: हैं,
1: मैं वैसे जी
0: सोसाइटी
1: सकती।
0: को
1: सोसाइटी से मुझे मतलब नहीं है।
0: मतलब नहीं। हाँ
1: जी
0: समाज वाले चाहे जो करें मैं वही
1: जी
0: करूंगी, तुम
1: मेरी
0: जिस
1: फैमिली
0: फैमिली
1: बस सपोर्टिव है।
0: सपोर्टिव बस।
1: जी
0: चलिए आपने यही फील्ड क्यों चुना?
1: मुझे इंटर्नशिप आई उसमें करनी थी, डाइटिशियन में, मैंने क्योंकि MSc
0: डाइटिशियन,
1: डाइटिशियन करा है, फूड
0: MSc
1: एंड न्यूट्रिशन।
0: डाइटिशियन किया आपने,
1: जी फूड एंड न्यूट्रिशन से, लेकिन बरेली में इसका बहुत कम वो है,
0: स्कोप कम है।
1: स्कोप बहुत कम है। लखनऊ में मैंने ट्राई करा है और दिल्ली में भी करा, लखनऊ में भी मेरी बात चल रही है,
0: अच्छा।
1: लेकिन वही है कि कल लौट के तो मुझे बरेली आना है, तो
0: हाँ
1: यहाँ पे उसका कोई स्कोप नहीं है,
0: सही बात है।
1: इसलिए।
0: तो डाइटिशियन का आपने MSc डाइटिशियन किया
1: जी
0: आपने,
1: फूड एंड न्यूट्रिशन से
0: तो कुछ आप इसके बारे में बताइए क्या है, कैसे हम लोगों को क्या डाइट रखनी चाहिए?
1: बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ऐसा फूड लेना चाहिए जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उनके बैलेंस डाइट में होना चाहिए नॉर्मली। तो ये तो सबसे ज़्यादा एग में होता है प्रोटीन
0: प्रोटीन
1: नॉर्मल,
0: ये भी
1: और
0: होता है।
1: एग तो हम लोग को डेली ही लेना चाहिए, ये तो नॉर्मली
0: हाँ
1: इंसान
0: लेकिन
1: में
0: कई
1: होता
0: सारे
1: है।
0: लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, एक तो नहीं
1: हाँ
0: मानते हैं या
1: जी
0: नॉनवेज,
1: जी
0: तो अगर कोई
1: उसके
0: वेज फूड
1: अलावा
0: वेजिटेरियन हो तो
1: डेयरी प्रोडक्ट्स
0: डेरी
1: हैं,
0: प्रोडक्ट।
1: डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं।
0: दूध और
1: जी
0: दूध से बनी चीजें ज्यादा से
1: दूध से
0: ज्यादा
1: बनी।
0: यूज करनी चाहिए,
1: जी
0: बाकी कहा जाता है शाम के बाद कम खाओ या ना खाओ, तो ये भी है
1: जी
0: आपके यहाँ?
1: बिल्कुल ऐसा है, 6 बजे के बाद कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल लोग इतनी लेट सो रहे हैं कि वो खाते हैं, दो
0: खाते
1: दो
0: ही
1: बजे
0: हैं,
1: खाते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल सही
1: पिज्ज़ा चाउमिन ये सब खाते हैं रात में, तो
0: सही बात
1: इसलिए वैसे तो रात में दूध पी के ही खाली सोना चाहिए, और दूध पीना तो रात में ही चाहिए।
0: है, रात में पीना
1: जी
0: चाहिए गर्म दूध या ठंडा दूध?
1: नॉर्मल, ना गर्म ना ठंडा,
0: अच्छा
1: नॉर्मल, और ना चीनी भी ना डाले।
0: चीनी नहीं डाले
1: हाँ
0: क्योंकि
1: चीनी
0: उसमें नेचुरल मिठास

0: खास होती
1: जी
0: है।
1: जी इसलिए
0: और आपने नाइट वाली बात की है ना, कि
1: जी
0: रात में बहुत देर तक जगते हैं लोग, तो ये भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह
1: बहुत है। हमारा ब्रेन अंदर से धीरे धीरे खत्म होता जाता है, खोखला होता जाता है
0: खोखला हो जाता
1: दिमाग
0: है,
1: हमारा।
0: उसकी वजह से कुछ चिड़चिड़ापन वगैरह भी हो जाता
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल। और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं बहुत, जिंदगी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, काम में आलस आता है, ये सब चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है।
0: हाँ, हॉस्पिटल में आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो इस तरह के केसेस कभी आए?
1: ये मेरे टाइम पे तो अभी मतलब
0: नहीं
1: जैसे
0: आए
1: नहीं
0: हैं
1: आई
0: अभी,
1: है। जी
0: कोई बात नहीं। आम तौर पे अगर किसी के आसपास कुछ ऐसी घटना हुई हो, कुछ बताना चाहेंगे
1: हाँ, इसकी वजह से माइग्रेन का दर्द भी होता है, जो मेरे साथ भी कभी कभी, पहले मैं नहीं उठती थी, जब से जॉब स्टार्ट करी है तो मैं टाइम से उठने
0: आप?
1: लगी हूँ।
0: सुबह टाइम से उठते
1: जी
0: हैं
1: जी अब उठने लगी
0: क्या
1: हूँ। मैं भी बहुत लेट उठती थी, जिसकी वजह से माइग्रेन अभी भी मुझे होता है,
0: बात
1: माइग्रेन और
0: है।
1: सर्वाइकल का पेन रहता है मेरे।
0: अच्छा,
1: जी
0: वो तो अब धीरे धीरे आपने आदत बदली है तो ठीक हो
1: जी जी अब
0: जाएगा।
1: धीरे धीरे आदत
0: जी
1: बदली
0: जी
1: है तो।
0: आप कुछ बताइए मरियम जी, कि जैसे आप फिलहाल तो हाउस वाइफ हैं,
1: जी
0: क्या रूटीन रखती हैं घर के सभी लोगों का? आपका अपना तो एकदम स्ट्रिक्ट रहता ही होगा,
1: जी
0: घर के सभी लोगों का सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये सब रहता
1: जी
0: है?
1: जी सुबह जैसे सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ मैं 8 o'clock।
0: अच्छा,
1: जी जी उसके बाद अपने और काम करना घर के। एक छोटा बेबी भी है मेरा 2 months का।
0: 2 मंथ का?
1: जी
0: अच्छा, तो बहुत मुश्किलें आती होंगी।
1: जी जी जी नहीं, मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है।
0: अच्छा,
1: जी
0: ये
1: जी
0: तो एक कहा जाए तो उपलब्धि है आज के जमाने में,
1: जी
0: क्योंकि ज्यादातर कुछ तो चुटकुले सास बहू के
1: जी जी
0: मिलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: कुछ तो कहानियां मिलती हैं।
1: जी जी नहीं, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं और
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: सपोर्टिव हैं।
0: हाँ, तो अब सही, जाहिर सी बात है, आप यहाँ बैठी हैं, दो
1: जी
0: महीने का
1: जी वो
0: बेबी
1: भी
0: है
1: है।
0: तो घर पे वो संभाल रही होगी तभी तो,
1: जी जी
0: ये
1: जी
0: बहुत ही अच्छी बात है।
1: जी
0: तो अभी कैसे सब कुछ मैनेज कर पा रही हैं, 2 महीने के बेबी को भी संभालना और हस्बैंड भी होंगे उनको भी?
1: जी जी बस ये है कि थोड़ा सा मैनेज, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है।
0: अच्छा,
1: जी
0: जी,
1: ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें हो जाता है।
0: हो जाता है।
1: जी
0: आप क्या मानती हैं, ज्वाइंट फैमिली बेहतर होती है या न्यूक्लियर फैमिली?
1: जी ज्वाइंट फैमिली
0: ज्वाइंट
1: ज़्यादा,
0: फैमिली
1: जी
0: ज्यादा
1: जी
0: अच्छी,
1: क्योंकि उसमें
0: सपोर्टिव,
1: ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हम
0: सपोर्ट
1: लोगों को हर
0: मिलता है।
1: चीज़ का। जैसे जैसे
0: हाँ
1: मैं बेबी को संभाल रही हूँ तो किचन में और कोई, जैसे मेरी वो है सास, वो है जेठानी है, या और वो है मदर इन लॉ है मेरी, वो थोड़ा काम कर लेती हैं। अब जैसे ये मैं जैसे बेबी को वो संभाल लेती हैं, मैं किचन में काम कर लेती हूँ, और भी जैसे न्यूक्लियर,
0: मैं नहीं हो
1: जी
0: पाता
1: जी
0: है।
1: न्यूक्लियर में नहीं हो पाता है
0: आप
1: इतना
0: क्या मानती
1: ज्वाइंट
0: हैं,
1: फैमिली में।
0: ज्वाइंट
1: ज्वाइंट फैमिली बेस्ट रहती है, क्योंकि
0: फैमिली
1: अक्सर
0: बेस्ट
1: ऐसा
0: रहती
1: होता है कि स्टडी के लिए बाहर जाना है या जॉब के लिए बाहर जाना है,
0: है?
1: तो उसके पीछे में अगर जैसे हमारे भाई बहन हैं या हम अपने पेरेंट्स हैं तो उनके ऊपर छोड़ के सारी चीज़ें जा सकते
0: नहीं,
1: हैं।
0: भाई बहन और पेरेंट्स तो है ही, लेकिन ज्वाइंट फैमिली मतलब पेरेंट्स के भी भाई बहन साथ में रहते हैं,
1: सब लोग
0: यही
1: साथ में,
0: सब
1: हाँ
0: लोग साथ में ज्यादा रहते?
1: चाचा
0: अच्छा,
1: ताया सारे लोग
0: ये सब लोग साथ में रहना ज्यादा अच्छा। आपका भी यही मानना है या कुछ डिफर करते हैं आप?
1: अलग ही है। मतलब कि फायदे भी हैं इसके, नुकसान भी
0: हाँ,
1: हैं,
0: क्या
1: दोनों
0: मानती
1: ही
0: हैं,
1: हैं।
0: क्या फायदे क्या नुकसान है?
1: फायदा ये है कि साथ में रहते हैं तो सब एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, सब फाइनेंशियल सपोर्ट भी सब करते हैं, और बहुत जैसे कि कोई बीमार है या सब किचन में एक साथ खाना बन गया, ये घूमना फिरना एक साथ। और नुकसान ये है कि बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई में जो है नुकसान होता है, शोर शराबा होता है,
0: शोर
1: प्राइवेसी नहीं
0: शराब,
1: होती है। और फिर अगर कोई एक कमाने वाला है तो एक पे ही
0: उसके कई
1: सारा
0: सारे
1: बोझ,
0: हिस्से बना
1: हाँ एक ही को सारा बोझ उठाना पड़ता है।
0: के। आप क्या मानती हैं, ये कमी है?
1: ये है, ये थोड़ी सी कमी है।
0: और किचन में भी तो मुश्किलें आती
1: जी
0: होंगी,
1: जी थोड़ी
0: किसी को कुछ
1: सी।
0: खाना है, किसी को कुछ खाना
1: जी
0: है, दिन
1: जी
0: भर किचन में ही
1: दिन
0: लगे
1: भर
0: रहना
1: किचन
0: होता
1: में
0: है।
1: हो जाता है ऐसे ही। जी
0: आप क्या इत्तेफाक रखती हैं इस बात से?
1: जी बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ पॉइंट ये भी है कि अगर हमें कोई सजेशन चाहिए तो हमें पहले सबसे डिस्कस करना पड़ेगा कोई भी फैसला लेने से पहले। और अगर कोई अर्जेंट काम है और अगर सबकी राय नहीं हो पा रही है, वहाँ पे सब सीमित नहीं है, तो फिर उस काम का भी लॉस हो जाता है अक्सर,
0: काम का भी लॉस हो जाता है।
1: अगर सबकी एडवाइस नहीं मिल रही है एक साथ और आपको अकेले कुछ फैसला लेना है तो।
0: लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि जब न्यूक्लियर हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो अब जैसे आप जो है मैडम यहाँ पे बैठी हैं, 2 महीने का बच्चा बेबी घर पे है, क्या वो बैठ सकती थी अगर न्यूक्लियर होती थी तो? नहीं,
1: नहीं बैठ सकती
0: नहीं बैठ
1: थी,
0: सकती
1: वही
0: थी।
1: तो प्रॉफिट लॉस दोनों है, हर एक काम का, हर एक चीज का प्रॉफिट और लॉस होता है।
0: हाँ, बिल्कुल, तो इसके ये प्रॉफिट और लॉस हैं
1: जी
0: कहे जाएंगे।
1: जी
0: तो अच्छा, आगे जैसे आपकी शादी हो गई?
1: नहीं
0: नहीं हुई, तो आप आने वाले वक्त में क्या प्रिफर करेंगी, न्यूक्लियर या फिर ज्वाइंट?
1: मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं
0: अभी
1: है।
0: सोचा नहीं,
1: जी
0: अभी आप पूरी तरह करियर पे कंसंट्रेट कर रही
1: जी
0: हैं,

0: आगे आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती
1: उतना टाइम तो घर वाले रुकेंगे नहीं, शादी कर
0: हैं? बहुत जेन्युइन सा जवाब है और बहुत स्वाभाविक और कहा जाए तो डाउन टू अर्थ जवाब है
1: जी
0: बिल्कुल। और हम अपने जो श्रोता अभी बाद में जुड़े होंगे उनके लिए बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है जनमंच, और हमारे स्टूडियो में 3 नारी शक्तियां हैं इस समय जिनसे हम बात कर रहे हैं उनके जीवन के तमाम पहलुओं पे, वो क्या करती हैं और समाज के भी पहलुओं पे। अभी हमने बात की कि न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, और इसमें बात आती है कि जैसे हम न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली में तो हैं, इसमें कमियां भी हैं नुकसान भी हैं, लेकिन दूसरी बात आती है शिक्षा। जैसे आप दोनों लोग शिक्षित हैं और आगे भी पढ़ाई कर ही रही हैं, क्या हम शिक्षा के लिए हमें दूर जाना, शहर से दूर जाके पढ़ना ये जरूरी है? आप तो जाना चाहेंगे पहले।
1: जी बिल्कुल जरूरी है,
0: जरूरी।
1: अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है और आपको वो चीजें यहाँ नहीं मिल पा रही हैं तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं,
0: बाहर जाना चाहिए है
1: हाँ।
0: ना?
1: सोसाइटी के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर सोसाइटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है।
0: और अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो?
1: फैमिली सपोर्ट ना करे तो चीजें अलग हो जाती हैं, फिर फैमिली की मानना पड़ेगी, लेकिन
0: मजबूरी।
1: कई बार अपनी बात हम रख सकते हैं।
0: लेकिन अब जैसे आज का जो समय है, अभी भी समय, अभी भी जमाना उतना खुला नहीं है महिलाओं के,
1: जी
0: तो आप क्या मानती हैं, और खुलना चाहिए, महिलाओं को और आजादी मिलनी चाहिए?
1: बिल्कुल, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको अभी भी सिर्फ यही समझा जाता है कि वो घर में ही रहना चाहिए, मतलब मैरिड भी अनमैरिड भी। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता, सोच उनकी फैमिली की इतनी अच्छी नहीं है, और कुछ मैरिज के बाद भी बहुत सारा स्ट्रगल करती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर उनका मन है जॉब करने का, लाइफ में कुछ करने का, तो उनको करने देना चाहिए, क्योंकि इससे फैमिली में ही सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि फिर दो सैलरी घर में आएंगी तो उसमें
0: बेहतर लाइफ
1: बेहतर
0: होगी।
1: रहेगा और आने वाला फ्यूचर उनके बच्चों का भी अच्छा होगा, उनका
0: अच्छा
1: कैरियर भी सेट हो सकता है।
0: जी, आप क्या कहेंगे मरियम साहिबा?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि
0: घर
2: थोड़ा
0: से दूर
2: घर
0: जाना
2: से
0: देना
2: दूर
0: चाहिए,
2: जाना चाहिए और थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए।
0: फ्रीडम मिलनी
2: फ्रीडम
0: चाहिए,
2: मिलनी
0: थोड़ी
2: चाहिए,
0: फ्रीडम या पूरी फ्रीडम?
2: पूरी फ्रीडम
0: पूरी फ्रीडम
2: जी
0: मिलनी चाहिए,
2: जी
0: जो इच्छा हो वो करने देना
2: जी, जो
0: चाहिए,
2: जो करना चाहती है वो करना देना चाहिए,
0: करने देना चाहिए।
2: जी
0: आपका भी यही ख्याल है, लेकिन क्या उस फ्रीडम की एक लिमिट भी होनी चाहिए?
1: बिल्कुल होनी चाहिए, उसका गलत, जब फैमिली हमें भरोसा करके भेज रही है तो उसका कोई भी गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, कि मतलब भेज रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब पे जा रही हूँ तो मैं जॉब से हटके कहीं घूमने चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये
0: वो
1: उनके
0: भी झूठ बोल के।
1: वो
0: हाँ
1: झूठ बोल के तो
0: हाँ
1: धोखा हुआ, तो ये फ्रीडम का एक तरीके से गलत फायदा भी हुआ। घर वाले तो फ्रीडम दे रहे हैं कि आज के जमाने में लड़की को देना चाहिए, वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारी बच्ची कुछ सीख
0: कुछ कर
1: रही
0: ले।
1: है,
0: हाँ
1: लेकिन हम अगर कहीं और जा रहे हैं तो इसका गलत फायदा उठाना हुआ एक तरीके से।
0: गलत फायदा उठाना हुआ उस चीज का, और इस फ्रीडम के बाद कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं।
1: बहुत सी होती है, लड़कियों को तो बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं।
0: और क्या-क्या फेस करनी पड़ती हैं?
1: फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी जा रही है तो लड़कों की निगाहें हमेशा टिकी रहती हैं कि एक लड़की घर से निकली और सब उसे देखे जा रहे हैं, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो खुद ब खुद अपने आप को रोकती है हर चीज के लिए। तो इतना तो मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को इतना करना चाहिए, कि है वैसे गवर्नमेंट करती है कि एक लड़का देख रहा है तो उसको मतलब देख रहा है तो वो अपनी बात चेंज कर देगा वैसे तो, कि मैं तो नॉर्मली देख रहा था, लेकिन उसका वे ऑफ टॉक अलग था, वे ऑफ सीइंग मतलब देखने का तरीका अलग था, तो इस पे हमें कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है, क्या
0: लेकिन इसमें ये देखिए समाज है और नारी, यही तो है नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण,
1: जी
0: सशक्त होना है हमें,
1: जी
0: क्योंकि जो कोई कोई भी अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो एक तो उसे टोकना है और उसे ऐसा सबक देना है कि दोबारा वो गलती ना कर सके,
1: और
0: वो
1: लोग बोलते भी नहीं है
0: महिला
1: इधर
0: हो
1: उधर वाले।
0: या पुरुष हो कोई भी।
1: जी जी
0: हाँ
1: बिल्कुल, बहुत सी महिला, आज का तो माहौल बहुत ही वो चल रहा
0: आप
1: है।
0: क्या कहेंगे इस बारे में?
1: मैं भी यही कहूंगी कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं सोसाइटी में जिनको हम फेस करके इग्नोर करके भी निकल सकते हैं,
0: इग्नोर करके निकल
1: क्योंकि हर
0: सकते।
1: चीज का जवाब देना हर जगह पे सीमित नहीं रहता,
0: हाँ
1: लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर जवाब ऐसा दो कि वो दोबारा अगर आप उसके सामने पढ़ो या कोई भी लड़की सामने पढ़े तो वो उसको देखने से पहले या कोई भी कमेंट पास करने से पहले सोचे।
0: सोचे। आप क्या कहेंगी? आप तो अब शादीशुदा भी हैं।
2: जी, मैं मैरिड हूँ, लेकिन उससे पहले भी
0: हाँ
2: ये है कि जैसे अनमैरिड नहीं थी मैं, इससे
0: हाँ
2: पहले भी हो देखा है मैंने कि लड़कियां लड़के देखते हैं अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, और थोड़ा सा
0: लेकिन पहले के
2: अपने आप
0: मुकाबले
2: को
0: समाज
2: जी
0: थोड़ा बदला
2: थोड़ा
0: है,
2: बदल
0: कुछ
2: चुका है।
0: पॉजिटिव
2: जी
0: है।
2: जी जी पॉजिटिव हो जाए, लेकिन उस चीज का जवाब देना चाहिए।

0: बिल्कुल,
1: हमें
0: महिलाओं को ही करना पड़ेगा।
1: महिलाओं को करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश इतना बनाओ कि हम
2: कॉन्फिडेंस।
1: कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि हम उस चीज का जवाब दे सके
0: जी
1: उसी टाइम।
0: बिल्कुल, ये
1: जी
0: सब समाज की चुनौतियां
1: समाज
0: हैं और कहीं ना कहीं विडंबनाएं भी
1: जी
0: हैं
1: जी
0: जो महिलाओं
1: जी
0: को आगे
1: महिलाओं
0: बढ़ने से
1: को
0: रोकती हैं। जी जी
1: रोकती हैं इस टाइम पे।
0: क्या सड़क के अलावा परिवार में भी कभी कभार देखने को मिलता है
1: अभी तक तो नहीं मिला।
0: प्रोग्राम आखिर जैसे जैसे आगे बढ़ता
1: जी
0: है मेरे सवाल और खतरनाक होते जाते हैं, इसीलिए अगर आप बताना चाहें आप।
2: बिल्कुल ऐसा होता है घर में कि चाचा हैं या कोई अपनी मतलब भतीजी पे मतलब फैमिली ज्वाइंट फैमिली में भी लोग सेफ नहीं है आज के जमाने में, इसलिए ज्वाइंट फैमिली का एक ये भी नुकसान है,
0: ज्वाइंट फैमिली का ये भी
2: ये भी
0: नुकसान।
2: नुकसान है कि फ्रीडम नहीं है कि अगर लड़की घर में नॉर्मली कपड़े पहन के नहीं रह सकती जैसे
0: कपड़ों
2: फ्री
0: की
2: हो गए।
0: बात आपने की है तो अब कपड़ों की बात कर लें, कैसे कपड़े पहनने चाहिए महिलाओं को, आप लोग खुद क्या सोचती हैं, स्वतंत्रता पूरी होनी चाहिए।
2: मेरे हिसाब से तो खुद को सेफ करना चाहिए क्योंकि लड़की तो एक सोने के मानिंद है, सोने को तिजोरी में रखा जाता है, वैसे लड़की को भी मोबाइल को एक छोटे से मोबाइल को हम कवर में रखते हैं कि गिर जाएगा टूट जाएगा, और सोने को अलमारी में रखते हैं, तो हम लोग तो सोना है इसलिए हमें कवर रहना चाहिए मेरे हिसाब से,
0: आपके हिसाब से।
2: यही मेरा भी मानना है। हम जब ऐसे कपड़े वेयर करेंगे तो सामने वाले को मौका मिलेगा, इसलिए उसको वो चांस ही नहीं देना चाहिए।
0: आप क्या मानते
1: मैं
0: हैं,
1: ये मानती हूँ कि बस नजर नजरिए का तरीका है,
0: नजरिए का
1: नजरिए
0: तरीका।
1: का तरीका, कपड़े चाहे जैसे भी पहने
0: बिल्कुल,
1: नजरिए का तरीका है, वो
0: नजरिए का तरीका
1: नजरिका
0: है
1: का तरीका है अपना
0: और सलीके के होने
1: जी,
0: चाहिए।
1: सलीका होना चाहिए एक तरह।
0: हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी आप लोगों से बातचीत हुई, कई सारे ऐसे भी बहुत हमने पहलुओं को छुआ जो
1: जी
0: समाज में अभी भी, वक्त हालांकि बदला है, पहले से आधुनिक हुआ है माहौल और बहुत सारी महिलाओं को आज़ादी भी मिली है, कदम से कदम मिला के चलने
2: बिल्कुल
0: की भी
2: जी
0: मिली है, और आप सब के सामने के रूप में हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है और उसके लिए सबसे ज़रूरत है कि महिलाएं खुद सशक्त हों,
1: जी
0: यही मुझे लगता है आप लोगों
1: जी
0: का भी
1: जी जी
0: यही
1: जी
0: कहना है। तो इस प्रोग्राम में, इस परिचर्चा में हमने आप लोगों से बात करके यही एक तरह से कंक्लूजन निकाला कि सबसे पहले अगर महिला खुद सशक्त हैं और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से अडिग हैं, पूरे ताकत से तैयार हैं, तो कोई रोक नहीं
1: कोई नहीं रोक
0: सकता।
1: सकता।
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: जी बिल्कुल, आप लोग हमारे स्टूडियो में आई और हम लोगों से बातें की, हमारे तमाम श्रोताओं को अपने विचार साझा किए, अपने अपने अनुभव बताए, वो भी ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
2: थैंक यू सर।

0: अभी आप सुन रहे थे जनमंच। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
1: को जी लीजिएगा और तन के साथ मन को भी भिगो लीजिएगा वो यादें जो सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हैं, क्योंकि बारिशें सिर्फ यादें समेटने का नहीं, उन्हें फिर से जीने का मौसम है। इसी के साथ आज का शामी अवध कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए शाइस्ता जाहिद को इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के हिंदी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक वार्ता जिसका विषय है समय चक्र में दबती लोक विधाएं। वार्ताकार हैं आनंद उपाध्याय।
2: महामना मदन मोहन मालवीय जी का कथन था कि भारत की एकता का मुख्य आधार एक संस्कृति है जिसका प्रवाह कहीं नहीं टूटा, यही इसकी विशेषता है। भारतीय एकता अक्षुण्य है क्योंकि भारतीय संस्कृति की धारा निरंतर बहती रही है और बहती रहेगी। भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक थाती ने वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे जना सुखिनो भवंतु की विराट लोक मंगलकारी भावना को संपूर्ण वैश्विक मंच पर प्रतिस्थापित किया है। विविधतापूर्ण सांस्कृतिक गौरव और लोक परंपराओं की अनूठी रंग बिरंगी विरासत ने इस विशाल भूभाग और विश्व की सर्वाधिक आबादी को विविध रीति रिवाजों, गायन शैलियों, नृत्य व गायन की विशिष्ट विधाओं, आंचलिक स्तर की मौलिक ललित कलाओं की सौगात मुहैया कराकर भारत को अनेकता में एकता का बहुरंगी गुलदस्ता सौंपकर समृद्ध सांस्कृतिक पहचान दिलाई है। देश के हर राज्य की अपनी विलक्षण गायन शैली, भारतीय शास्त्रीय संगीत आधारित विशिष्ट नृत्य विधा का उपहार मौजूद रहा है। सुदूर पूर्वोत्तर राज्य के खासकर असम, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात की जाए, हर राज्य की लोक विधाओं, गायन नृत्य शैली, रंगमंच ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान सुस्थापित की है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे पश्चिमी राज्यों की ओजपूर्ण और ऊर्जावान लोक विधाओं ने अपनी अलग तस्वीर बनाई है। ब्रजमंडल की होरी मंडली की भरी मस्ती लोक गायन व नृत्य संगीत की सौगात हो, या फिर पंजाब का भांगड़ा व गिद्दा जैसा स्फूर्तियुक्त प्रदर्शन हो, अथवा उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल अंचल या फिर हिमाचल और जम्मू कश्मीर का पारंपरिक गीत संगीत व मंचन का परिदृश्य हो, सब में अपनी मौलिक विशिष्टता व सुंदरता परिलक्षित होती रही है। उत्तर भारत और मध्य भारत में विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि और अलग अलग शैली में अनवरत 10 दिनों तक मंचित होने वाली रामलीला ने भारत को एकता का सूत्र देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री कृष्ण लीला का मंचन भी लोकप्रिय रहा है। रामलीला मंचन के दौरान हर आयु वर्ग के लोगों में नियमित रूप से हर दिन की लीला को देखने का प्रचलन था। बच्चों, किशोरों और युवाओं में स्फूर्ति के साथ मंचन देखने और अगली सुबह संवाद दोहराने व खुद भी अभिनय करने का शौक दृष्टिगत होता था। गौरवशाली सनातन परंपराओं से परिपूर्ण अध्यात्म का पुट लिए हुए धर्ममय सुसंस्कृत विचार और आचार प्रणाली का संवाहक बनकर ऐसे अवसर समाज को सार्थक और प्रेरणादायक संदेश देने का माध्यम बनते थे। विविधतापूर्ण सामाजिक व पारिवारिक आयोजनों के सुअवसर पर समसामयिक लोकगीतों की समृद्ध विरासत अवसर की गरिमा को बढ़ाकर नूतन आशावाद का संचार करने में प्रमुख कारक सिद्ध होती थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में इलाकाई बोलियों में परिवार में बच्चे के जन्म होने के सुअवसर पर सोहर गायन की मांगलिक विधा सुखद भावना के प्रसार का माध्यम बन

चलती रही। विवाह के अवसर पर अलग अलग अंचलों में गाए जाने वाली गारी चर्चित व मनोरंजक होती थी। विवाह गीतों की बात तो कुछ और ही नजर आती रही है। आज भी माँ, मौसी, बुआ, नानी, दादी की बच्चों को प्यार व सुकून भरी थपकी देकर सुलाने के लिए गाए जाने वाली लोरी के शब्द आज तक विस्तृत नहीं होते। भारी वजन उठाने के समय या कठोर परिश्रम युक्त कृषि कर्म या उद्योग से जुड़े काम की निरस्ता व थकान को मनोवैज्ञानिक स्वरूप देने के लिए भी पारंपरिक गीतों या वाक्यांशों का प्रयोग प्रचलन में था। महिलाएं अल सुबह अनाज को जांत यानी हाथ से संचालित पत्थर की चक्की में पीटते समय अलग गीत गाती थी। तालाबों व नदियों या समुद्री इलाकों में मछली पकड़ने के समय मछुआरों द्वारा गाए जाने वाला रोचक व संदेशात्मक गीत चर्चित होते थे। फिल्मों में मांझी गीत आध्यात्मिक दर्शन के परिचायक होते रहे। भारतीय फिल्मों में समृद्ध लोकगीतों व लोक नृत्यों के समाहित करने का सार्थक और सराहनीय प्रयास होता रहा। भारत की सांस्कृतिक विरासत के संवाहक बनकर इन लोकगीतों व आंचलिक नृत्यों ने राष्ट्रीय एकता व सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने का सतत काम किया। शास्त्रीय संगीत आधारित गीत व विविधतापूर्ण नृत्यों ने देशवासियों को एक दूसरे राज्य के लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत की जानकारी देकर ललित कलाओं को समृद्ध करने की भूमिका निभाई। उत्कृष्ट भजनों, साहित्यिक रचनाकारों के गीतों, कव्वालियों का प्रयोग भारतीय हिंदी फिल्मों में भरपूर किया जाता रहा। आज विरले ही किसी सार्वजनिक सांस्कृतिक आयोजन में युवाओं को आयोजकों की ओर से भारतीय गौरवपूर्ण शास्त्रीय संगीत की हिंदुस्तानी अथवा कर्नाटक संगीत शैली आधारित गायन विधा को सुनने का कभी अवसर मुहैया कराया जाता रहा हो। देश में पहले टीवी चैनल दूरदर्शन और उससे पहले से संचालित आकाशवाणी के विविध केंद्रों ने यद्यपि भारतीय लोक गाथाओं, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य संगीत और भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की विधाओं को भरपूर मौका देकर इनके प्रदर्शन और प्रमोशन का सार्थक मंच प्रदान किया, पर शनै शनै प्राइवेट मनोरंजक टीवी चैनल्स के अनियंत्रित विस्फोट के मौजूदा माहौल में पाश्चात्य संगीत के अंधानुकरण के चलते आयातित चकाचौंध के बीच कर्णप्रिय और सुमधुर भारतीय गीत संगीत को अपने कुहासे में विलुप्त करने का निंदनीय कृत्य किया है। आज की फिल्मों में अपवाद छोड़कर देखा जाए तो कितने गीत ऐसे अवलोकित होते हैं जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत या राष्ट्रीय अखंडता व गौरवपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को प्रमोट करने वाले होते हों। कदाचित संगीत विषय से जुड़ाव रखने वाली युवा जमात भी ठुमरी, दादरा, टप्पा शब्द शायद आज की पीढ़ी को अजूबा महसूस हों। सावन के महीने में नीम की डाली पर लगे झूले के हिलोरों पर महिलाओं का कजरी गीत गायन अब धीरे धीरे पूरी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से विलुप्त प्राय होता नजर आने लगा है। सूफी संगीत भी हाशिए पर परिलक्षित है। किसानों का ढोल मंजीरे की पारंपरिक थाप पर बिरहा गायन भी सिमटता हुआ अवलोकित है। होली के अवसर पर माँ शिवरात्रि के पर्व के बाद से होलिका दहन की बेला तक धूम धड़ाके और मस्ती भरे अंदाज में जोशपूर्ण तरीके से सामूहिक रूप से गाया जाने वाला फाग भी अब आधुनिकीकरण के संक्रमित होकर पारंपरिक शब्दोच्चार व संगीत धुनों की जगह अश्लील और द्व्यर्थी शब्दों के कर्कश संगीत का पर्याय बनकर दृष्टिगत होता है। निश्चित तौर पर मौजूदा माहौल में विशेषकर किशोरों व युवाओं में विविध सामाजिक और परिस्थिति जन्य कारणों के चलते उपस्थित मानसिक उद्विग्नता, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुंठा, हीन भाव, हताशा के निवारण हेतु भारतीय सांस्कृतिक परिवेश और ललित कलाओं की ओर उनके रुझान और अभिरुचि को पुनर्जीवित करना अपरिहार्य है और व्यवहारिक भी है। यह स्वागत योग्य कहा जाएगा कि बीते दिनों भारत सरकार ने नवीन शिक्षा नीति लागू कर हर प्रांत की अपनी भाषा सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में शुरुआती शिक्षा के माध्यम के रूप में अंगीकार करने की सहज स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित रूप से जब विद्यालयों में बच्चों को उनके राज्य की भाषा पर पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा तो साफ तौर पर सूबे की संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति रिवाजों और अन्य विधाओं के जानने और जुड़ाव महसूस करने का सार्थक सहयोग प्राप्त हो सकेगा। बीते दिनों भारत सरकार के स्तर से तमिल संगमम, तेलुगु संगमम सहित विभिन्न राज्यों के मेधावी व ऊर्जावान छात्र छात्राओं के समूहों को राजकीय खर्च पर एक राज्य से दूसरे सुदूर राज्यों में जाकर प्रवास के जरिए एक दूसरे प्रदेश की भाषा, लोक विधाओं, ललित कलाओं, साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को जानने व अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना स्वागत योग्य पहल के रूप में परिलक्षित हुआ है। सांस्कृतिक धरोहर का आदान प्रदान आज समय की मांग है। भारत सरकार को सभी राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर स्कूली जीवन से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त विषय शामिल करना चाहिए जिसमें रोचक, आकर्षक और सहज सरल तरीके से भारतीय सांस्कृतिक परिवेश, लोक नृत्य, लोक संगीत,
परंपरागत लोक विधाओं

आंचलिक रचनात्मक वैशिष्ट सहित विलुप्त प्राय होती बोलियों, भाषाओं, लोक कलाओं, स्थापत्य, चित्रकला, दुर्लभ होते नृत्य व गायन प्रसंग, भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य, रामलीला, कृष्णलीला, नौटंकी विधा, स्वांग, कठपुतली मंचन, तरसंगत जादूगिरी और समाप्ति की कगार पर पहुंच गए अलग ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक विधाओं को

0: पारंपरिक विधाओं को और खासकर आदिवासी संस्कृति के मौलिक रिवाजों और वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को पुनः संरक्षित और प्रवर्धित तथा प्रचारित करने की व्यवस्था करनी होगी। लॉर्ड मैकाले ने गुलाम भारत की सांस्कृतिक विरासत और भारतीय जीवन दर्शन तथा विशिष्ट मानवीय जीवन मूल्यों को छिन्न भिन्न कर भारतीयता पर अपनी व्हाइट कॉलर पैदा करने वाली शिक्षा पद्धति थोप कर जितना नुकसान करना चाहा था, आखिरकार वह आज भारत के मौजूदा परिदृश्य में बाजारीकरण से भरी पाश्चात्य अंधानुकरण के संक्रमित भारतीय युवा जमात के सामने प्रत्यक्ष रूप से फलीभूत होता परिलक्षित हो रहा है। आज समय की मांग है कि चातुर्दिक प्रगति करने, उसकी सांस्कृतिक पुनर्स्थापना और अपनी गौरवशाली सनातन जड़ों की सुदृढ़ करने के संकल्प को भी वही प्राथमिकता देनी होगी। भारत के जीवन दर्शन की सुरक्षा ही अंततः वैश्विक शांति व कल्याण प्रगति का नूतन सोपान सिद्ध होगा।
1: आज के हिंदी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वार्ता समय चक्र में दबती लोक विधाएं। वार्ताकार थे आनंद उपाध्याय। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है गुरुबानी। सबसे पहले आइए सुनते हैं अनूप सिंह के स्वर में गुरुबानी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। और आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुवाणी। लीजिए, प्रस्तुत है जसपाल सिंह के स्वर में गुरुवाणी।

0: श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गुरुवाणी। प्रस्तुत कर रहे थे अनूप सिंह और जसपाल सिंह। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हमारे इन गायक कलाकारों की आवाज में गाए गीत से। फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल, मारिया डेलमार फर्नांडिस और साथी, आप सभी की आवाजों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का गीत। फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

0: और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्वीन से। इस गीत के लिए स्वर दिए हैं लव जंजुआ, सोन कक्कड़ और नेहा कक्कड़ ने।
1: तू होगी वन टू टू, ओ कुड़िए वन टू टू।

दिल धड़कने दो, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत में स्वर दिए हैं याशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह ने। तो आइए सुनते हैं दिल धड़कने दो इस फिल्म का ये गीत।

0: दिल धड़कने दो, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र
2: दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
3: दुनिया भारतीय स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
4: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में 3रे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से

0: लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
3: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल हैं, जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
4: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसके वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग

0: की अपील की है।
1: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने

स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम फिल्म आपके लिए से। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सलामी फिल्म का गाना सुनिए, अलका याग्निक की आवाज में। गीत सुरेंद्र साथी का है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल

0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में सातवां आसमान फिल्म का गाना, इसे लिखा है सूरज सानिम ने, संगीत राम लक्ष्मण का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी, नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी, छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानो को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: एक ये रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

0: दोस्तों, सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा, और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नहीं नहीं के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेगी। आज

0: अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

0: हुआ है।
1: नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।
2: ना ना ना ना ना ना ना।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध गायिका विदुषी प्रतिमा तिलक का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन। विदुषी प्रतिमा तिलक का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसके बावजूद बचपन से ही आपकी संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्रीमती सुहासिनी एवं श्री प्रभाकर व्यास से प्राप्त की और इसके उपरांत डॉक्टर ज्योत्सना मोहिले से भी आपने मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपकी संगीत यात्रा को वास्तविक दिशा और मजबूत बुनियाद तब मिली जब जयपुर अतरौली घराने की दो वरिष्ठ गायिकाओं श्रीमती कमलाताई तांबे और श्रीमती कौशल्या मंजेश्वर ने लगभग दो दशकों तक आपको जयपुर अतरौली घराने की गायकी और बारीकियों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन किया। आपने जयपुर गायकी के विद्वान पंडित अरुण द्रविड़ और प्रोफेसर मिलिंद माल्शे से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपने दोनों गुरुओं से प्राप्त तालीम के आधार पर आपकी गायकी में खुली आवाज में किया गया आकार, लय के साथ कदम से कदम मिलाती हुई बोल, उपज तथा तानों में सुंदर गमक के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं और ये सब कुछ राग के निर्धारित स्वरूप और उसकी मर्यादा के भीतर रहता है। जयपुर अतरौली घराने की महान गायन तपस्विनी श्रीमती मोगूबाई कुर्डीकर की गायकी को प्रस्तुत करने और उसका प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख गायिकाओं में आपका विशेष स्थान है। आपको अनेक प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपने आकाशवाणी की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया और वर्ष 1987 से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए नियमित रूप से प्रस्तुति देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी की उच्च श्रेणीय कलाकार हैं। आप ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। आपने देश भर में आयोजित अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आज की सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का शुभारंभ राग बिहागड़ा से कर रही हैं। विलंबित बंदिश तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं प्यारी पग होले होले धरिए और द्रुत तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यति भागवत, हारमोनियम पर हैं श्री अनंत दोषी और सारंगी पर हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट द वोकल रिसाइटल बाय रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट विदुषी प्रतिमा तिलक। बॉर्न इन नॉन म्यूजिकल बैकग्राउंड, विदुषी प्रतिमा तिलक शोड a natural flair for music since early childhood. With unequivocal support from her parents, she was initiated into the ocean of music by Mrs. Suhasini and Mr. Prabhakar Vyas and later by Dr. Jyotsna Mohile. Her musical journey took firm root when two senior vocalists of the Jaipur Atrauli Gharana, Shrimati Kamaltai Tambe and Shrimati Kaushalya Manjeshwar, trained and mentored her into the intricacies of the Jaipur Atrauli Gharana Gayaki over a period of two decades. She has also received guidance from Pandit Arun Dravid and Professor Milind Malshe, both scholars of Jaipur Gayaki. Based on the solid talim that she received from both her gurus, her Gayaki is embellished with open-throated akar, bol, upaj, going hand in hand with the lay and beautiful gamak patterns of taan, all within the framework of the

0: ये था राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक अपने गायन का समापन राग सुहा से कर रही हैं। द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं प्रीत सो प्रीत चंदा, और द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल है झूम झूम झूम बदरवा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा। विदुषी प्रतिमा तिलक कंक्लूड्स हर वोकल रिसाइटल विथ राग सुहा। द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल प्रीत सो प्रीत।

0: ये था राग सुहा। तबला संगत श्री यति भागवत, हारमोनियम श्री अनंत दोषी और सारंगी पर थे उस्ताद फारूख लतीफ खान। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विदुषी प्रतिमा तिलक का गायन अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के मुंबई स्टूडियो में ध्वनि मुद्रित ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was Raag Suha, and that concludes vocal recital Vidushi Pratima Tilak in tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on tabla by Shri Yati Bhagwat and on harmonium by Shri Anant Joshi and Sarangi Ustad Farooq Latif Khan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai, and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: समाचार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल

0: बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
3: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार